आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 5 बजने को हैं। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 13 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल, और आइए अब सुनते हैं आज के शेष कार्यक्रमों की सारिणी। 6:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रेनबो का कार्यक्रम सुप्रभात। 7:02 पर प्रसारित किया जाएगा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 8:02 पर हम आपको पुनः सुनाएंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और 9:02 पर आप सुन सकेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक कार्स का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 10:02 पर, और बॉलीवुड ट्रेल्स हम आपको सुनवाएंगे 11:02 पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, एफएम रेनबो का फोन इन प्रोग्राम, हम रेनबो हेल्पलाइन आपको सुनवाएंगे 1:02 पर, और 2:02 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम आशियाना। लाइव फोन इन प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर आप सुनेंगे 3:00, जिसमें बात होगी ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल विषय पर। अल्फा जेन कार्यक्रम आप सुनेगा 4:02 पर, और सिटी लाइट्स प्रस्तुत किया जाएगा 5:02 पर। वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम शाम 7:02 पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा आपकी याद आती रही कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:02 पर। रात्रि 10:02 पर आप सुनेगा वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम, और 11:02 पर रात को आप सुनेंगे रंगे महफिल। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की सूची, और अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। पेश है एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच निवेश, तकनीक और नवाचार में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कोयम्बतूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। वे कोयम्बतूर में JKNN नर्सिंग महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे तथा तिरुपुर में अविनाशी के लिंगेश्वर शिव मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार छात्रों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली उच्च न्यायालय के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सरकार ने बताया, इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिन की फिलीपींस दौरे पर रहेंगे। वे मनीला में आसियान भारत, पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठकों में शामिल होंगे। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होमुर्ज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और अंत में, भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जैसे ही बजते हैं सुबह के 6, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो के जो श्रोता है ना, वो प्रतीक्षा में रह जाते हैं कि बस अब आकाशवाणी पर सुप्रभात कार्यक्रम के साथ दिन की शुरुआत हम करेंगे और साथ ही अपना जो काम है वो भी हम शुरू कर देंगे। तो बस आपका इंतजार खत्म हो चुका है और सुप्रभात कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ नेहा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम हमारे सभी श्रोताओं को। साथियों, एक प्यारी सी सुबह बाहें फैलाकर हम सभी का स्वागत कर रही है और अब हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम भी खुले दिल के साथ और मन में ढेर सारी उमंग और खुशियों के साथ इसका भी स्वागत करें। तो आइए, कार्यक्रम सुप्रभात में होंगी ढेर सारी बातें, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे और मधुर गीतों का साथ भी बना रहेगा पूरे 7 बजे तक। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत।

हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। जब प्यार की बात आती है ना, तो हम अपने प्रेमी को बहुत जी भर के देख लेना चाहते हैं, लेकिन कहने वाले ने भी गलत तो बिल्कुल भी नहीं कहा। आखिर दो ही तो आँखें हैं और एक ही जीवन है, कितना देख लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन चंद पंक्तियों में जो बात छुपी है वो ये है कि कुछ सीमाएँ हमारे जीवन में होती हैं, चाहे वो प्रेम हो या कोई भी और एहसास हो, कोई भी और अनुभव हो या रिश्ता हो। हम जब अपनी सीमाएं जानते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं, और जहां हम अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं या उनका उल्लंघन कर देते हैं, तो फिर हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। तो साथियों, जब जब हम जिंदगी में चाहे प्रेम की बात करें या किसी और एहसास की बात करें, हमें थोड़ा सा बस इतना याद रखना चाहिए कि हम इंसान हैं और इंसान की बहुत सी सीमाएं होती हैं, और उन सीमाओं के भीतर रहना ही हमारे लिए फायदे का सौदा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।

जिंदगी का भी एक हाईवे होता है जहां पर हम चलते रहते हैं, और हाईवे पर जैसे गाड़ियां बिना किसी रुकावट के दौड़ती रहती हैं, हम भी जिंदगी के उस हाईवे पर दौड़ रहे हैं। क्या कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा स्लो डाउन करें, और उस पल में बहुत महत्वपूर्ण काम हम कर सकते हैं जब हम धीमे हो जाएं, अपनी रफ्तार को रोक लें और अपने आप पर हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं। दुनिया जहान की चिंताएं तो हम सभी पाल के रखते हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं बहुत इस बात पर विचार करती हूँ कि हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अब अपने बारे में सोचना हर बार कोई सेल्फिश बात नहीं होती है। अपने बारे में जब सोचते हैं तो हमें एक अवसर मिलता है कि हम ये जानते हैं कि हम क्या ज़िंदगी में सही कर रहे हैं, अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ, इस दुनिया के साथ, प्रकृति के साथ, बाकी जीव जंतुओं के साथ। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना हमें, मेरे नज़रिए से मैं अपनी बात आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि लगता है कि आप मेरे वो दोस्त हैं जिनके साथ जो कुछ मेरे मन में जिज्ञासा उठती है, कोई बात आती है, तो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। यकीन मानिए किसी और से नहीं कहती हूँ, सिर्फ आपसे कहती हूँ। तो फिर जब स्लो डाउन करेंगे ना, तो इंट्रोस्पेक्शन, अंग्रेज़ी में बड़ा अच्छा ये शब्द है, कई कविताओं में यूज़ किया गया है, तो हम आत्म अवलोकन कर सकते हैं, अपने आप के बारे में विचार कर सकते हैं। और जब हम खुद से मिलते हैं ना, तो सच मानिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक सुकून मिलता है, और बहुत से सवाल जो हमारे छोटे से मस्तिष्क में दौड़ रहे होते हैं, इधर से उधर ट्रैफिक जाम करके रखते हैं, उनका जवाब हमें मिल जाता है। तो ज़िंदगी के हाईवे पर चलिए ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा वहाँ भी आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि नेहा हाईवे पर तो स्लो डाउन करने का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल है। आप थोड़ा सा कोशिश ज़रूर कीजिए, संभल के अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को स्लो डाउन ज़रूर कीजिएगा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुबह के 6:23 और 45 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात। मेरे साथ मेरा नाम है नेहा। साथियों, कभी आपने बारिश के वक्त तितलियों को नोटिस किया है? तो क्या होता है वहां पर जब बारिश होती है ना, तो तितलियां उड़ने की जिद नहीं करती। जरा ध्यान दीजिएगा जो बात मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत काम की हो सकती है ये बात हमारे लिए। वो तितलियां जो है ना, बारिश के वक्त जिद नहीं करती, क्योंकि वो जानती हैं कि बारिश की बूंदें उनके नाजुक पंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्षति पहुंचा सकती हैं, और जो ठंड बारिश के वक्त होती है उनकी उड़ान की शक्ति भी छीन सकती है। इसलिए वो रुकती हैं, स्वयं को सुरक्षित रखती हैं और सही समय की प्रतीक्षा करती हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या है कि सही समय की प्रतीक्षा करती हैं। जिंदगी भी हमें यही सिखाती है कि जब कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो उनसे तुरंत लड़ना हर बार साहस की बात नहीं है। कभी कभी ठहर जाना और अपने आप को संभालना और अपनी ऊर्जा को बचाए रखना भी बड़ी समझदारी की बात है। साथियों, याद रखिए, हर बारिश हमेशा नहीं रहती, समय बदलता है, धूप लौट कर आती है, और जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तब वही पंख आपको पहले से भी ऊंची उड़ान देते हैं। इसीलिए थक जाने पर स्वयं को दोष न दें, थोड़ा विश्राम करें, अपने मन और हौसले को बचा कर रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी उड़ान अभी समाप्त नहीं हुई है, वो केवल कुछ समय के लिए रुकी है, और उसके बाद जब समय बदलेगा, वक्त का पहिया घूमेगा, तो आपकी उड़ान कितनी ऊंची जाएगी, परवाज चढ़ेगी।

क्या सिर्फ इतना काफी नहीं किसी से मिलने के लिए कि उससे मिलना, उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता है? क्या हम हर बार किसी से सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि यार उससे मुझे काम है, वो मेरे बहुत काम का व्यक्ति है? क्या हम सिर्फ इसलिए लोगों से मिलते हैं? कई बार सिर्फ लोगों से इसलिए मिलना, काम की बातें, फायदे की बातें, नफा नुकसान सब साइड रखिए, बस उस व्यक्ति के साथ बात करना, उसकी कंपनी में रहना, उसी हवा में सांस लेना जिसमें वो व्यक्ति सांस ले रहा है, अच्छा लगता है। कितना प्यारा सा एहसास है ना ये। इस गाने के दौरान एक एक शब्द पर मैं ध्यान दे रही थी और इतनी खूबसूरती के साथ इस गाने को कंपोज किया गया है। क्या संगीत है और हाँ क्या शब्द हैं। जब गानों के माध्यम से हम कुछ लाइफ लेसन्स लेते हैं ना, सच में वो बहुत काम आते हैं। तो जब हम किसी से सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि उसके साथ बात करने में जो बात है ना, वो कहीं और नहीं, वो बात किसी में नहीं, जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में नहीं। कितनी सारी चीजें मैंने एक साथ कनेक्ट कर दी ना। तो चलिए ऐसा ही होता है और यकीन मानिए मुझे आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। जब जब आते हैं, जब जब आपसे मौका मिलता है बात करने का, मैं बहुत खुशी के साथ ना दिन देखो ना रात देखो बस दौड़ के चली आती हूँ FM रेनबो के स्टूडियोज के आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मुझे आपसे मिलना और आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और आपको जिससे भी मिलना और सिर्फ बातें करना, उसके साथ कुछ चीज़ों का एहसास करना अच्छा लगता है, तो ज़रूर मिलिए।

0: मैं गाने में इतना खो गई कि मुझे पता नहीं चला कि मुझे आपसे बात करने फिर लौट कर आना है गाने के बाद। कितना प्यारा सा एहसास था ना इस गाने में, बर्फी फिल्म से पैपॉन की आवाज़ में, क्यों क्या बात है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है अगर बारिश हो रही है और आप और हम साथ मिलकर सड़कों पर कहीं ऐसे ही भटक रहे हैं, आसपास कोई नहीं है, कितना अच्छा एहसास होगा ना। बारिश की बूंदें जब खुद पर पड़ेंगी तो एक अलग ही एहसास होगा। आप इस ख्याल के साथ रहिए, फिलहाल मैं जा रही हूँ एक छोटे से एड ब्रेक पर, और उसके बाद मेरी बातें और गाने दोनों ही जारी रहेंगे FM रेनबो दिल्ली पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
2: हाय।
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

क्या आपके यहाँ बारिश हो रही है? अगर हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुझे लगता है बारिश प्रकृति की एक बहुत ही सुंदर कृति है, बहुत ही सुंदर चीज़ है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। कितनी ज़रूरी होती है बारिश इस प्रकृति के लिए, हमारे लिए, क्योंकि हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं। एक खूबसूरत गीत आप सभी के लिए, गाने के साथ बारिश भी एंजॉय कीजिए।

सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी लगता है कि कुछ तो होने को है। आखिर बारिश हो रही है। आशा करती हूँ कि ये बारिश हर उस व्यक्ति के मन को भिगो दे जो ये कहता है कि मेरा मन तो पत्थर है। अब आप सभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे, इस बात के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और समय बता दूं, सुबह के 6:53 और लीजिए 52 सेकंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। और अब वक्त हो गया है आप सभी से अनुमति लेने का। और अनुमति लेने से पहले आपको बता दें कि आगे आकाशवाणी पर आप कौन से कार्यक्रम सुनेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक सुबह 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद 7:02 पर वक्त रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर के पहले घंटे का, और उसके बाद सुबह 8 बजे समाचारों के बाद गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर का दूसरा घंटा लेकर मैं नेहा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। अच्छा, आप 8 से 9 के बीच में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि कुछ खास बातें आपके बारे में होने वाली हैं, रेडियो के बारे में होने वाली हैं। और आज तो है 22 तारीख 22 जुलाई है आज, और कल है 23 जुलाई। अगर आप एक सच्चे रेडियो प्रेमी हैं तो आप या तो जानते होंगे कि कैसे 23 जुलाई एक रेडियो कर्मी और रेडियो प्रेमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, महत्वपूर्ण दिन है। नहीं जानते हैं तो हम हैं ना आपको अवगत कराने के लिए। तो आप 8 से 9 के बीच में मेरे साथ, मेरा नाम है नेहा, ज़रूर जुड़िएगा और आपसे होंगी ढेर सारी बातें। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर से तहे दिल से आपको धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि आप देश के कई हिस्सों से मेरे साथ इस कार्यक्रम में बने थे, और लगातार आपका जो साथ बना रहता है बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपके बिना तो हम बिल्कुल अधूरे हो जाते हैं। और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, आज का दिन आप सभी के लिए बेहद बेहद अच्छा रहे, और मन में बहुत सारी आशाएं हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी को आगे आप बढ़ाते रहिएगा। आखिरी गीत है अभिजीत की आवाज में, फिल्म है यस बॉस, बहुत प्यारा गाना, और इस गाने के साथ आप सभी को छोड़े जा रही हूं। मिलूंगी आपसे ठीक सुबह 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल्ली केंद्र से। समय हुआ है 7 बजे। लीजिए अब प्रस्तुत है मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कोयम्बतूर और त्रिपुर के दौरे पर रहेंगी। वे कोयम्बतूर के JKNN नर्सिंग महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे और त्रिपुर में अविनाशी के लिंगेश्वर शिव मंदिर में दर्शन करेंगे। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारावार में माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत INS मालवान को बेड़े में शामिल करेगी। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि सरकार छात्रों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। सरकार ने बताया, इस महीने की 1 तारीख तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिन के फिलीपींस दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मनीला में आसियान भारत पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठकों में शामिल होंगे। उधर अमरीका और ईरान की लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमले के बावजूद हॉर्मुस जलदम मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। प्रतियोगिता के अन्य वर्गों में भी आज भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। तो ये थे अब तक के

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं दिल्ली के चाशनी कोड़ी आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 के मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। प्रोग्राम शुरू हो गया है। यस, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तो चलिए आज के कार्यक्रम का आगाज एक खूबसूरत सी बात के साथ करते हैं, और वो बात ये है कि क्यों ना हम पानी जैसे बन जाएं। अब आप पूछेंगे, भला सृजन, पानी बनने में क्या फायदे हैं? देखिए, पानी जहाँ भी बहता है वो अपना रास्ता खुद बनाता है, तो पानी जैसे बन जाते हैं, क्यों पत्थर जैसे बने? पत्थर बनने से हम किसी का रास्ता भी तो रोक सकते हैं। तो बह जाइए उस बहाव में जो अपने आप अपना रास्ता बनाता चलता है। सुप्रभात।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रिक्वेंसी से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त सजन राजपूत। बात करते हैं आज के दिन की। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज का दिन, जी हाँ, इतिहास में यदि आज के पन्ने खोले तो हमें दिखता है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के तिरंगे झंडे को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया। इसलिए आज के दिन को हम राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के तौर पर जानते हैं, मनाते हैं। जी हाँ, हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग जो कि हमारी शक्ति वीरता को दर्शाता है, बीच में सफेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है, और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, और सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र। चक्र की परिधि लगभग सफेद पट्टी के चौड़ाई के बिल्कुल बीचों बीच है, और चक्र में है 24 तीलियां जो कि हमेशा निरंतरता को दर्शाती है। हम हमेशा प्रगतिशील रहें, विकास करते रहें, इस बात को दर्शाती है। पिंगली वेंकैया ने इस ध्वज के संपूर्ण निर्माण को आकलित किया और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। तिरंगा जो कि हमें प्रिय है, इस तिरंगे के नीचे हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। ये ध्वज नहीं, ये हमारा प्रेम है, और इसके ये तीन रंग जो हैं हमेशा हमें खुशी से अपने भारत देश में जीने के लिए प्रेरित करते हैं। हम हमेशा अपने देश के प्रति सच्चे नागरिक के तौर पर उन्नति करते रहें, प्रयासरत रहें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से न्यूज ऑन एयर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं और आपके लगातार आते ये संदेश इस बात की खुशी देते हैं, इस बात का प्रतीक है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं दिल से दिल तक। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन। आज के दिन की जुड़ी दिन से जुड़ी कुछ और खास बातें करते हैं। देखिए, आज है 22 जुलाई जो कि साल का है 203वां दिन, यानी अब कितने दिन बचे हैं साल में शेष, तो जान लीजिए अब 162 दिन शेष बचे हैं। बुधवार का दिन है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है आज। हमने इतिहास को जब आज के दिन कंगाल कर देखा तो हमें 1947 को आज के दिन को जब यदि हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे तिरंगे को आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आज ही के दिन अंगीकार किया गया था। और आज हम एक खास दिन मनाते हैं, आम जो बन गया खास। जी हाँ, हम मनाते हैं आज नेशनल मैंगो डे, राष्ट्रीय आम दिवस, फलों के राजा आम। जी हाँ, इस दिन की शुरुआत की गई थी 1987 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा। विटामिन ए और सी से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टिंग, डाइजेशन जैसे कई सुपर पावर्स होती हैं मैंगो यानी आम में। और किस्मों की बात करें तो अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर, चौसा, क्या बात है ना। यही मुझे याद आता है

मैंगो मैन ऑफ इंडिया का नाम। जी हाँ, हाजी कलीम उल्ला खान, जिनकी प्यार, जिनके मैंगो के प्यार के लिए उन्होंने एक ही पेड़ पर 300 से, जी हाँ सिर्फ एक ही पेड़ पर 300 से अधिक किस्म के आम उगाने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। और अगर इनकी बात करें, यानी हाजी कलीम उल्ला खां की बात करें, तो ये हैं उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद से, और कई कई तरह के आम ये उगाते हैं। अलग अलग स्वाद, रंग और आकार वाले सैकड़ों आम के पेड़ हैं इनके पास। आम की खेती के लिए ये प्रसिद्ध हैं। और इस समय जब इन्होंने शुरुआत की, जानते हैं कितनी उम्र के रहे होंगे, कौन सी क्लास में थे? ये थे 7वीं कक्षा में, और बस 12 साल की उम्र और बचपन से ही आम की खेती में इन्होंने रुचि ली। तो आज हम आम डे मना रहे हैं, मैंगो डे मना रहे हैं, तो आप ज़रूर अपना फेवरेट आम खाइएगा और हमें भी भेज दीजिएगा। एक और दिन की बात करें तो आज ही के दिन यानी 22 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे। इस दिन को मनाने के पीछे जो हमारा मोटिव है, या हम कहें कि क्यों मनाते हैं इस दिन को, ताकि मस्तिष्क रोगों के प्रति जागरूकता सभी के बीच जो है पहुंचे, और सभी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, अपने ब्रेन हेल्थ को लेकर अवेयर रहें। 2026 की थीम की बात करें तो मस्तिष्क स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभता इस वर्ष की थीम है। ये विषय सभी के लिए, विशेष रूप से जो भी इस क्षेत्र से कम अवेयर हैं, उन्हें भी मस्तिष्क देखभाल से संबंधित सभी जानकारी उन तक पहुंचे और वे भी स्ट्रांग रहें ब्रेन के साथ, यानी उनका दिमाग बिल्कुल सही दिशा में, मानसिक स्थिति बेहतर रहे और कार्य करता रहे। तो मैंगो डे और वर्ल्ड ब्रेन डे के साथ आप आज की तारीख पढ़कर देखिए क्या है। 22/7, कुछ याद आया? ये है पाई की वैल्यू, पाई अप्रोक्सीमेशन डे भी हम आज सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ, क्योंकि पाई की अगर डेसिमल वैल्यू देखी जाए तो वो होती है 3.14, तो हम 14 मार्च को भी जो है वर्ल्ड पाई डे मनाते हैं, लेकिन हम आज जो मनाते हैं 22/7 पाई अप्रोक्सीमेशन डे। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो, ऐसे ही इन्फोटेनमेंट के लिए। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली के चाशनी गुणिस रजन।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन। और कुछ लिखते हैं हमारे एक श्रोता अनिल शर्मा सरिता विहार से। बरसात कहीं खुशी कहीं गम देख रहे हैं, बरसात नहीं तो दुखी बरसे तब खुश हैं। कुदरत की बनाए सीजन का तोहफा खूबसूरत दिया, बरसात में खुशियाँ हम लोग देखते हैं। जी हाँ, ये बरसात कभी कभी क्यों, हमेशा ही जब आती है कुछ खुशियाँ कुछ अपने साथ वो गम के आंसू छुपा जाती है। ठीक कहा ना मैंने? हमारे साथ हमारे कुछ और श्रोता भी जुड़ी हुई हैं। ये हैं सलमा बेगम, मोहम्मद इम्तियाज और ये सभी दिल्ली से हमारे श्रोता हैं। कुछ और श्रोताओं के नाम शामिल करते हैं। ये हैं डॉली और कस्बा गनौर यूपी से, फारूक अली खान, फैज़ी, फराज, फरहीन, फरहान और हैं राजकुमार जी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता, कृष्ण कुमार मिश्र जुड़े हैं हमसे दिल्ली से। श्रोताओं बस मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और इसी तरह कार्यक्रम जारी रहेगा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और फिर मिलती हूँ आपसे बिल्कुल यूँ गई और यूँ आई।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वाले मुकेश। जी आप जानते हैं मुकेश जो हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई? इनकी आवाज़ को सबसे पहले इनके एक रिलेटिव जो कि मोतीलाल जी थे उन्होंने सुना। ये एक शादी में गाना गा रहे थे, उसके बाद मोतीलाल जी इन्हें अपने साथ बम्बई, जी हाँ जिसे अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं, बम्बई ले आए, अपने घर रहने दिया और मुकेश के गायन अभ्यास का पूरा इंतज़ाम किया। उस दौरान मुकेश जो हैं वो हिंदी फिल्म निर्दोष में मुख्य कलाकार के तौर पर भी काम कर रहे थे, लेकिन एज अ सिंगर अभी भी उनकी शुरुआत करने में थोड़ा सा समय था। जी हाँ, लेकिन जब उन्होंने गाना शुरू किया तो हम सभी जानते हैं मुकेश राज कपूर की आवाज़ भी कहे जाते थे, संगीत प्रेमियों के दिल पर राज करते थे। राज कपूर के लिए उन्होंने दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, कहता है जोकर दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में आई, आवारा हूँ मेरा जूता है जापानी, कई सदाबहार गीत गाए। जी हाँ, और मैंने कोशिश की है कि जब मुझे मौका मिले 9 से 10 आपके लिए कार्यक्रम दिल के तराने लेकर आने का, तब मैं आपके लिए मुकेश के कुछ ऐसे ही 3 चुनिंदा गाने लेकर आऊँ। चलिए हम आते हैं इस कालजयी आवाज़ पर। मुकेश, जिनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था, पिता जोरावर चंद्र माथुर, जो कि पेशे से तो एक इंजीनियर थे, लेकिन देखिए मुकेश जिनका बचपन से ही गायन में, जी हाँ गाने में रुचि थी। मुकेश ने जो है अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और उनका दिल क्योंकि म्यूजिक के साथ कनेक्ट था। निर्दोष के बाद, हमने निर्दोष फिल्म तक की तो बात कर ली थी, तो उन्हें पहला मौका मिल गया था और गाना उनके करियर का पहला गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो, जी हाँ ये था इनके करियर का पहला गाना। माशूका, आहा अनुराग और दुल्हन में भी बतौर एक्टर उन्होंने काम किया, और गानों की बात करें तो ये फेयरलेस बहुत लंबी है और कई दशकों से, और अब उस दशक की बात करें जब मुकेश के गाने बजते थे तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते थे, अपने आप को गुनगुनाने से नहीं रोक सकते थे। पुरस्कारों की बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार जैसे कई अवार्ड्स मुकेश ने अपने नाम किए। हम आज भी मुकेश को उस जिंदा दिल आवाज़ के लिए याद करते हैं। जी हाँ, मैंने जैसे कहा मैं आपके लिए लेकर आऊँगी प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, वहाँ पर आपके लिए मुकेश के गाने ज़रूर प्ले करूँगी। आप सुनते रहिए दिल से दिल तक FM रेनबो को।

प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ दिल्ली के चाशनी को इस रजन आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। हमने आज 1923 में जन्मे फेमस सिंगर मुकेश की जयंती पर उन्हें याद किया और आज ही के दिन हम याद करते हैं 1933 में जन्मे हिम्मत शाह को। जी हाँ, प्रसिद्ध मूर्तिकार। 2 मार्च 2025 को पिछले साल ही ये इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आप जानते हैं कलाकार हमेशा अपने वक्त से आगे चलता है और आप भी अपनी ज़िंदगी के कलाकार खुद बनिए और वही रंग भरिए जो दिल को सुकून देते हैं। बात करते हैं हिम्मत शाह की। जी हाँ, हिम्मत शाह जो कि जन्मे गुजरात के लोथल में और इनकी रुचि कला में और हमेशा से रही। गुजरात लोथल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदू घाटी सभ्यता के काफ़ी अवशेष देखने को मिलते हैं और इसी वातावरण में पले बड़े हिम्मत शाह। बचपन में वे भावनगर चले गए और फिर वहाँ जाकर उन्होंने दक्षिणा मूर्ति से जो है वहाँ जाकर उन्होंने इस कला की प्रशिक्षण लिया और शुरुआत की कलाकार के तौर पर। जी हाँ, एक मूर्तिकार के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई और कई अवार्ड भी अपने नाम किए। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 1956 और 1962 इन्हें मिला। कालिदास सम्मान से 2003 में इन्हें सम्मानित किया गया और ललित कला अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2021 में इन्हें मिला। तो इस तरह से हम आज के दिन जो है हिम्मत शाह को भी याद करते हैं जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे और कई पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किए। इनकी आज है जयंती, जो जन्मे थे 22 जुलाई 1933 को।

कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ सृजन राजपूत। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन जो इस दुनिया को अलविदा कह गए उनका भी जिक्र करते हैं। मुथु लक्ष्मी रेड्डी जो कि एक चिकित्सक थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी और पद्म भूषण से सम्मानित थी। 1968 को मुथु लक्ष्मी रेड्डी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और एक और नाम इस लिस्ट में जोड़ते हैं 1933 में जो इस दुनिया को अलविदा कह गए, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता जी। हाँ, ये वो नाम है जो कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नायकों में शौर्य से लिया जाता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर है प्रोग्राम और सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से सृजन के साथ। आज अपना बर्थडे मनाते हैं अरमान मलिक। 22 जुलाई 1995 को अरमान मलिक, जी हाँ, ये आवाज़ जो कि आपके कानों में आ जाए तो आप भी उसे गुनगुनाने लगते हैं। संगीत निर्देशक डब्बू मलिक के बेटे हैं ये और इनके ब्रदर अमाल मलिक, जी हाँ, आप उन्हें भी ज़रूर सुनते होंगे। अरमान मलिक को आज हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और कार्यक्रम सुनते रहिए। अगला गाना आपके लिए चला रही हूँ मोहित चौहान की आवाज़ में।

दिल्ली छः से गाना मसक कली मोहित चौहान की आवाज़ में। ये दिल्ली है मेरी जान, मेरी जान तो दिल्ली ही है। दिल्ली की गलियों में एक अलग ही बात है, हर मोड़ पर बसी यादों की सौगात है। यहाँ धड़कनों में बसती है मोहब्बत की रवानी। दिल्ली सिर्फ शहर नहीं, ये है दिलों की कहानी। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। तो दिल्ली वालों, आज आपकी नींद, आज आपकी सुबह हुई है इस हल्की फुल्की बारिश से। कल के दिन की भी बात करें तो मंगलवार का दिन भी बादलों के साथ लुका छुपी में बीता और आज तो बारिश ने दस्तक दे ही दी। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन भी ऐसी ही रिमझिम फुहारों के साथ कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। हवाएं तेज ठंडी चल रही हैं तो मौसम में भी यानी कुछ डिग्री सेल्सियस कम होने से राहत तो मिली है। और अगर AQI की बात करें तो बारिश के चलते AQI में भी काफ़ी सुधार देखा गया। कल के दिन तक की बात करें तो कल का AQI 70 जो अंक है उसके साथ नोट किया गया, सेटिस्फेक्शन संतोषजनक माना जाता है इतना AQI भी होना। तो मुझे लगता है अब हम थोड़ी बेहतर सांस ले पा रहे हैं। सुन रहे हैं आप रेनबो इंफोटेनमेंट का खजाना। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुरु सृजन।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर सुन रहे हैं आप अपने दोस्त रजन के साथ और कार्यक्रम जारी रहेगा नेहा के साथ अगला घंटा और मैं लेकर आऊंगी 9:02 पर आपके लिए प्रोग्राम। जी हाँ, दिल के तराने, गाने नए पुराने, इन्फोटेनमेंट का खजाना एफएम रेनबो सुनते रहिए। एक बात के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, आज का दिन कितना कूल है ना, तो कोशिश कीजिएगा गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि क्रोध गुस्सा वो तेज हवा की तरह है, कुछ देर बाद ये ठंडा तो हो जाता है लेकिन इस गुस्से में आपकी जुबान से जो बातें निकली हैं, मान लीजिए वो शाखाएं और पत्ते जो टूट चुके हैं, क्या आप उन्हें दोबारा जोड़ पाएंगे? गुस्सा करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा। सुनते रहिए रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। पेश हैं एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कोयम्बतूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। वे कोयम्बतूर के जेकेएनएन नर्सिंग महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे तथा तिरुपुर में अविनाशी के लिंगेश्वर शिव मंदिर में दर्शन करेंगे। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा तक सब तक पहुंचाने के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारावार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि सरकार छात्रों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। सरकार ने बताया इस महीने की 1 तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिन के फिलीपींस दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मनीला में आसियान भारत, पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठकों में शामिल होंगे। उधर अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज़ जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। और अंत में चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। प्रतियोगिता के अन्य वर्गों में भी आज भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। तो ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: पता है क्या होता है, जब जब हमारी जिंदगी में बहुत ही खास दिन आते हैं ना, तो कुछ लोग उसे स्पेशल बनाने के लिए हमारे लिए बहुत सी चीजें करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बर्थडे है, तो आपके फ्रेंड्स जैसे ही आप जागते हैं सुबह, तो आपके लिए कुछ गाना गाते हैं या फिर आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। कितना अच्छा महसूस होता है।

स्पेशली तब जब हम सोकर उठें और एकदम से सरप्राइज मिल जाए। ऐसा ही एक सरप्राइज आज दिल्ली वालों के साथ साथ देश भर के कई हिस्से के लोगों को मिल रहा है, क्योंकि बारिश हमारा स्वागत कर रही है। सुबह जैसे ही हुई हमने देखा कि बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की मंद मंद बारिश हो रही है, और ये जो बारिश होती है ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा एहसास होता है। और जब मानसून की बारिश होती है तो लगातार इसके दर्शन हमें हो जाते हैं। तो चलिए इस बारिश के साथ हम और आप मिलकर शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का दूसरा घंटा आकाशवाणि दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिल्ली एनसीआर में आप हमें इस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से सुन रहे हैं और अलग अलग माध्यमों से विश्व भर में आप आकाशवाणी दिल्ली का ये चैनल सुन रहे हैं। मेरा नाम है नेहा और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के सफर में आपके साथ रहूंगी। बहुत सी जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा होंगी, अमेजिंग म्यूजिक आपके लिए लाइनअप करके रखा है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी के बारे में बात करेंगे कुछ ही देर बाद। आप कहीं ना जाएं, सुनते रहें एफएम रेनबो दिल्ली।

जब मौसम अच्छा हो जाए तो बस अच्छे अच्छे गाने सुनने का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है, और जब बारिश लगी हो तो और मज़ा आ जाता है, मौसम अच्छा हो जाता है। और आपने देखा कि तापमान में कितनी गिरावट आ गई है, दिल्ली एनसीआर की खास बात करें तो, और देश के कई हिस्सों में हमने तापमान में गिरावट देखी है। फिलहाल दिल्ली के टेम्परेचर की अगर बात करें तो फिलहाल अभी राइट नाउ द टेम्परेचर इज़ एट 29 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही अमेजिंग सा एक नंबर है, और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस पर आज जाने का अनुमान है। और कल भी हमने देखा था कि बादल छाए रहे थे और कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश की तो खबर नहीं आई है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हमने कई हिस्सों में दिल्ली शहर में आसपास देखी है, और आज भी ऐसा ही होगा। कई जगहों पर बारिश ऑलरेडी शुरू हो गई है, कहीं पर मौसम बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश का अनुमान बना रहेगा। तो आप सभी इसको एंजॉय करें, और ऐसे ही आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से हम आप तक जानकारियों का पिटारा बिल्कुल पहुंचाते रहेंगे, और साथ में बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें भी म्यूजिक के साथ साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सुनिए ये अमेजिंग सा गाना सोनू निगम की आवाज में, और इसके बाद करेंगे बहुत खास बात आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर।

रेडियो प्रेमी के लिए ये धुन अनजानी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आवाज कितनी दूर तक जा सकती है? शायद वहां तक जहां रास्ते भी नहीं पहुंचते। आज है 22 जुलाई, लेकिन कल 23 जुलाई भारतीय रेडियो प्रसारण की दुनिया में एक ऐतिहासिक तारीख है। वर्ष 1927 में इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बंबई स्टेशन से भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसने आवाज के माध्यम से करोड़ों लोगों तक सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और संवेदनाओं को पहुंचाया। वर्ष 1930 में प्रसारण सेवा भारत सरकार के अधीन आ गई और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जानी गई। फिर 8 जून 1936 को इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। इसके बाद 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए आकाशवाणी नाम अपनाया गया और 1957 में विविध भारती की शुरुआत ने रेडियो को देश के घर घर तक पहुंचा दिया और ये आवाजें आप सभी के, हम सभी के दिलों में गूंजने लगी। आज ट्रांजिस्टर से लेकर एफएम और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक तकनीक भले ही बदल गई हो, लेकिन रेडियो की सबसे बड़ी ताकत आज भी वही है, उसकी विश्वसनीयता, उसकी आत्मीयता और लोगों से दिल का रिश्ता। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हम उन सभी प्रसारणकर्ताओं को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी आवाज से इस सफर को आगे बढ़ाया, और सबसे बड़ा धन्यवाद आप श्रोताओं का। जी हाँ, क्योंकि आपका विश्वास, आपका साथ और आपका स्नेह ही हमारी आवाज को सार्थक बनाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हो ही रही हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो शो है ना, बिना किसी तैयारी के अपने आप एक रेन स्पेशल, बारिश स्पेशल शो बनता जा रहा है। तो बारिशों की बात हो रही है, हालांकि बारिश आज है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि आगे आने वाले हफ्तों में भी बारिश बनी रहेगी। तो आपको कहाँ जाना होगा दिल्ली NCR में घूमने फिरने के लिए? कुछ शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, मनोरंजन आप अपना कर सकते हैं। जब घूमने निकल जाते हैं तो मनोरंजन अपने आप हो जाता है। तो आपको बता दें, दिल्ली NCR के सभी श्रोताओं के लिए ये स्पेशल चीज़ें हम बताते हैं, जानकारियाँ बताते हैं। तो आप जा सकते हैं मॉनसून मेला में, जिसकी शुरुआत हो रही है 6 से 17 अगस्त 2026 के बीच में, और सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक यहाँ पर एंट्री रहेगी। और आपको कुछ शुल्क देना होगा और उसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, पार्किंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब बात यह है कि कहाँ जा रहे हैं और वहाँ क्या मिलेगा देखने और खरीदने के लिए। तो यहाँ पर आपको फूड कोर्ट मिलेगा, इसके अलावा कल्चरल परफॉर्मेंसेस होंगी। ओडिशा का एक बहुत ही खास गोती पुआ डांस है जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा घर से जुड़ी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ पर एग्जिबिशन भी देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। अच्छा, अब जाना कहाँ है, मुद्दे की बात तो ये है। तो आप जाइए नेचर बाज़ार, जो अनुव्रत मार्ग अंधेरिया मोड़ नई दिल्ली पे है, आप जा सकते हैं। और आपकी अगर मेट्रो से जाने की प्लानिंग है तो कुतुब मीनार और छतरपुर, ये दो मेट्रो स्टेशन हैं जो आपको सबसे नज़दीक पड़ेंगे। और एक बार फिर से बता दूँ, 6 से 17 अगस्त यानी कि नेक्स्ट मंथ आप इस इवेंट में जा सकते हैं, और फिर देखिए कितना मज़ा आता है। मुझे ज़रूर बताना जब भी हम आपको कोई जानकारी देते हैं, और उस जानकारी को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका अनुभव कैसा रहता है, गुड और बैड, तो हमें ज़रूर आप बताया करें, मैसेज करके, कॉल करके, ईमेल्स करके, लेटर्स लिख के, कितनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, लेटर्स आपने आखिरी बार कब लिखे थे, ज़रा बताना मुझे। आदत खत्म होती जा रही है चिट्ठियां लिखने की, ये जो कट कट कट कट ऐसे मोबाइल पे उंगलियां चलती हैं ना, और कीपैड पे जब चलती हैं, कीबोर्ड पे चलती हैं, तो फिर लिखने की आदत ख़त्म हो जाती है। हैंड राइटिंग कितनी ख़राब हो जाती है ना इस चक्कर में। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ना, मेरी हिंदी और इंग्लिश की दोनों ही हैंड राइटिंग सच में मोतियों जैसी थी। मेरी टीचर्स अगर कहीं सुन रही होंगी तो दे'ल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट कि कितनी अच्छी हैंड राइटिंग थी। लेकिन अब तो भाई साहब, पेन पकड़ने में मौत आती है, ऐसा लगता है कि लिखा ही नहीं जाएगा क्योंकि आदत ख़त्म हो गई है। बहरहाल, अपनी आदतों को हम ज़रूर सुधारेंगे। और अगर आप बारिश में बाहर निकले हैं और साथ में आप ड्राइव कर रहे हैं, धीरे धीरे ड्राइव कीजिएगा। और क्या करेंगे, कुछ ऐसे गाने, दो गाने बैक टू बैक आपके लिए लगा रही हूँ जो आपकी ड्राइव को अमेजिंग बना देंगे, बहुत बहुत मज़ा आएगा। और अगर कहीं ट्रैफिक भी है ना, तो भी परेशान मत होना, गानों का आनंद लीजिए और चिड़चिड़ाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
1: मुझे शर्म आती है।
2: देखो, तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: आई लव यू।

साथियों, दिल्ली में देश के सबसे बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन होने जा रहा है और ये रक्तदान शिविर भारतीय सशस्त्र बलों और थैलेसीमिया के योद्धाओं को समर्पित किया जाएगा। इस मेगा रक्तदान अभियान के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक भव्य तिरंगा बाइक

0: रैली का भी आयोजन हो रहा है। अब तारीख की बात करें तो दिल्ली के जापानी पार्क में 2 अगस्त को इस मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन होगा और आयोजकों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य देश में स्वैच्छिक रक्तदान को जन आंदोलन बनाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाने के पुनीत कार्य में आम लोगों को जोड़ना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा काम है। अगर आप इस इवेंट में शामिल हो सकते हैं तो आपको जरूर होना चाहिए और उसके साथ साथ जो खुशी आपको मिलेगी, बस वो खुशी आप अपने मन में रखिए और हाँ, दूसरों के साथ भी आप उस खुशी को जरूर बांटिएगा।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

सुबह के 8:53 आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मेरा नाम है नेहा और दिल्ली NCR में आप हमें 102.6 के माध्यम से सुन रहे हैं और अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं जिनके जरिए आप पूरे भारत के साथ साथ विश्व भर में हमें सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया है आपसे अनुमति लेने का। जाने से पहले आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में। हालांकि ये बात आप जान लीजिए कि आकाशवाणी दिल्ली का हर प्रसारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें आप फोन या मैसेज के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी आज 3 से 4 के बीच में हमारा जो लाइव फोन इन कार्यक्रम रहेगा रेडियो डॉक्टर, उसका विषय क्या रहेगा। स्पेशल प्रोग्राम रहेगा आज ऑन वर्ल्ड ब्रेन डे और ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल आज का विषय रहेगा, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स होंगे डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय,

आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से, और साथ में हमारी दूसरी विशेषज्ञ रहेंगी डॉक्टर मीना चंद्रा, आप प्रोफेसर एंड एचओडी साइकाइट्री हैं, हेड ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है आकाशवाणी दिल्ली का, आप इसे ज़रूर सुने और फ़ोन और मैसेजेस के माध्यम से आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है या किसी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, कोई सुझाव आपको चाहिए, तो आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बाकी कैसे शामिल होना होगा वो कार्यक्रम के दौरान आपका ज़रूर बताया जाएगा। और अब आपको बता दें कि अगले घंटे ठीक 9 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद 9 से 10 के बीच में प्रोग्राम रहेगा, वही आपका और मेरा दोनों का पसंदीदा प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। अब जैसा नाम वैसा काम होगा भाई, मज़ा आएगा, कुछ पुराने गाने सुनने को मिलेंगे। नए गाने तो हमारा कार्यक्रम में सुनते हैं FM रेनबो दिल्ली पर, लेकिन पुराने जो गाने होते हैं ना, वो किसी किसी कार्यक्रम में सुनने का अवसर मिलता है, तो साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। और पता है मैं बड़ी कंफ्यूजन में थी, मैंने कुमार सानू की आवाज़ के 2 गाने निकाल के रखे थे और इतना मेरे को सोचना पड़ गया कि आखिर कौन सा प्ले करूँ एज द लास्ट सॉन्ग फॉर टुडेज प्रोग्राम, बट डिसीजन तो लेना ही था और फिलहाल मैंने ये गाना आपके लिए चुन लिया है। धुन से आप पहचान जाइए, मुझे पता है आप बहुत बड़े म्यूज़िक लवर हैं और बहुत बड़े फिल्मची भी हैं आप। इसी गाने के साथ आप सभी को छोड़े जा रही हूँ, बहुत जल्द एक और कार्यक्रम में आपके साथ फिर भेंट होगी। तब तक आप सभी बहुत खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, अपने आसपास सफाई ज़रूर बना के रखिएगा, और ये एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो हमें करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल्ली केंद्र से लीजिए प्रस्तुत हैं सुबह 9 बजे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया है। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कोयंबटूर और त्रिपुर के दौरे पर रहेंगे। वे कोयंबटूर में जेकेएनएन नर्सिंग महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे तथा त्रिपुर में अविनाशी के लिंगेश्वर शिव मंदिर के दर्शन करेंगे। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। तीन दिन के इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवाड़ का कर्नाटक के कारावार में जलावतरण करेगी। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर कर दी है। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिन के फिलीपींस दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मनीला में आसियान भारत, पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठकों में शामिल होंगे। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति हुड्डा से होगा। प्रतियोगिताओं के अन्य वर्गों में भी आज भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, एक बार फिर मैं सृजन राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी का आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी पर। प्रोग्राम लेकर आई हूँ दिल के तराने, गाने नए पुराने, जी हाँ बैक टू बैक हिट्स, और साथ में आपके लिए ओल्ड इज गोल्ड 3 बेस्ट सॉन्ग, जैसे मैंने पहले कहा था, लेकर आई हूँ आज 3 खास मुकेश के गाने। तो चलिए कारवा शुरू करते हैं। सबसे पहला गाना गुनगुन गुना रे, आप खुद ही सुन लीजिए और गुनगुनाइए उदित नारायण की आवाज में फिल्म अग्निपथ से।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रही हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रिस रिजन और प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो चलिए मैं भी पॉइंट पर आती हूं और आपसे दिल्ली के मौसम को बयां करती हूं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आज क्योंकि राहत है 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, मिनिमम 28 ही जाएगा। और राइट नाउ बिल्कुल ठंडा ठंडा सा जो आप फील कर रहे हैं ना, ये है 30 डिग्री का टेम्परेचर। तो आज बारिश होने के आसार सुबह से हो भी रही है कई कई जगह, और शुरुआत तो बारिश से ही हुई है। पूरा दिन आज ऐसे ही बारिश बादलों की लुका छुपी रहने वाली है। तो आप तैयारी के साथ निकलिएगा और सुनते रहिएगा एफएम रेनबो। जी हाँ, बारिश से पहले कुछ ऐसे ही बिजली गड़गड़ाने की आवाज भी तो आती है। लीजिए सुनते हैं गाना शिल्पा राव की आवाज में।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, और अब वो गाना जिसका आप सभी को है इंतजार। प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए फिल्म अनाड़ी से किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसारिया मुकेश की आवाज, और फिल्म का इस गाने का पिक्चराइजेशन राज कपूर साहब पर है। फिल्म में नजर आते हैं राज कपूर, नूतन, नाजिर हुसैन, ललिता पवार, मोतीलाल, शुभा खोटे, मुखरी और हेलन। म्यूजिक इस गाने का दिया है शंकर जय किशन ने और लिरिक्स लिखे हैं शैलेंद्र ने। आइए सुनते हैं इस एवरग्रीन सॉन्ग को।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने, आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन। और अब एक और वो गाना जिसका आप सभी कर रहे हैं इंतजार, ये गाना फिल्म धर्म करम से, जो कि गाया है मुकेश ने, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल। फिल्म का म्यूजिक दिया है, म्यूजिक डायरेक्टर है RD बर्मन, लिरिक्स लिखे हैं वजरून सुल्तानपुरी ने और पिक्चर जी हाँ राज कपूर साहब। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस गाने को भी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है दिल के तराने गाने नए पुराने। ट्रैफिक एडवाइजरी जो है कई रिलीज की जा रही हैं, आप सभी से समय लेकर निकलने का अनुरोध करती हूं मैं, क्योंकि अगर देखें तो अभी फिलहाल ट्रैफिक दिखा रहा है विकास मार्ग टुवर्ड्स आईपीओ। आप इस एरिया में अगर जाना है तो आप वैसे तो कोई ऑल्टरनेटिव रूट चूज कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम लेकर चले, और अगर सेंट्रल दिल्ली की तरफ आना है तो भी आपको कई रूट्स पर डाइवर्जन और रिस्ट्रिक्शंस मिल सकती हैं, इसलिए आप अपनी जर्नी अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। अगला गाना आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, जी हाँ, मुकेश की आवाज़ है, फिल्म शोर का एक प्यार का नगमा है, गाने के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए इस एवरग्रीन सॉन्ग को, इस नगमे को एंजॉय करते हैं, सुनते हैं और इस आवाज़ में, इस दिलकश आवाज़ में खो जाते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 102.6 की फ्रीक्वेंसी से न्यूज ऑन एयर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों से हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल कार्यक्रम है दिल के तराने, गाने नए पुराने, और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरिस रचन। अगला प्रोग्राम 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक आ रहेगा, मैचलेस म्यूजिक। ईशानी मित्तल इस प्रोग्राम को आप सभी के लिए लेकर आएंगे, और उसके बाद 11:02 पर बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर रश्मि गुप्ता आ जाएंगी स्टूडियो में। रेनबो हेल्पलाइन समय रहेगा 1:02 का, बात करेंगे आज करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th एंड 12th। एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रा शेखर से ये बातचीत करेंगी रश्मि गुप्ता। आशियाना सुन सकते हैं आप 2:00, और इसके बाद का कार्यक्रम 3 से 4 रेडियो डॉक्टर आज स्पेशल ऑन वर्ल्ड ब्रेन डे पर बात होगी विषय ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल वर्षने और डॉक्टर मीना चंद्रा को आप सुनेंगे, और आप जरूर कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स अवेलेबल रहेंगी 011-234-210-80, 234-210-82। अल्फा जेन कार्यक्रम का समय रहेगा 4:02 का, स्वाति गुप्ता और ऋचा वर्मा इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी। 5:02 पर लेकर आएंगे प्रोग्राम सैटेलाइट, श्वेता शर्मा लेकर आएंगी ये प्रोग्राम। सीमा लेकर आएंगी सीमा सती मैसेज मसाला मिक्स 6:02 पर, और 7:02 पर ज्योति अलावत के साथ सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक आर नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम्स, नॉर्थ ईस्ट सॉन्ग्स पर बेस्ड होगा ये प्रोग्राम। और इसके बाद समय होगा आपकी याद आती रही म्यूजिक मस्ती, और साथ ही वेस्टर्न म्यूजिक आर भी रहेगा 10:00 ज्योति के साथ रेनबो क्लासिक्स, और आज रात रंगे महफिल 11:02 पर आपके लिए सजाएंगी विनीता बेदी। तो आप यूं ही सुनते रहिए, जुड़े रहिए रेनबो के साथ।

यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं अंधेरों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बेहतरीन दिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं दिल्ली की चाशनी कुरे सृजन अब लेती हूँ आप सभी से अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, आई होप योर डे हैज बिगन ऑन अ स्ट्रेस फ्री नोट। इफ द रेनी वेदर हैज एडेड अ लिटिल कियोस योर मॉर्निंग, डोंट वरी, वी हैव गॉट एन आवर ऑफ टाइमलेस क्लासिक्स टू टर्न थिंग्स। वेलकम टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 एफएम रेनबो। आई एम अशानी एंड लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद जस्ट टू वर्ड्स, हकुना मटाटा।
2: हकुना मटाटा, What a wonderful phrase! Hakuna Matata!

0: It's time for a short break, but don't go anywhere. We will be right back only on 102.6 FM Rainbow.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 102.6।
4: Welcome back. Hope you are enjoying the Matchless Music Hour with me, Ashani. So, has anyone here watched the Odyssey yet? It's finally in theaters and I've been hearing so much about it. And if you're a Marvel fan, you have probably started counting down to Spider-Man Brand New Day, which arrives at the end of this month. It actually got me thinking, we all love stories that keep us hooked, don't we? But sometimes you don't need a movie screen for that. This next track plays out like a little film of its own, unfolding from beginning to end. Let's hear The Night Chicago Died by Paper Lace.

0: Saira Banu, you are absolutely right. Congratulations, and now let's take a short break here.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: FM Rainbow 102.6.
0: Welcome back to 102.6 FM Rainbow. This is the Matchless Music Hour with Ashani. Today is 22nd of July and it's the birthday of Don Henley, the legendary drummer, co-founder and one of the lead vocalists of the Eagles. His voice and songwriting helped create some of the band's most iconic hits. Happy birthday, sir. So what better way to mark the occasion than with this song that's become a rock anthem across generations. Here's The Eagles with Hotel California, featuring Don Henley not only on drums but also on lead vocals.

बिफोर द सॉन्ग आई आस्क यू विच बॉलीवुड पेयर कौन है जो सपनों में आया वॉज पिक्चराइज ऑन. टाइम फॉर द आंसर. इफ यू गेस्ट राजेंद्र कुमार एंड

0: Shout out to Dolly for answering the question that I asked. Congratulations, you are our classics queen for the day. She's also saying, good morning Ishani, how are you? It's great to hear you after a long time. Nice tracks played by you. Well, I'm great after listening to, after reading your message. And I'm so glad that you are tuned in and listening to this program. So let's take a short break here now.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर

देश प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत और ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक में आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जल अवतरण करेगी। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना को मंजूरी दी है। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने फिलीपींस के मनीला में आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कहा है कि उथल पुथल और व्यवधानों के इस दौर में सबसे अधिक असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। अमरीका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने हॉर्मुज जलडम रूम मध्य में वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए लगातार 11वीं रात हवाई हमले किए। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। यह दिन फलों के राजा आम और भारत की समृद्ध आम परंपरा के रूप में मनाया जाता है। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला उन्नति हुड्डा से होगा। प्रतियोगिता के अन्य वर्गों में भी आज भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगी। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से आपके साथ धमाल मचाने, कमाल दिखाने और आपसे करने बातें बेमिसाल पहुंच गई है आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए बॉलीवुड की चटपटी बातों के साथ। कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी फिल्म कब आने वाली है, कौन सा नया गाना लॉन्च हो गया है, या फिर किस फिल्म स्टार या फिल्म सेलिब्रिटी का हम मनाएंगे आज बर्थडे, और कौन सा होगा आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा सवाल जिसका जवाब देकर आप बन जाएंगे हमारे लिसनर बेमिसाल। जी हाँ, बॉलीवुड सरताज का क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान। तो जल्दी जल्दी जल्दी से आ जाइए अपने अपने रेडियो सेट्स के पास, क्योंकि आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि है आपके लिए लेकर आई है बॉलीवुड ट्रेल्स का धमाल।

जी हाँ बिल्कुल, साथ निभा जाइए, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि बॉलीवुड ट्रेल्स की जो ट्रेन है ना वो चल पड़ी है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर, और आपके साथ हूँ मैं, आपके अपनी रॉकिंग रश्मि। दोस्तों बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल सी पहेली आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत ही आसान सा सवाल रहेगा, लेकिन सबसे पहले जो न्यूज़, जो खबर मैं आपको देने वाली हूँ ना, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जनरली कहते हैं कि जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट मानी जाती है या बॉक्स ऑफिस पर चलती है ना, वही असली हिट मानी जाती है। लेकिन आजकल ट्रेंड ये हो गया है कि भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल तौर पर वो फिल्म फिसड्डी रह गई हो, लेकिन ओटीटी पर अक्सर उसको अच्छा रिस्पांस मिलता है। शायद लोग वही वही मूवीज़ देख देख कर बोर हो गए हैं, तो उन्हें लगता है चल भाई घर बैठे ही तो देख रहे हैं या कहीं पर ही तो टाइम ही तो पास करना है, चलो ये मूवी भी देख लेते हैं। लेकिन किसी किसी मूवी को उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि वो अपनी कमर्शियल वे में जो अनसक्सेसफुल रही या उतनी हिट नहीं हुई या नहीं चली ना, वो उस दुख को भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है पिछले दिनों रिलीज हुई

आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म एक दिन के साथ। जी हाँ बिल्कुल, 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी इस फिल्म को, लेकिन उसके बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म नहीं चल पाई और इसको तमगा दे दिया गया महाफ्लॉप का। और लेकिन उसके बावजूद अब इस फिल्म ने जो OTT के ऊपर जब अपनी एंट्री मारी, जी इसमें अभिनेता जुनैद खान थे और साथ में थी साई पल्लवी। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही पहचाना, आमिर खान के बेटे उनके साहबजादे जुनैद खान इसमें फर्स्ट अपनी डेब्यू फिल्म के साथ आए थे और साई पल्लवी ने उनका साथ दिया था। इस लव स्टोरी ड्रामा फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी हाइप भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिटिक्स ने और जनता ने इसको अपने दिल में जगह नहीं दी और यही वजह रही कि वो बहुत ही जल्दी सिनेमाघरों में से गायब हो गई। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जब ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया तो आते ही फैंस की फेवरेट बन गई। हाँ, और पता है आपको, इस समय ये टॉप 10 ट्रेंडिंग मूवीज में नंबर 2 पर है। तो यदि आपने भी अभी तक ये नहीं देखी है ना, तो बिल्कुल देख सकते हैं, ट्राई मार सकते हैं। और अच्छा, वजह ये भी रही थी उस समय उस फिल्म के ना चलने की कि लोगों ने इसे ये कहा था कि 2016 में जो वन डे रिलीज हुई थी, एक थाई फिल्म वन डे, ये उसका रिमेक थी। तो शायद ये भी एक वजह रही कि लोग उससे कंपैरिजन किया होगा। लेकिन अब क्योंकि OTT पर आपको देख को मिल रही है, तो भाई ट्राई मार लीजिए, अच्छी फिल्म लगेगी आपको तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सुना रही हूं इसी फिल्म का ये खूबसूरत गाना हमारे बहुत ही बेहतरीन सिंगर अरिजीत सिंह की आवाज में। साथ में इनके कौन कौन है, साथ में है नेहा करोड़ और ऋषि सिंह भी हैं।

लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए।

0: बेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वेल, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स अपनी होस्ट एंड दोस्त रॉकिंग रश्मि के साथ ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन एफएम रेनबो 102.6 पर। दोस्तों, बहुत ही इंतज़ार रहा लोगों को इमरान हाशमी के वापस लौटने का। जी हाँ, बहुत लंबा समय हो गया है कि जब इमरान हाशमी किसी फिल्म में नज़र आए हैं, और अब जब उनकी आवारापन 2 का टाइटल ट्रैक रिलीज़ हो गया है तो लोगों को बहुत ही मतलब इंतज़ार है कि जल्दी से फिल्म रिलीज़ हो जाए और इमरान हाशमी को वो एक बार फिर से पर्दे पर देखें। लेकिन ख़ास बात इस गाने के साथ में ये भी है कि लंबे समय के साथ ही लोग फैंस बल्कि ये कहें कि अरिजीत सिंह की आवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे, उनके प्लेबैक सिंगिंग का वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। और ये गाना रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर कुछ इस कदर छा गया कि गाना रिलीज़ होते ही सब तरफ इसकी तारीफ़ों की जो भरमार हो गई है ना, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और एक बार फिर से अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ के साथ जादू बिखेर दिया है। और साथ साथ इस फिल्म में अमाल मलिक ने जो म्यूज़िक दिया है ना, इस गाने में जो म्यूज़िक दिया है, उसने महफिल लूट ली है। आवारापन 2 का ये गाना, ये आवारापन अरिजीत सिंह ने गाया है, और साथ साथ ये इमोशनल सॉन्ग आशिकों का एंथम बन सकता है, जिसे सुनकर ना ऑडियंस इमरान हाशमी के उस एरा में पहुँच गई है जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। हालांकि इस फिल्म में दिशा पाटनी की झलक लोगों को देखने को नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो मेन जो मतलब था वो किससे था, इमरान हाशमी से और अरिजीत सिंह के, और वो हमें मिल गया, है ना। गाने की यदि बात करें तो प्यार, इमोशंस और अधूरे रिश्तों के दर्द को बयां करती है, लेकिन बोलों की यदि बात करें तो वो लिखे हैं रश्मि और विराग ने। हाँ हाँ, ये वाली रश्मि नहीं है, वो दूसरी रश्मि है, ठीक है ना। रश्मि और विराग, आपको भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका गाना इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, लोगों के बीच अपनी पहचान बना रहा है। और देखिए किस तरह से ये जो इनका किरदार है इमरान हाशमी का, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि वो एक बार फिर से शिवम पंडित के किरदार में नज़र आ रहे हैं और अपनी पुरानी यादों में खोए हुए हैं, जिसमें वो आलिया हमीद की यादों के साथ वो किरदार जी रहा था। और पहली फिल्म में उन्होंने ये किरदार श्रेया सरन ने निभाया था, लेकिन इस बार रहेंगी दिशा पाटनी। कोई बात नहीं दिशा, आपका भी नंबर आएगा, मे बी कि नेक्स्ट गाना रिलीज़ हो उसमें हमें दिशा पाटनी भी नज़र आए, लेकिन फ़िलहाल आप इस गाने को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये गाना नहीं है, मैं आपको उस गाने के साथ लेकर चल रही हूँ एक और टॉप ट्रेंडिंग गाने में। फिल्म का नाम है टॉक्सिक, जो जल्दी ही रिलीज होने वाली है, लेकिन ये टॉक्सिक का गाना इस समय ट्रेंड कर रहा है विशाल ददलानी की आवाज़ में। सुनिए, एंजॉय कीजिए और वापस आइए, क्योंकि लेकर आ रही हूँ आपके लिए अब की बार मैं आपका अपना क्वेश्चन, बॉलीवुड सवाल, बॉलीवुड सरताज बनाने के लिए आपको।

0: जी हाँ, ये था टॉक्सिक का गाना विशाल ददलानी की आवाज़ में, माफ़ कीजिएगा, विशाल मिश्रा की आवाज़ में, आई एम सो सॉरी। पहले भी मैंने गलती की और इस बार फिर से मैंने विशाल ददलानी कह दिया, जबकि ये थी विशाल मिश्रा जी की आवाज़। बहुत ही अनोखी, बहुत ही अलग आवाज़ है, लेकिन इनके चाहने वाले भी ना कम नहीं हैं, और इन्होंने वाकई में इस तबाही के साथ में तबाही मचा दी है, बॉक्स ऑफिस पर एक ट्रेंड बना दिया है। कि फिल्म का जो क्रेज़ है लोगों के बीच में वो वाकई में बिल्कुल सही है, इसकी वाइब्स जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। फिलहाल हमारी वाइब्स ये कह रही हैं कि छोटा सा ब्रेक ले लो, और ब्रेक के बाद वापस आके जल्दी से हमारे लिसनर्स को बता दो कि क्या है आज का हमारा सवाल।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: जी हाँ, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एफएम रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड रील्स, और आज बॉलीवुड सरताज के लिए जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ना, बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि लोगों को, हमारे लिसनर्स को ये कहें कि हमारे ऑडियंस को ये कहें कि इमरान हाशमी के फैंस को इंतज़ार था उनकी आवारापन 2 का, तो आपको सिर्फ इतना बताना है यदि आप वाकई में इमरान हाशमी के फ़ैन हैं और आपने आवारापन 1 यानी कि फर्स्ट मूवी देखी है, तो वो कौन से साल में रिलीज़ हुई थी। आवारापन ओरिजिनल जो फिल्म है, फर्स्ट फिल्म जो है, वो कब यानि कि कौन से ईयर में रिलीज़ हुई थी, आपको ये बताना है अपने नाम, अपने शहर के नाम और अपने फ़ोन नंबर के साथ। हमें उसे भेज देना है 9868107070 पर। तो देखते हैं आज कौन बनता है बॉलीवुड सरताज।

जी हाँ बिल्कुल, आपने भले ही आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया हो, लेकिन ये भी सच है कि हर आशिक जो है वो टूटे हुए दिल वाला नहीं होता। कुछ जो होते हैं ठीक है, होते हैं दिल जले, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही खुशनुमा होते हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी ना खुश मिजाज बना देते हैं, जस्ट लाइक अस। क्या कहते हैं, अपनी तारीफ अपने आप कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल कर रही हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात है, सुबह का मौसम है, सुबह का टाइम है और खूबसूरत सा मौसम है, बारिश की बयार है और साथ में आपका और हमारा साथ है। बॉलीवुड ट्रेल्स में हम आवार आप कर रहे हैं गुफ्तगू थोड़ी थोड़ी। खैर आज बहुत ही ख़ास दिन है और जैसा कि मैंने अभी आपसे सवाल भी पूछा है, पहले सवाल की ही बात कर लेते हैं। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप इस पर अपने सवाल का सही जवाब लिख सकते हैं। सवाल ये है कि आवारापन कौन से ईयर में रिलीज़ हुई थी, है ना। आप भले ही दिन ना बताएं, भले ही डेट ना बताएं, लेकिन ईयर आप बता दीजिए, उसी से मैं खुश हो जाऊंगी, समझ जाऊंगी कि आप वाकई में इमरान हाशमी के फैन हैं और आप मैं आपकी फैन बन जाऊंगी, राइट। तो जल्दी से लिखकर भेज दीजिए इसे। और जो मैंने कहा कि आज बहुत ही खास दिन है, वो खास दिन इसलिए है कि आज हम एक ऐसे कलाकार का, एक ऐसे शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं, या ये कहें कि उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी आवाज करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजती है। जी हाँ, हिंदी फिल्म के, हिंदी सिनेमा के महान प्लेबैक सिंगर मुकेश। एक 4 साल लंबे उनके करियर में उन्होंने ऐसे गीत गाए जो आज भी सदाबहार माने जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि उनका हर गीत ना श्रोताओं के यानी सुनने वाले के दिल में एक खास जगह बना लेता है। ख़ास बात यह भी थी मुकेश साहब में कि उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र के साथ गाना शुरू कर दिया था और शायद गायन का या गीत गाने का जो उनका जुनून था ना, इसी ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। लेकिन ये भी सच है कि उनकी आवाज़ से प्रभावित होकर ना जो मोतीलाल जी थे, अभिनेता मोतीलाल, आपने ज़रूर उन्हें सुना होगा, उन्हें संगीत की विधि

ट्रेनिंग दिलवाई मुंबई लेकर आए उन्हें और वहीं से इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। दिल ही बुझा बुझा हो, ये इनका पहला गाना था मुकेश साहब का, और इसी ने लोगों का ध्यान खींच लिया इनकी आवाज़ की तरफ। हालांकि कहा यह भी जाता है कि इन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया, जैसे कि माशू का, आहा, अनुराग, दुल्हन, जिन्होंने देखी है वो डेफिनेटली इस बात को जानते होंगे कि मुकेश ने गायकी के अलावा अभिनय भी किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सक्सेस थी ना, वो उन्हें प्लेबैक सिंगिंग में मिली। बहुत फेमस गाने हुए हैं, बहुत फेमस, आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, मेरे ये पतलून हिंदुस्तानी, है ना, दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, दुनिया बनाने वाले, कितने ज़्यादा, मतलब ऐसे गीत जो मुझे लगता है उनकी आवाज़ के साथ साथ ना गीत भी अमर बन गए हैं। और साथ में ख़ास बात ये भी रही कि मुकेश की जो आवाज़ थी ना, वो राज कपूर की आवाज़ बन गई थी, उनकी फिल्मी आवाज़ बन गई थी गानों के मामले में। और कह सकते हैं कि एक 40 साल लंबे करियर में उन्होंने 200 से ज़्यादा जो गीत गाए ना, वो केवल और केवल उनकी गायकी का जादू था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें हमने बहुत जल्दी खो दिया, वरना बहुत सारे ऐसे गाने थे जो शायद आज भी हमारे साथ होते मुकेश जी की आवाज़ में। तो यहाँ आज मैं आपको वो गीत सुना रही हूँ जो उनके दर्द भरे गीतों से थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही लोगों के बीच पहचान छोड़ी इस गीत के ज़रिए भी मुकेश साहब ने। दिल ही तो है फिल्म का ये ट्रैक सुनिए और एंजॉय कीजिए, वापस आइए एक बार फिर से बॉलीवुड रील्स में, क्योंकि मुकेश जी के साथ साथ आज एक और सिंगर हैं जिनका बर्थडे होता है, उन्हें भी हम याद करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे उनका बर्थडे हमारे FM रेनबो पर।

0: और आप भी यदि किसी और चैनल पर आंसर दे देंगे ना तो मुझे भी मुश्किल होगी। तो याद रखिएगा 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको देना है आज का सही जवाब और ये बताना है कि वो कौन सा साल था जब आवारापन रिलीज हुई थी।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: जी हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज एक और सिंगर हैं, उनका भी आज बर्थडे होता है। और ये केवल एक सिंगर नहीं है, मतलब प्लेबैक सिंगर नहीं है, ये वॉइस एक्टर भी हैं, ये एक्टर भी हैं और साथ में सॉन्ग राइटर भी हैं और कंपोज़र भी हैं। और बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने एज ए चाइल्ड वोकलिस्ट बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। और पता है कौन से गाने के साथ किया था? बहुत फेमस गाना था 2007 में आई फिल्म तारे जमी पर, बम बम बोले मस्ती में डोले। जी हाँ, इस गाने के साथ इन्होंने एज ए चाइल्ड वोकलिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन ऑन स्क्रीन यदि अपीयरेंस की इनकी बात करें तो ये थी फिल्म कच्चा लींबू में, ये नज़र आए थे 2011 में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देबू मलिक, जो एक कंपोज़र हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके, और सिंगर भी हैं, उनके बेटे अरमान मलिक की। और आपको पता है ना इनके सिबलिंग कौन है? अमाल मलिक। जी बिल्कुल, अमाल और अरमान दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के खासे नाम हैं। ख़ास तौर पे आज हम बर्थडे मना रहे हैं अरमान मलिक का। बहुत ज़्यादा फेमस गाने इन्होंने दिए हैं, लेकिन आज जो गाना मैं आपको सुना रही हूँ ना, वो बहुत खूबसूरत है। इन्जॉय कीजिए इस गाने को और वापस आइए एक बार फिर से बॉलीवुड ट्रेल्स में, क्योंकि यहाँ पर कर रही हूँ मैं आपका इंतज़ार, और उसके बाद दूंगी आपको एक और दस्त खबर। वो कौन सी रहेगी जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को।

लेकिन मैं तो आपसे बहुत कुछ कहने वाली हूँ, चूंकि आई इसीलिए हूँ जनाब, यहाँ पर बिना कहे कैसे जाऊंगी। सबको इंतज़ार है बहुत ज़्यादा शाहरुख खान की फिल्म किंग का, और डेफिनेटली उसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन कुछ एक सीन्स ऐसे हैं जो अभी फिल्माने रहते हैं, इसी वजह से शायद फिल्म की जो शूटिंग है अभी थोड़ी सी डिले चल रही है। इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों नहीं अभी तक इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ, क्यों नहीं अभी तक इसका कोई पोस्टर रिलीज़ हुआ, क्यों नहीं अभी तक इसकी कोई खबर आई। तो चलिए जनाब, थोड़ा थोड़ा इंतज़ार कीजिए, डेफिनेटली इस प्रोग्राम में आप जुड़े रहेंगे तो आपको हम किंग से रिलेटेड जानकारी भी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको याद दिलाने वाली हूँ ना, वो एक ऐसे एक्टर के बारे में याद दिलाना चाहती हूँ जो भले ही 70 और 80 के दशक में अपने करियर की शुरुआत में थे, लेकिन आज भी उनकी एक्टिंग सर चढ़कर बोल रही है हमारी ऑडियंस पर, है ना? ऐसा ही है जी। हाँ, सच माने तो एक जो सच्चा सिनेमा लवर होता है ना, उसे किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, उसे सिर्फ और सिर्फ कि पर्दे पर उस रोल को किसने निभाया है और कितनी शिद्दत के साथ उसने उसको परफॉर्म किया है, और क्या वाकई में उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि वो सालों तक आपकी जहन में रहेगी या आपको उसका काम याद रहेगा। पिछले दिनों आपने देखा कि रहमान डकैत के रूप में किस कदर अक्षय खन्ना छाए, स्क्रीन प्रेजेंस की बात कहें या उनकी डायलॉग डिलीवरी कहें, उनके डांस मूव्स कहें या फिर उनकी एक्टिंग का जलवा कहें, कुल मिलाकर उनकी हर चीज़ सोशल मीडिया पर एक हाइप बन गई थी। उनका बेहतरीन कमबैक तो था ही था, लेकिन साथ साथ दर्शकों को भी एक ऐसा कलाकार मिल गया था जिसने खामोशी से अपना काम किया, लेकिन उसकी मेहनत ने उसकी सफलता का शोर मचाया। ऐसे ही एक कलाकार रहे नसीरुद्दीन शाह। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ नसीरुद्दीन शाह की, जिन्होंने इम्तियाज़ अली की मैं वापस आऊँगा और मेड इन इंडिया, द टाइटन लव स्टोरी या टाइटन स्टोरी में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। इन दोनों ही फिल्मों ने ये दिखा दिया कि नसीरुद्दीन शाह भले ही कम दिखावा करें, लेकिन इस बार ज़्यादा काम के लिए इस कदर इस साल छा गए हैं वो। और इन दोनों की तुलना सिर्फ इसलिए है कि दोनों ही एक्टर्स जो है अलग अलग पीढ़ियों के हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों ही अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और एक अलग ही उनका जो क्रेज़ है ना लोगों में अभी भी है। तो वही बेहतरीन उदाहरण है कि कोई भी फिल्म अचानक से कैसे हिट हो सकती है, ये है इम्तियाज़ अली की मैं वापस आऊँगा। शर्वरी और वेदांग राणा ने इस फिल्म में शानदार काम किया है, लेकिन

नसीरुद्दीन शाह ने वेदांग राणा के किरदार कीनू जो था उसके बुजुर्ग रूप का जो रोल निभाया है ना, वाकई में उनका सबका लोगों का दिल जीत लिया है और साथ साथ लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना दी है। यदि आपने फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो बिल्कुल देख सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से याद करा रही हूँ कि आज का सवाल है, जल्दी से बता दीजिए कि आवारापन कौन से ईयर में रिलीज हुई थी। मुझे इंतज़ार है आपके मैसेजेस का।

0: जी हाँ, और अब वक्त हो गया है आपको ये बताने का कि कौन बने हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उनका नाम। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: मैम,
0: हेलो जी, कौन बोल रही हैं आप? नाम बताइए आपका प्लीज।
1: मैं कंचन
0: कंचन बोल रही हैं, सोनिया विहार दिल्ली से। कंचन जी, आपकी आवाज ना थोड़ी सी कट रही है, जल्दी से बता दीजिए आज का सही जवाब। हेलो। ओके, तो ये तो आवाज़ इनकी चूंकि पहले भी क्लियर नहीं आ रही थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो इनका बिल्कुल सही जवाब था 2007 में आई थी आवारापन। और बिल्कुल सही जवाब देकर ये बन गई हैं हमारी आज की बॉलीवुड सरताज। साथ में बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जिनका बिल्कुल सही जवाब आया था। ये थी दीपा भट्टाचार्य, पंजाब से इनका मैसेज आया था। माफ कीजिएगा, दीपा भटिंडा पंजाब से आया था। इसके अलावा सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से थे, सलीम मलिक मेरठ से थे, तरुण कोहली ने सूरज कुंड से लिखा था, राजीव कुमार मेरठ से। ये हैं मोनीश यूपी बिलासपुर से थे, अजय कुमार ने लिखा था, मैं छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा हैं उमेश कुमार खयाला, फुरकान मोहम्मद फुरकान सियाल मेरठ से, और इसके अलावा गौरी शंकर ने लिखा था, दरभंगा बिहार से। इसके अलावा भी बहुत सारे लिसनर से बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन वक्त क्योंकि थोड़ा सा बचा है तो आपको जाते जाते सुना रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। फिल्म थी मर्डर, जिसमें इमरान हाशमी आए थे, और लेकिन ये जो गाना था ना, ये कुछ अलग ही इसके वाइब्स थे। गाने को एंजॉय कीजिए, और एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी रेनबो हेल्पलाइन में 1:05 पर। तब तक खुश रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम टू 102.6 एफएम रेनबो। आई एम अशानी विद टुडेज सेशन ऑफ प्ले इट कूल। एवरी सॉन्ग टेल्स अ स्टोरी एंड टुडे सो डस द डेट। इट्स 22nd ऑफ जुलाई एंड 22nd ऑफ जुलाई इजंट जस्ट अनदर डे ऑन द कैलेंडर, इट मार्क्स द डे। बैक इन 1947 when our national flag was officially adopted by the Constituent Assembly, a symbol that continues to unite us all, and that's the spirit we will carry through today's show with music that brings people together. Let's begin.

0: What is the first memory that comes to your mind when you think of the Indian national flag? Perhaps it's your first Independence Day celebration at school, standing in assembly singing the national anthem, watching the Republic Day parade. Share your memory on the WhatsApp number 9868107070. 9868107070 while we take a short break.
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त ये चाय बड़ी है मस्त
2: पता का चाय गजब का स्वाद
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल। यू आर ट्यून्ड इनटू 102.6 FM रेनबो एंड आई एम योर होस्ट एशानी। इंडियाज इंडी म्यूजिक सीन हैज गिवन अस सम इनक्रेडिबल आर्टिस्ट एंड व्हेन चाय मेट टोस इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। हेलिंग फ्रॉम कोची, the band is known for its feel-good sound, honest lyrics and a unique blend of folk, indie and pop. Here's one of the most loved tracks, Sushi Song. Can you-

कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने

0: सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल विद अशानी। टुडे वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ वन ऑफ पॉप म्यूजिक्स बिगेस्ट स्टार्स, सेलेना गोमेज। फ्रॉम हर डिज्नी डेज टू टॉपिंग चार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, शी इज वन मेनी हैट्स, सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योर। लेट्स सेलिब्रेट with one of her biggest hits.

और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, पटेल चौक और राजीव चौक सहित 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार 11वें दिन भी जारी रहे। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरुम मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों की चेतावनी को कमजोर करने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनरिक दवाइयों के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण लगातार 4थे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। श्री अमरनाथ जी यात्रा भी स्थगित है। और खेलों में चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। महिला सिंगल्स में आज PV सिंधु का सामना उन्नति हुड्डा से होगा। और स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने विश्व जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर अब वक्त हो गया है प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन का। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, बहुत सी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सी परेशानियाँ होती है, बहुत से सवाल होते हैं जब हम या तो 10वीं की परीक्षा पास करते हैं, 11वीं में आते हैं, या फिर 12वीं की परीक्षा पास करते हैं और उसके बाद इतना बड़ा हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हमें करियर किस फील्ड में बनाना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्या करना है, कैसे अपने करियर को चूज़ करें और कैसे कैसे उसमें आगे बढ़ें। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सी क्वेरीज होती हैं और उसी का समाधान लेकर आज हम स्टूडियो में हैं आपके लिए। करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th and 12th, यदि आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आज आप हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन में जुड़ सकते हैं, हमारी फ़ोन लाइंस के द्वारा, हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, जो इंचार्ज एडमिशन है भारतीय विद्या भवन कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेनबो हेल्पलाइन में।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए।
1: जी सर, जैसे कि हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, वो कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, बहुत से उन्होंने काम किए हैं इस फील्ड में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, और साथ साथ हम इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई क्वेरी है, कोई सवाल है एडमिशन से रिलेटेड 10वीं और 12वीं के बाद करियर विकल्प को लेकर, तो आप हमें स्टूडियो में डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 011-234-2108 और 011-234-2108। One more time.

0: जी हाँ, रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, 10th और 12th के बाद करियर ऑप्शंस। तो यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। 011-2342-1080 और 2342-1084 हमारी फ़ोन लाइन्स हैं। और यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सवाल रखना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, जो इंचार्ज एडमिशन है भारतीय विद्या भवन कॉलेज दिल्ली, आईपी यूनिवर्सिटी। तो सर, जैसा कि हमारे जो लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर 10th के बाद करियर चुनना या स्ट्रीम चुनना क्यों ज़रूरी हो जाता है।
1: बहुत अच्छा सवाल है आपका मैम। 10th के बाद करियर चुनना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 10वीं पास करने के बाद
0: जी
1: उनके माता पिता अभिभावक के मन में एक ही सवाल आता है कि किस फील्ड में हमारा करियर अच्छा रहेगा। तो हम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहाँ पर 2-3 ब्रांच एक तरीके से आती हैं कि बच्चे को साइंस में जाना है या फिर कॉमर्स में जाना है या फिर उसको ह्यूमैनिटीज में जाना है। तो इन तीनों का कन्फ्यूजन रहता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट कहाँ पर है, उसकी रुचि कहाँ है
0: जी।
1: तो माता पिता को ये जानना चाहिए कि बच्चे की सबसे बड़ी रुचि कहाँ है, इसी को ध्यान में रखते हुए करियर का चुनाव करना चाहिए।
0: कई बार जो छात्र होते हैं वो इस चीज़ में फंस जाते हैं कि पेरेंट्स हमारे चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर इस ट्रेडिशनल कोर्स में जाएं, और या फिर वो अपनी चॉइस, क्योंकि देखा जाता है कि माता पिता को ये लगता है कि हम ये लाइफ में अपनी नहीं कर पाए तो हम वही करियर अपने बच्चे को वो चाहते हैं कि वो बच्चा ले। तो क्या बच्चे को उसमें उलझना चाहिए या उसको अपनी ही रुचि देखनी चाहिए?
1: इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि अगर पेरेंट्स, माता पिता अगर अपनी मर्जी के साथ अगर कोई भी उसको ऐसी विषय दिला देते हैं, ऐसे कोर्स में एडमिशन दिला देते हैं, तो हो सकता है कि आगे उसको करियर बनाने में प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहला यही है कि एक एनालिसिस करना चाहिए। अगर जरूरी है तो किसी अच्छे काउंसलर से भी सलाह लेके हम डिसाइड कर सकते हैं
0: जी। अच्छा, स्टूडेंट को करियर चुनते समय सबसे पहले किस बात पर ध्यान रखना, कौन कौन सी बातें वो ज़रूरी हैं कि उसको ये करियर कैसे वो चुने, वो उसको देखना चाहिए?
1: करियर चुनते समय 10वीं क्लास के बाद
0: जी
1: सबसे जरूरी है कि जो मैंने अभी पिछले सवाल में डिस्कस किया था कि उसका अपना जो रुचि है वो ध्यान में रखना है। नंबर के आधार पर यानी कि मार्क्स के आधार पर उसको चूज नहीं करना है, उसको ये देखना है कि उसको किस विषय में, किस स्ट्रीम में करियर बनाना है
0: जी।
1: तो ये ध्यान रखना है जिस संस्थान में वो जा रहे हैं, ठीक है ना, उस संस्थान का पुराना जो रिकॉर्ड है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज उसको प्रॉपर मिलेगी नहीं मिलेगी
0: जी।
1: दूसरा ये है कि उसके जो फील्ड है
0: जी,
1: चाहे वो आपका साइंस का फील्ड हो, चाहे वो आपका कॉमर्स का हो, या फिर अब वो किसी आर्ट बैकग्राउंड से जा रहा है
0: जी,
1: तो यहाँ पर उसको सोच समझ के वाला डिसीजन लेना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि उसके जो स्थिति है
0: जी,
1: कि अगर वो जल्दी अपना कैरियर बना के इनकम जनरेट करना चाहता है
0: जी,
1: या उसको लॉन्ग टर्म चाहिए है कि हम एक पूरा एजुकेशन लेंगे उसके बाद जॉब शुरू करनी है, तो कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स भी हैं
0: जी।
1: तो ये उन पर निर्भर करता है कि वो क्या सोच रहे हैं
0: जी।
1: अगर वो चाह रहे हैं कि जल्दी उनको अपनी अर्निंग शुरू करनी है तो जैसे पॉलिटेक्निक है तो उसको करके बच्चा जा सकता है। पॉलिटेक्निक जो डिग्री है वो आपका कंप्यूटर साइंस में भी है
0: जी,
1: इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ये सारी ब्रांचेज में वो कर सकता है
0: जी। बहुत ही सर ने सही बात बताई कि जिस तरह से साइंस कोई लेता है या कॉमर्स लेता है या इवन आप ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, तो यदि उस फील्ड में आपको करियर के बारे में पता हो, कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके बारे में पता हो, तो आप अपना करियर ऑप्शन आराम से चुन सकते हैं। तो सर, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करके बता सकते हैं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स के मन में वही जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं वही ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि ज़माना चेंज हो गया है, तो उन बदलते ज़माने के साथ कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो स्ट्रीम वाइज यदि आप थोड़ा हमारे लिसनर्स को बताएं तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
1: 10th के बाद अगर कोर्सेज की बात करें तो उसमें दो हैं कि एक वोकेशनल कोर्स है जैसे आईटीआई आ गया है
0: ओके।
1: तो आईटीआई के थ्रू अगर वो आईटीआई करता है तो उसके बाद वो अपनी जल्दी से जल्दी अर्निंग शुरू कर सकता है। ठीक है, देन मैंने अभी जिक्र किया था कि पॉलिटिकल डिप्लोमा करने के बाद उसमें भी अच्छा अपना करियर बना सकता है, उसमें भी वो बाद में चाहे तो अपना डेटा साइंस एआई से रिलेटेड कोर्सेज कर सकता है, बाकी किसी भी ब्रांच में वो एडमिशन ले ले। अगर वो चाहे तो बाद में वो डायरेक्ट इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में एडमिशन उसका हो जाता है, वहाँ पर अपनी ब्रांच चेंज कर सकता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस

0: कुछ हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो वो इंजीनियरिंग कर सकता है।
1: जी
0: बाकी मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि ये तो रहा साइंस के बच्चों
1: साइंस
0: के लिए,
1: स्ट्रीम का जी।
0: अगर कॉमर्स में जाना है तो बच्चे 12th में उसको कॉमर्स की चूज करना चाहिए, अगर उसका वहाँ पर इंटरेस्ट है
1: जी
0: तो। यहाँ पर आगे जाके वो कॉमर्स से रिलेटेड अपना करियर बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीबीए हो गया, ठीक
1: जी
0: है ना, इस टाइप का बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स ये
1: जी
0: जाके कर सकता है, तो यहाँ पर भी उसका बहुत अच्छा करियर बनेगा।
1: जी और व्हाट अबाउट ह्यूमैनिटीज़, यदि जो इस ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स लेते हैं और उन्हें भी लगता है कि वो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या प्राइवेट में भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं?
0: ह्यूमैनिटीज के कैंडिडेट्स को, जो छात्र हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कोर्स चूज करते समय कि उन्हें किसी ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है जहाँ पर एक उनका एक रेपुटेशन हो।
1: जी
0: प्लस ह्यूमैनिटी के अंदर आ जाता है कि साइकोलॉजी आ गया आपका, ठीक है ना, और लॉ में भी जा सकते हैं, सोशोलॉजी भी जा सकते हैं,
1: जी
0: आर्ट में जा सकते हैं, तो ये सारे कोर्स हैं। और ज़्यादातर बच्चे वो ह्यूमैनिटीज लेते हैं जिन्हें अपना करियर में आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है,
1: जी जी जी
0: ठीक है ना, तो उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि
1: ओके
0: अगर उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की और वहाँ सक्सेस हो गए तब तो ठीक है, अदरवाइज बीच में उनको प्रॉब्लम हो सकती है अपने करियर बनाने में, तो एडिशनली ये है कि उनको फिर शॉर्ट टर्म कोर्स करने पड़ेंगे।
1: जी
0: तो करियर वहाँ पर भी अच्छा है, जैसे लीगल एडवाइजर हैं, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है ना, और आप इसमें बहुत सारी एडिशनल कोर्सेज हैं, कंटेंट राइटिंग उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है,
1: ओके
0: तो कंटेंट राइटिंग का भी कैरियर है।
1: जी
0: और ये बच्चे शॉर्ट टर्म कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं,
1: जी
0: तो यहाँ पर भी अच्छा कैरियर बन जाता है।
1: जी आज के सिनेरियो में यदि देखें तो बहुत सारे ऐसे नए प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने करियर ऑप्शंस चुन सकते हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया, कंटेंट राइटिंग हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो, बहुत ही अच्छा करियर आप बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, ठीक है ना सर? तो और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो हमारे लिसनर्स अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ, आज का हमारा विषय है रेनबो हेल्पलाइन में करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th एंड 12th, 10वीं और 12वीं के बाद करियर में विकल्प क्या क्या हैं, और यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें स्टूडियो में डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, हमारे फ़ोन लाइन आपके लिए खुली हैं 2342-1080 और 2342-1084 हमारी फ़ोन लाइन्स हैं, और यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो भारतीय विद्या भवन दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी में इंचार्ज एडमिशन है। यदि आपका भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। और आज आप बात कर रहे हैं 10वीं और 12वीं के बाद करियर विकल्प क्या क्या है। सर, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के 12वीं के बाद मार्क्स कम आते हैं, अंक कम आते हैं, और जो कोर्स या जो करियर ऑप्शन उसने सोचा होता है वो नहीं कर पाता, तो उस केस में उस स्टूडेंट के लिए क्या विकल्प है?
5: अगर किसी छात्र के मार्क्स कम आते हैं तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, पहले तो ये है, ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। उसमें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेज होते हैं जो कम नंबर पर भी एडमिशन ले लेते हैं
4: जी,
5: पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि छात्र को अब उन कोर्सेज की तरफ नहीं जाना चाहिए जहां पर उसको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और जहां पर उसको फेलियर फेस करना पड़े
4: जी।
5: तो उसको मैं सलाह दूंगा कि वो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड यानी कि आर्ट से संबंधित कोर्स पे ही छो जाना चाहिए
4: जी।
5: अब आर्ट से संबंध पहले उसको जो रिलेटेड कोर्स हैं वो अपना करियर बना सकता है कि बीए आर्ट में चला जाए,
4: ओके,
5: एंड नेक्स्ट उसका है बीए सोशियोलॉजी में जा सकता है
4: जी जी जी,
5: एंड बीए अगर उसको और जरूर करना है तो साइकोलॉजी के अंदर कर सकता है, बट साइकोलॉजी थोड़ा मुश्किल रहेगा उसके लिए
4: जी,
5: ठीक है। बट प्रश्न ये आता है कि कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन बिना एंट्रेंस के नहीं मिलेगा
4: जी।
5: अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वो जैसे हम उनको प्रेफरेंस देना चाहूंगा कि वो SOL डिस्टेंस लर्निंग में जाएं, तो वहां पर वो ये कोर्सेज कर सकते हैं इजीली,
4: ओके,
5: पर यहाँ पर भी उनको अपना आगे ग्रेजुएशन में परसेंटेज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है
4: जी, जी।
5: अगर मान लो ये उनका जो नंबर का स्कोर है वो 12वीं में कम रहा है, पर उन्हें अगर ग्रेजुएशन में उन्होंने एडमिशन ले लिया स्नातक में, तो वहाँ उनको अपने नंबर्स को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके अच्छे स्कोर प्राप्त करना होगा ताकि उनका थोड़ा इंटरेस्ट आए और उससे रिलेटेड जो भी कैरियर है उसमें वो अपना बना सके
4: जी। तो ये तो बात हुई कि जिनके मार्क्स कम आए हैं, लेकिन जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं लेकिन और वो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, चाहे वो 10वीं के बाद की बात हो, 11th में हो या फिर वो 12th में अभी स्टूडेंट्स हो, उनके लिए सही बहुत बार ऐसा एक सवाल उनके सामने होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद या ग्रेजुएशन के लिए उन्हें कौन कौन से एंट्रेंस देने हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरनेट पर जानते हुए भी, इंटरनेट के द्वारा मानते हुए भी, लेकिन उसके बावजूद उनके पूरी तरह से वो समझ नहीं पाते कि कौन से स्ट्रीम के लिए या कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें किस तरह के एंट्रेंस देने हैं और वो एंट्रेंस पास करके वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात पर भी रोशनी डालिए प्लीज़
5: जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के समय में जो छात्र हैं ये बहुत बड़ी गलती करती हैं कि मैं खुद भी एडमिशन इंचार्ज हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे आते हैं जिन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया होता है
4: जी।
5: तो क्योंकि बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आज के समय में एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल है,
4: बहुत मुश्किल है बिल्कुल।
5: तो

0: अब उन्हें ये ध्यान रखना है कि अगर आप 12th के बाद एंट्रेंस आपको देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप साइंस के कैंडिडेट्स हैं और आपको इंजीनियरिंग में जाना है
1: जी
0: तो JEE एग्जाम बहुत कंपलसरी है,
1: बिल्कुल
0: जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन,
1: जी
0: ठीक है, जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, जिसको NTA कंडक्ट कराता है।
1: जी
0: एंड अगर आपको साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको मेडिकल में जाना है
1: हाँ
0: तो आपको NEET का एग्जाम जरूरी हो गया है।
1: जी
0: अगर आप देखिए मेडिकल में और भी बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स हैं, जैसे BSc नर्सिंग हो गया है ना, BPT हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया
1: जी
0: है, एंड आपका उसे
1: BDS हो गया, बी फार्मा
0: बी
1: जी
0: फार्मा डी
1: जी
0: फार्मा, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो बिना नीट के भी कंसीडर कर लेती हैं इनको।
1: ओके
0: MBBS तो नीट के थ्रू ही कंसीडर
1: हाँ
0: होगा,
1: जी जी
0: बट बी फार्मा डी फार्मा BPT के लिए यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एक एग्जाम लेती है, CET, यानी
1: ओके
0: कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट,
1: जी
0: तो वो उसके थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
1: जी
0: बट सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि अब जो कॉमर्स वाला बच्चा है तो उसको अब कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा,
1: जी
0: तो उसके लिए कॉमन एग्जाम है, वो है CUET,
1: जी
0: जो कि सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन कर दिया है। अराउंड मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज
1: ओके
0: इस एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेती
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराती हैं CET, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम रखती है CET।
1: ठीक
0: तो
1: है
0: मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चे ने इनमें से कोई भी एग्जाम दिया होना चाहिए
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: CUET इसमें बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: ठीक है ना। और CET जैसे हमारी IP यूनिवर्सिटी है, वो अपना CET एंट्रांस लेती है, IP
1: ठीक
0: CET,
1: जी
0: तो उसके थ्रू भी बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते
1: जी
0: हैं। और
1: सर यहाँ एक सवाल छोटा सा है
0: जी
1: मेरा, जो IP यूनिवर्सिटी है उसमें सिर्फ दिल्ली बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं वही एडमिशन ले सकते हैं या जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट्स के उनको भी एडमिशन मिल जाता है?
0: इसमें बाहर से आने वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं और
1: जी
0: दिल्ली रीजन के भी बच्चे ले सकते हैं।
1: ओके
0: बच्चे ने एग्जाम दिया होना चाहिए, IP CET अगर दिया है तो पहली प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी CET कैंडिडेट्स को देती है
1: जी
0: एडमिशन्स के लिए। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली रीजन के लिए अपना एक रिजर्व कोटा होता है, IP यूनिवर्सिटी में 85% बच्चे का रिजर्व है दिल्ली स्टेट के लिए और आउटसाइडर 15% कैटेगरी में आते हैं।
1: जी
0: तो पहले एडमिशन CET के थ्रू होगा IP यूनिवर्सिटी के किसी कोर्सेज में, जैसे आपका BBA BCA BCom ऑनर्स हो गया, आपका इंग्लिश ऑनर्स हो गया, इस टाइप के ह्यूमैनिटीज कोर्स के लिए।
1: जी
0: देन फिर भी अगर मान लीजिए सीट वैकेंट रहती है, देन यूनिवर्सिटी CUET को प्रेफरेंस देती है
1: जी
0: कि उनका CUET के थ्रू फिर वो एडमिशन ले सकते हैं, बट वो वैकेंट सीट पर ले सकते हैं।
1: ओके
0: तो यहाँ IP यूनिवर्सिटी के अंडर में इस टाइप का कंडीशन है।
1: जी तो कुल मिलाकर हमारे जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं या जो स्टूडेंट के पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं उन्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा, यदि आपका बच्चा अभी 11th में है या 12th में है और आगे वो अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे कोई ना कोई एंट्रेंस ज़रूर पास करना होगा और उस एंट्रेंस के द्वारा ही वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर चुन सकते हैं। हालांकि यहाँ सर ने एक बात और बहुत ही अच्छी बताई कि यदि आपके किसी कारणवश 12th में मार्क्स कम आ जाते हैं तो आप SOL के माध्यम से या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत आपको नहीं है। सर एक सवाल आया है, किशनगंज दिल्ली से पैंथर तोमर लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने 10वीं पास की है और मैं AI सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये हमारे सर की फील्ड आ गई है क्योंकि सर कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं और आई थिंक AI जो है वो सर का एक खास विषय होगा, तो
0: जी
1: सर क्या कहते हैं इस बारे में?
0: मैं इनको सलाह देना चाहूँगा कि आपने 10th पास किया है,
1: जी
0: 10th पास करने के बाद पहले तो आप आपका जो इंटरेस्ट है वो AI आज के टाइम पे एक ट्रेंडिंग कोर्स है, वो बहुत ज़रूरी है और आपने अपना फील्ड जो चूज किया है ये बहुत ही अच्छी बात है। बट आपने 10th के बाद कोशिश कीजिए कि या तो आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन ले लीजिए, और या उसमें नहीं लें तो कम से कम ITI कर लीजिए, साथ में AI के कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 1 ईयर प्रोग्राम है, 2 ईयर्स का भी प्रोग्राम है, 6 मंथ प्रोग्राम भी है, तो ये वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आता है, तो इसके अंदर भी आप AI डेटा साइंस अलग से सीख सकते हैं। पर बैकअप में आप अपना रखिए, डिप्लोमा में ले लेंगे पॉलिटेक्निक में तो आप सेकेंड ईयर में, कल को आप सोचते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है
1: जी जी
0: तो उसमें सेकेंड ईयर में डायरेक्ट जिसको लैटरल एंट्री बोलते हैं उसके थ्रू उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं।
1: अच्छा सर, कोई बच्चा यदि अपना व्यवसाय करना चाहता

0: है, तो क्या उसको कॉमर्स के अलावा, और वो साइंस स्ट्रीम का है, तो वो किस तरह से उसको अपनी करियर ऑप्शन लेनी चाहिए आगे?
1: अपना अगर व्यवसाय करता है तो
0: लेकिन
1: उसको
0: साइंस स्ट्रीम से है
1: साइंस स्ट्रीम से है, अगर वो अपना कोई निजी व्यवसाय भी करना चाहते
0: जी।
1: हैं तो उनको साइंस वाले कैंडिडेट को फिर आज के समय में अपना एआई से रिलेटेड,
0: जी
1: डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपना कर सकते हैं,
0: जी
1: ठीक है ना। देन उनका अगला है कि डेटा साइंस आप सीख करके
0: ओके
1: डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, डेटा
0: जी
1: एनालिटिक्स भी आपका अच्छा करियर है उसके अंदर।
0: ठीक ठीक
1: तो ये इस टाइप के जो साइंस का कैंडिडेट है उनके लिए करियर ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। बाकी कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये एडिशनल कोर्सेज चलेंगे। वो BFX का भी कोर्स कर सकते हैं
0: ओके
1: जो कि फिल्म एडिटिंग और जो आपका वीडियो एडिटिंग में चलता है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो कर सकते हैं। बाकी उनका जो है कोर्स और भी हैं इस टाइप के,
0: जी
1: तो वो मिल जाते हैं, उसमें एडिशनल कोर्स कर सकते हैं, अपना जल्दी से व्यवसाय उसमें शुरू कर सकते
0: तो
1: हैं।
0: यहाँ सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। आप VFX कोर्स भी कर सकते हैं, फिल्म एडिटिंग का कर सकते हैं, छोटे छोटे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं जो मुझे लगता है सर आज की सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनके साथ साथ स्किल बेस्ड कोर्स भी करें। इस बारे में क्या कहेंगे आप?
1: स्किल बेस्ड कोर्स साथ साथ में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये ही
0: जी
1: हो गया है, ठीक है ना। एंड जो एडिशनल कोर्स हैं, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया है,
0: जी
1: ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको डीप में लर्निंग करनी पड़ेगी क्योंकि
0: जी
1: उसमें SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सारे लॉजिक आपको सीखने हैं। तो साथ साथ में आप अगर जाते हैं तो फॉरेंसिक साइंस में भी जा सकते हैं,
0: ओके
1: ठीक है ना।
0: जी
1: एंड नेक्स्ट आपका आ गया है कंटेंट राइटिंग, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था,
0: जी
1: यही फील्ड है, ठीक है। तो इसमें जाके वो अपना करियर अच्छा बना सकते हैं।
0: सर, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: जी।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट आरजे रश्मि। और आज हम बात कर रहे हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th एंड 12th। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं भारतीय विद्या भवन कॉलेज GGSIP यूनिवर्सिटी से, और इस वक्त इंचार्ज एडमिशन्स भी हैं। और बहुत सारे एडमिशन्स सर इस समय देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, और साथ साथ आज बात कर रहे हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th एंड 12th की। तो सर, एक सवाल हम तक पहुँचा है, लिखने वाले दिल्ली से ही लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आजकल छात्र जो हैं 12वीं के तुरंत बाद ही सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाते हैं। अत्यधिक कॉम्पिटिशन के कारण 4-5 साल समर्पित करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती तो उनमें भारी निराशा और हताशा देखी जाती है। क्या ऐसे छात्रों को करियर के और ऑप्शन साथ में लेकर नहीं चलना चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक कॉमन क्वेश्चन है। पेरेंट्स ज्यादातर यही उम्मीद लगाते हैं कि उनका बच्चा अपना करियर जल्दी से बना ले
0: जी,
1: तो वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। बट उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्हें एंड में कुछ सफलता नहीं मिलती है
0: जी,
1: बहुत सारे छात्र हैं जिन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो बैकअप में उनके पास क्या है
0: जी,
1: क्या उन्होंने कोई ऐसा एडिशनल कोर्स किया हुआ है जिसकी वजह से वो आगे अपना कैरियर बना सकते हैं? तो उनको मैं सलाह दूंगा कि आप कम से कम 12वीं के बाद आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में चले जाइए
0: जी।
1: मैं ऑल द बेस्ट कि आपका करियर वहाँ पर अच्छा बने, आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। बट बैकअप में आपको क्या रखना है कि या तो आप किसी ग्रेजुएट कोर्स में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए डिस्टेंस लर्निंग में, ताकि आपका वो डिग्री कंप्लीट हो जाए
0: जी।
1: उसके बावजूद भी अगर साथ में आपका समय, पर्याप्त समय मिलता है, तो आपको वोकेशनल कोर्सेज, यहाँ पर मैं कुछ कोर्सेज बताऊंगा, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल दिया था, ग्राफिक डिजाइन हो गया, ठीक है ना, एंड एनिमेशन हो गया, VFX का भी एग्जांपल दिया था
0: जी,
1: वेब डेवलपमेंट भी आप साथ में कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी कोर्सेज हैं इसके अंदर में, ठीक है ना, होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं
0: जी।
1: तो ये वोकेशनल कोर्स आपकी बड़ी हेल्प करेंगे अगर आप साथ में कर लेते हैं तो
0: जी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि इंटर्नशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज किए जा सकते हैं, तो ये जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं या ऑनलाइन इंटर्नशिप्स जो उन्हें मिलती हैं, तो क्या ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होती हैं?
1: देखिए, करिकुलम में ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में
0: जी
1: इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है।
0: ओके,
1: यूनिवर्सिटी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, फोर्थ ईयर प्रोग्राम किया है
0: जी,
1: उसमें प्रैक्टिकल वर्कशॉप, सेमिनार एंड आपका इंटर्नशिप बहुत जरूरी हो गया है
0: जी।
1: तो उसमें दो टाइप की इंटर्नशिप होती है, एक तो माइनर इंटर्नशिप होती है, एक मेजर होती है, मतलब 1.5 मंथ का इंटर्नशिप है, दूसरा आपका 3 मंथ और 6 मंथ का इंटर्नशिप है, वो आपका फाइनल ईयर में होगा।
0: ओके,
1: इंटर्नशिप में आपको जो भी आपने सीखा है, प्रैक्टिकली सीखा है, वो एक सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है, तो प्रैक्टिकली भी आप जाके किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं तो वो ये सर्टिफाई करता है कि आपने ये कोर्स में आप परफेक्ट हैं
0: जी,
1: ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी हो गया, ये करिकुलम का पार्ट है और सर्टिफिकेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है
0: जी। सर, जैसे आपने बताया कि एक तो फर्स्ट ईयर के एंड में उन्हें इंटर्नशिप करनी चाहिए और प्लस उनको एक फाइनल ईयर में की जाती, तो क्या इसके बीच का जो पीरियड होता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, उस

0: में कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती।
1: नहीं, इंटर्नशिप प्रोग्राम तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में होते हैं,
0: जी
1: वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
0: ओके।
1: इंस्टीट्यूशन उनको प्रोवाइड करता है इंटर्नशिप के लिए। अगर बच्चा अपने एंड से भी कहीं पर अगर किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहे तो वो कर सकता है।
0: ओके।
1: अदरवाइज उसको कॉलेज भी सपोर्ट करता है।
0: हाँ।
1: ये कंपलसरी पार्ट है कि इंटर्नशिप करना उसके लिए करियर के लिए बहुत जरूरी है
0: जी।
1: उसको करना चाहिए। और ऐसे छात्र हैं जो इंटर्नशिप की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यही एक रिपोर्ट कार्ड उनका क्रिएट हो रहा है कि उन्होंने कोर्स के साथ साथ में इंटर्नशिप की हुई है।
0: जी अच्छा, ये तो बात आई इंटर्नशिप की, लेकिन जैसे अभी हमने बात की नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी की, यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ सुनने में आया है कि क्या एट ए टाइम कोई भी स्टूडेंट दो मास्टर कोर्सेज एक साथ कर सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन है इसमें?
1: इसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट को, छात्र को अपने सब्जेक्ट को चूज करने की पूरी फ्रीडम है
0: जी।
1: वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आगे डिग्री कोर्सेज में जा सकता है, तो विषय चुनने की पूरी स्वतंत्रता उसके पास रहती है। एंड मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम इसके अंदर है कि वो कभी भी इस पॉलिसी के अंदर वो एग्जिट कर सकता है और कभी भी वो एंट्री कर सकता है। जैसे किसी भी स्टूडेंट ने 2 साल स्टडी कर ली है और उसने एग्जिट कर दिया है तो बाद में उन कोर्स को दोबारा से कंटिन्यू कर सकता है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डाला गया है।
0: ओके।
1: और अपने विषयों को भी वो अपनी रुचि के अनुसार उसका चयन कर सकता है, एक से अधिक विषयों को अध्ययन करने का उसको अवसर मिलता है
0: जी।
1: और कौशल और रोजगार पर भी उसका अधिक अपना ध्यान दे सकता है, पर्सनल स्किल पे भी ध्यान दे सकता है
0: जी।
1: वो एक बहुत अच्छा सिस्टम इसके अंदर है।
0: ओके। तो सर जैसा कि मैं जो पूछना चाह रही थी आपसे वो ये, कोई भी दो डिग्री, मतलब एक यदि वो डिग्री कोर्स कर रहा है, कोई रेगुलर कर रहा है, तो क्या दूसरा कोई कोर्स वो साथ में डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कर सकता है या नहीं कर सकता है?
1: अगर वो डिग्री कोर्स कर रहा है रेगुलर बेसिस पे
0: जी,
1: तो वो डिस्टेंस लर्निंग में दूसरे कोर्स में जा सकता है।
0: ओके।
1: पर रेगुलर में दोनों कोर्स को नहीं कर सकता है।
0: ओके।
1: क्योंकि इसको अपना माइग्रेशन जो भी है वो एक ही जगह सबमिट करना होगा, दूसरे कोर्स में नहीं कर सकता है।
0: अच्छा।
1: तो SOL से कर सकता है, डिस्टेंस बेस पे जा सकता है
0: जी,
1: पर कंटिन्यूसली दो कोर्स में वो रेगुलर एडमिशन नहीं ले सकता है।
0: ओके। सर एक सवाल ना बहुत ज़्यादा मेरे मन में आ रहा है कि आजकल स्टूडेंट्स के साथ में क्या हो रहा है, ख़ासतौर पर आप जैसे IP यूनिवर्सिटी के इस समय एडमिशन इंचार्ज हैं, एडमिशन के साथ आजकल आई थिंक IPU की सेकेंड लिस्ट भी आ चुकी है एडमिशन्स की, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि बहुत से स्टूडेंट में ये रहता है कि मेरी रैंक कितनी थी और अभी सेकेंड राउंड के बाद भी मुझे लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो काफ़ी हताश हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए और किस टाइम तक उन्हें वेट करना चाहिए IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या किसी भी और यूनिवर्सिटी में यदि वहाँ पर उनका अभी तक कोई लिस्ट में नाम नहीं आया है तो?
1: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंसलिंग चल रही है। छात्रों ने 12वीं पास कर दिया है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, कॉमर्स का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, बच्चा अभी एडमिशन के लिए काउंसलिंग में अपीयर हुआ है। अभी सेकंड लिस्ट अलग अलग कोर्सेज की आ गई है, किसी की फर्स्ट आई है, किसी की सेकंड आई है। जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है डेफिनेटली उनकी अच्छी रैंक होगी तो एडमिशन उनको मिल चुका है
0: जी।
1: बट मैं उन छात्रों को भी समझाना चाहता हूँ कि जिनका अभी रैंक में या किसी कॉलेज में नाम नहीं आया है तो अभी परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि कम से कम 6 to 7 राउंड काउंसलिंग होने हैं, तो उसमें DU की भी काउंसलिंग चल रही है, उसकी भी कट ऑफ आ गई है, तो आपको पूरा चांस मिलेगा अपने काउंसलिंग में। पूरा अपना टाइम दीजिए और एंड तक वेट करिए और आपका एडमिशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो जाएगा। और अच्छे कॉलेज का अपना मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम उनको कम से कम 3 प्लान अपने सेट करने चाहिए। प्लान ए आपका है एडमिशन टॉप कॉलेजेस में लेने का
0: जी।
1: अगर वहाँ आप असफल हो जाते हैं तो प्लान बी पे काम करिए। प्लान बी का मतलब है कि सेकेंड लेवल के कॉलेज
0: जी,
1: जो आपके घर से दूर हो सकते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी में नहीं हो सकते हैं, उनमें एडमिशन ले लीजिए
0: जी।
1: थर्ड जो प्लान सी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
0: हाँ।
1: क्योंकि अगर आप ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करना ठीक नहीं है,
0: जी ये
1: तो
0: भी सवाल
1: थर्ड
0: मेरे
1: क्लास
0: मन में
1: सीट के
0: बहुत
1: अंदर।
0: ज़्यादा था, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लगता
1: जी
0: है कि हमारे मार्क्स अच्छे आ गए हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं आए कि हमें एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज मिल जाए या हमारा

0: पसंद कोर्स मिल जाए, तो वो ड्रॉप की तरफ एक उनका माइंडसेट जाने लगता है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है ड्रॉप लेना, इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं सर, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जो इस समय हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं ना, उनके मन में ज़रूर सवाल चल रहे होंगे।
1: मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि प्लान ए प्लान बी,
0: जी
1: अगला प्लान सी था कि सी का मतलब है कि आपको एनी हाउ अगर आपकी एडमिशन जो है प्लान सी के अंतर्गत जो आपने कॉलेज लिस्टेड किए हैं उनमें एडमिशन ले लाना चाहिए।
0: ओके।
1: प्लान सी में आपका सेम यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हो सकते हैं, अदर यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर आया कि बहुत से छात्र उनके अभिभावक ये उनके दिमाग में चल रहा होता है कि हम नेक्स्ट ईयर का प्लान करते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इनका एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स आ जाएं और कॉलेज मिल जाए।
0: जी
1: मैं उनको एडवाइज करता हूं कि ड्रॉप लेना मतलब आप एक साल पूरा पीछे हो जाएंगे,
0: बिल्कुल
1: आपका जो भी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलनी थी बच्चे को वो उससे आप वंचित रह जाएंगे, वहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा।
0: जी
1: दूसरा, ये गारंटी नहीं है कि सिचुएशन कोई भी हो सकती है कि आपका बच्चे ने आज जो रिजल्ट दिया है
0: जी
1: एंट्रेंस में वो हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में दे, तो ड्रॉप करने का आइडिया बिल्कुल भी चेंज कर देना चाहिए।
0: ओके
1: ठीक है, कितना भी भरोसा हो अपना एडमिशन ले लीजिए और अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज के अंदर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दीजिए।
0: और आई थिंक सर यहाँ पर मुझे लगता है कि यदि वो ड्रॉप देना भी चाहते हैं, बेसिकली ड्रॉप नहीं, यदि वो दोबारा एग्जाम देना भी चाहते हैं तो वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर उसके साथ भी दे सकते हैं। आई थिंक
1: हाँ दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे
0: तो
1: सकते
0: मुझे
1: हैं।
0: लगता है स्टूडेंट्स को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि जब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कहीं पर एडमिशन लेने के साथ साथ नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दैट ऑप्शन। जी उसका लाभ ही होगा, क्योंकि जब आप साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली अगले साल आप अपने मनपसंद कोर्स में ज़रूर एडमिशन ले पाएंगे। सर आज बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं, खास तौर पे हमारे 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ साथ हमने IP यूनिवर्सिटी के बारे में भी जाना कि कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी सर ने बताए हैं, लॉन्ग टर्म तो हैं ही। यदि आपका भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और साथ साथ यदि आप स्टूडियो में कॉल करना चाहते हैं तो हमारे कॉलिंग नंबर है 2342108 और 2342108। यदि आप दिल्ली से के बाहर से आप हमें फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: जी हाँ बिल्कुल, उड़ने के मौके आपको बहुत सारे मिलेंगे यदि आप 10वीं पास कर चुके हैं और आपको आज करियर चुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज के हमारे एक्सपर्ट आपके साथ रहे। इस पूरे एक घंटे उन्होंने आपकी बहुत सी क्वेरीज, बहुत से सवालों का जवाब दिया। यदि आप 12th पास करना चाह रहे हैं और कर चुके हैं इस बार, या फिर इस साल आप 12th में आए हैं, तो मुझे लगता है आपकी भी बहुत सारी क्वेरीज का आपको सोल्यूशन ज़रूर मिला होगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझे लगता है मेरे मन में आया है, तो डेफिनेटली जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में भी ज़रूर चल रहा होगा, क्या कोई ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आप लगभग सारे कोर्सेज के लिए कॉमन हो, आप कर सकते हैं? तो सर मैं इस बारे में ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी।
1: ये बहुत अच्छा सवाल है और ज़्यादातर छात्र छात्रों को यही पता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है
0: जी,
1: तो उनको लिए एक डिसाइडेड सीयूटी एग्जाम है।
0: हाँ जी,
1: बट मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अब अगर सीयूटी का बच्चा जो है एंट्रेंस दे देता है, सीयूटी एग्जाम देता है, तो वो मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। मल्टीपल कोर्सेज इन द सेंस है कि उसको लिए एंट्रेंस में कुछ सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, जैसे इंग्लिश का एग्जाम जरूरी है
0: जी।
1: जब सीयूटी का एग्जाम होता है तो इसमें 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं,
0: हाँ,
1: उनका एग्जाम देना पड़ता है, तो वो कॉमन एक मेरिट बनती है। तो सीयूटी में ये ध्यान रखिए कि कम से कम एटलीस्ट इंग्लिश एग्जाम दिया होना चाहिए। उस एंट्रेंस में आपका जनरल स्टडीज का पेपर भी होना चाहिए। बाकी जो कॉमर्स वाला बच्चा है तो डेफिनेटली वो अपना कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज करेगा, साइंस का बच्चा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री चूज करेगा। तो ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी है, उसके बेस पे वो बच्चा आज की डेट में आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक में भी एडमिशन ले सकता है।
0: ओके जी,
1: बस ये बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का भी एक जो सब्जेक्ट है वो ऐड होने चाहिए, उसका एग्जाम दिया होना चाहिए सीयूटी के साथ में। तो बट उसको थोड़ा इसमें डिसएडवांटेज ये होगी कि सबसे पहले जेई के बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगी एडमिशन के लिए, बाद में सीयूटी को भी प्रेफरेंस मिलेगी। आईपी यूनिवर्सिटी सीयूटी के बच्चों का रजिस्ट्रेशन उसने ओपन कर दिया है। सेकेंडरी में बात करूंगा, सपोज करिए कॉमर्स का बच्चा
0: जी,
1: अगर वो चाहे कि वो बीकॉम में एडमिशन लेना है तो अपना प्लान चेंज कर सकता है, क्योंकि कॉमर्स के अंदर 3 कोर्सेज तो एटलीस्ट है ही पॉपुलर, बीकॉम ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया एंड बीबीए हो गया। तो वो अपने कोर्स को स्विच कर सकता है, वो बीबीए की जगह बीकॉम में या बीए इकोनॉमिक्स में किसी में भी एडमिशन ले सकता है। बाकी इंग्लिश ऑनर्स में भी सीयूटी के थ्रू एडमिशन हो सकता है, साइकोलॉजी में भी सीयूटी के थ्रू एडमिशन हो सकता है। तो एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है, बच्चों को बिल्कुल भी असहाय नहीं होना चाहिए। अगर वो अपना कोर्स स्विच ऑफ कर सकते हैं तो अदर कोर्स में भी एडमिशन लेने के ऑप्शन है, उसके लिए सबसे बेस्ट सीयूटी का ही एंट्रेंस है
0: जी। तो यदि आप भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूईटी आपको ज़रूर देना चाहिए, और इस बात का ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए कि कौन कौन से आपने सब्जेक्ट्स का उसमें एग्ज़ाम दिया है। सर क्योंकि अब वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, तो चलते चलते आपसे एक सवाल ज़रूर करूँगी कि हमारे विद्यार्थियों के लिए और साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे करियर के बारे में?
1: अंत में मैं सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि कैरियर का चुनाव केवल अंकों के आधार पर नहीं होना चाहिए
0: जी,
1: बल्कि अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखकर करें। सही जानकारी, सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं के मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार,
0: थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमें देकर, हमारे लिसनर्स को देकर, उन्हें उनके इतने सारे सवालों का जवाब दिया, थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाज़त, क्योंकि वक्त हो गया है अब अगले प्रोग्राम का। आपके साथ रहेंगी स्वाति गुप्ता, लेकर आई हैं आशियाना, और रश्मि को दीजिए इजाज़त, चलती हूँ, बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए प्रोग्राम हम कदम, जिसमें हम बात करते हैं आपके हम सफर की, आपके लाइफ पार्टनर की और इस बहुत ही खूबसूरत जर्नी की जो जिसमें आप दोनों एक दूसरे के हम सफर होते हैं। जी हाँ, और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तभी बनते हैं एक दूसरे के हम कदम। और ये कदम से कदम मिलाने की ये जो एक जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज करना एक दूसरे के साथ, एक ताल बिठा लेना ताकि ये गाड़ी जो है स्मूथली चलती रहे, इसमें बहुत सारे जो है ना रोड ब्लॉक्स भी आते हैं, इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, एडजस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हम करते हैं क्योंकि ये हमारी हमें एक पूर्णता का एहसास देने वाला जो ये रिश्ता होता है, ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सबसे इम्पॉर्टेंट एक पड़ाव भी होता है। इसी बारे में बात करते हैं हम हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका हम कदम। सुनते हैं इसे आप हर बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में। मैं प्ले करने जा रही हूँ केके की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से कर रही है शुरुआत हम अपने आज के इस प्रोग्राम की।

102.6 आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है हम कदम। मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम को हम लेकर आते हैं आपके लिए बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में। और इस प्रोग्राम में हम आपके शादीशुदा रिश्ते के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पे अक्सर मैंने कहा है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा ये रिश्ता है जो एक आपकी पहचान का हिस्सा होता है लेकिन आपकी पूरी पहचान ये नहीं होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस स्पेस देने की। जब हम बात करते हैं ना, अक्सर क्या होता है कि जब भी दो लोग मिलकर एक इस खूबसूरत रिश्ते को बनाने की कल्पना करते हैं तो उसमें अक्सर वो इस कदर जो है उनकी जो परसेप्शन होती है या उनकी जो एक ख्याल होता है ना, उसमें हम हमेशा परफेक्शन ढूंढते हैं, उसमें हम हमेशा जो है हमेशा सब कुछ अच्छा चलता है ऐसा सोचते हैं। हम कभी भी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं देखते हैं, एडजस्टमेंट्स नहीं देखते हैं। और एक बहुत ही कहना चाहिए खूबसूरत सा ख्याल होता है जिसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होता है। लेकिन क्या है ना,

कि मैं रोज़ाना की जो लाइफ है ना उसमें इतने इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि हर दिन की रेसिपी ना अलग हो जाती है और हर दिन एक नया स्वाद जो है ना वो आपको मिलता है। शादी जो है ना वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का खूबसूरत मेल ज़रूर है, उसकी अपनी रिश्ते की एक पहचान ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इससे जुड़े दो लोग हैं वो लोग एक दूसरे की पहचान में अपने आप को खो दें। नहीं जी, पार्टनर को रिमोट कंट्रोल तो बिल्कुल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम अपने उस खूबसूरत से ख्याल को पूरा करने के लिए ना कोशिश ये करते हैं कि हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी को या अपने पार्टनर को इस तरह से हम ढाल लेना चाहते हैं कि हमारा वो खूबसूरत ख्याल जो है ना वो ज़िंदा रहे और उसको हम पूरा करें। भाई ज़रूरी है, परफेक्शन की तरफ काम ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के डिफरेंसेस को, एक दूसरे के खासियतों को ध्यान में रखते हुए, ना कि उसे मिटाते हुए। उसको मिटा देंगे तो फिर उसकी पहचान ही कहाँ रह जाएगी। तो एक दूसरे को स्पेस देना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे की जो पहचान है ना उसको भी पनपते रहने देना बहुत ज़रूरी होता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ स्वाति, आप सभी के साथ प्रोग्राम चल रहा है हम कदम, और अगली खूबसूरत आवाज़ जुबिन नौटियाल की मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

वक्त तेरे लिए तू है मेरा लम्हार, कैसे रहेगा आखिर तू होके मुझसे जुदा। मतलब ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। देखो फिल्मी गानों की बात अलग है, लेकिन रियलिटी जो है ना वो फ़र्क होती है, और ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये फिल्में इतनी कामयाब नहीं होती, क्योंकि आपको फैंटेसी की जो डोज देती हैं ना वो हमें रियल लाइफ में नहीं मिलती हैं। लेकिन एनीवेज बात हो रही थी टुगेदरनेस की और स्पेस देने की। देखा जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हम हर वक्त किसी की ना केवल लोकेशन चेक कर सकते हैं बल्कि उसकी एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं, उसके साथ जब चाहें तब जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में ना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक दूसरे को स्पेस दें, क्योंकि स्पेस देने से ना जो डिग्निटी आती है ना वो उसी से आती है, वो और किसी चीज़ से आ नहीं सकती। हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने का ख्याल बेशक बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन उसके बावजूद हमें भी अपने लिए वक्त चाहिए होता है, अपनी खुद की एक ब्रीदिंग स्पेस जिसको हम कहते हैं ना वो चाहिए ही होती है। एनीवेज टुगेदर वर्सेस स्पेस देना ज़रूरी है हर रिश्ते में, समय के साथ नहीं बल्कि साथ साथ ही शुरू होती हैं ये दोनों चीज़ें। फिर आपको याद दिला दूं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं आपके साथ स्वाति। हमारा आपका आज का ये जो सफ़र था ना हम कदम का, वो था बस यहीं तक। थोड़ी देर में आप सुनेंगे खास कार्यक्रम। फिलहाल आज का हम कदम समेटने की आप स्वाति को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
0: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
0: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
0: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
0: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
0: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है।

0: नित्य होता है
1: जी।
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है
1: जी।
0: जिसे मोरुंग कहते हैं
1: जी।
0: ये मोरुंग होता क्या है?
1: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था
0: जी। प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे
1: जी। यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
0: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है
1: जी।
0: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की
1: जी।
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें
1: जी।
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
1: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं, बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूं। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु, दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन

0: सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
1: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
2: यह नहीं हो सकता हीरा सिंह भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहां मिलेगा। तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
0: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहां जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास, तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा।
2: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
0: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
2: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है, गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
2: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
0: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी

0: सुंदरिया तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
1: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ। मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
0: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी

0: छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
1: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहां काम करूंगा। नमस्ते।
1: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अरे तुमसे यहां मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले आपसे मिलने जरूर आना।
0: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यहीं कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
5: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
4: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
5: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
4: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
6: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
5: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना

0: काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
1: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
2: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
1: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
0: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था, उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापिस चलो।
2: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
2: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अब अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है, महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
2: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
3: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
2: क्या?
3: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
2: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
3: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
2: मुझे यही चाहिए।
3: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
2: नहीं।
3: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
2: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
3: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
2: यूं ही?
3: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
2: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
3: अच्छा अच्छा, समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
2: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
3: पर बेटा ये तो
2: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
3: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
2: तो यही इसकी कीमत भी है, अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
3: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
2: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
1: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
3: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
2: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
3: अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं
2: भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया, और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
3: बेटा।
2: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से

0: अभी से ये मेरा हुआ, आजा मेरा दोस्त आजा।
1: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो
0: आजा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: जरा सोचिए, हमारी हर नई सोच, हर खूबसूरत याद, हर मुस्कान और हर उपलब्धि की शुरुआत एक स्वस्थ मस्तिष्क से होती है। नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेज़बान शिल्पा गुप्ता। कहते हैं दिमाग सही तो हर मुश्किल आसान, दिमाग परेशान तो हर खुशी भी बेकार। दोस्तों, हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है सभी को मस्तिष्क स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और ये संदेश देना कि स्वस्थ मस्तिष्क हर व्यक्ति का अधिकार है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड ब्रेन डे पर इस वर्ष की थीम है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, और यही विषय हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का, यानी हर व्यक्ति तक मस्तिष्क स्वास्थ्य सेवाओं की समान और सुलभ पहुंच, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क ही हमें सोचने की शक्ति देता है, सीखने की क्षमता देता है और सही निर्णय लेने का आत्मविश्वास देता है और जीवन को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा देता है। रेडियो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ मनोचिकित्सक और न्यूरोसर्जन, जो बताएंगे कि मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर मीना चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल पे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज की हमारा वर्ल्ड ब्रेन डे है और हमारी थीम है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, तो इससे क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है?
2: ये बहुत ही अच्छी थीम रखी गई है। जैसे मैं कुछ साल पहले ले जाना चाहूँगा आप लोगों को। हमको ऐसा देखा गया था कि पहले जो न्यूरोसर्जरी की जो सर्विसेज थी वो सिर्फ टर्शरी केयर सेंटर्स में होती थी, टायर वन सिटीज़ में होती थी। तो इस चक्कर में क्या होता था कि जो अंदर हमारे भाई लोग रहते हैं या जो बहुत टायर टू टायर थ्री सिटीज़ में रहते थे, उनको सर्विसेज नहीं मिल पाती थी समय से, और जिसके चक्कर में कई बार उनकी मृत्यु हो जाती थी या कई बार वो समय पे पहुंच नहीं पाते थे, जिससे बहुत सारे विकार हो जाते थे उनके शरीर के अंदर।

0: तो और दूसरी चीज कि ब्रेन हेल्थ एसेस फॉर ऑल, मतलब कि हर एक को उसका बीमारी का इलाज मिले, अमीर गरीब किसी भी रूप से उसमें भेदभाव ना हो, और हर मरीज को जो भी इलाज है उसका उसका संपूर्ण रूप से उसका इलाज मिले, हर इंसान को किसी भी भेदभाव से परे।
1: मैम, आप क्या कहेंगी इस पे?
2: जो मस्तिष्क स्वास्थ्य है वो हमारे जीवन का आधार है, और बहुत ही अच्छा है कि ब्रेन हेल्थ में हम एक्सेस फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। तो मैं इससे दो चार बिंदुएं जोड़ दूं। एक तो डॉक्टर वार्ष्णेय सर ने बहुत अच्छा बताया, जो न्यूरोसर्जिकल बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, चोट है, साथ साथ जो साइकेट्री की परेशानियां हैं, है ना, डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, या नशे की प्रॉब्लम्स हैं, या न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है, हंटिंगटन्स डिसऑर्डर है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सब बीमारियां ऐसे हैं कि हमें पता है कि इनका इलाज संभव है, लेकिन मरीजों तक इनका इलाज नहीं पहुंच पाता। तो हर एक को इलाज मिले, है ना, उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो कि वो पा सके उस इलाज को, अफोर्डेबल हो, उसके हालात ऐसे हों कि उसको निशुल्क या कम शुल्क में उसको इलाज मिल पाए, और एक्सेप्टेबल हो कि वो इलाज ऐसा हो जो मरीज स्वेच्छा से ग्रहण करे, और इलाज की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, बंधन भी होते हैं, उसको भी माने। तो ये एक बहुत व्यापक विषय है, लेकिन ये हम सबसे जुड़ा है। और अच्छी बात है कि आज हमारा दृष्टिकोण सिर्फ इलाज पे नहीं है, एक्सेसिबिलिटी पे भी आ गया है, कि इलाज है लेकिन अगर मरीज को नहीं मिल रहा तो वो इलाज उपलब्ध तो नहीं हुआ ना। तो सबके लिए, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबको इलाज मिले।
1: जैसे कि आज वर्ल्ड ब्रेन डे है, तो हेल्दी ब्रेन यानी स्वस्थ मस्तिष्क किसे कहा जाता है डॉक्टर राहुल?
0: स्वस्थ मस्तिष्क देखिए आज की डेट में तो मैं कहूँगा होना बहुत ही मुश्किल है, बस यस हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहे। सबसे एक जो एक बहुत ही पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके मस्तिष्क को आघात लगे, आप कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे आपको जी आपका, हम अगर देखेंगे तो एक बहुत ही विशेष साइकिल होती है, आपका बीपी बढ़ता है, ब्रेन में और विकार स्ट्रोक होने का संभावना होता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क मींस आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में मैडम भी बताएंगी, थोड़ा सा मैं भी बोल देता हूँ कि आपको आपका मस्तिष्क में ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में कोई विकार नहीं होना चाहिए, एंड यस ऑफकोर्स डाइट, आपको डाइट अपना ऐसा रखना है कि आपका मस्तिष्क जो प्रमोट, मतलब जो आपकी बॉडी प्रमोट करती है आपके ब्रेन को, वो सब चीज़ों को आप खाइए तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा एंड सोचने का ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होनी चाहिए।
1: डॉक्टर मीना, आप क्या कहेंगी बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, हेल्दी ब्रेन किसे कहेंगे हम?
2: जब हमारा ब्रेन एंड माइंड, है ना, जो मन और मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में है, वो हमें मदद दे रहा है, और वो हमें जीवन में जो हम करना चाहते हैं वो हमें मदद देता है, फैसिलिटेट करता है। जब वही ब्रेन और मस्तिष्क और माइंड, मन विकार होता है, तो वो हमें हमारी जो भी हम चाहते हैं करना दिन में, जीवन में, वो हम नहीं कर पाते। तो एक बहुत अच्छी परिभाषा है फंक्शनल उस पे, कि अगर मस्तिष्क हमें मदद देता है हमें जीवन चलाने के लिए तो वो तो हेल्दी है, और नहीं देता तो यानी वो हेल्दी नहीं है। इसके आगे बहुत सारी बीमारियां हैं, तो अगर बीमारी है तो फिर मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है।
1: कैसे हम मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम है, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
3: नमस्कार, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं गाड़ी चला रही थी और मैंने बस ट्यून इन किया तो आपका प्रोग्राम सुना, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछ सकूँ।
1: जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, और हमारे
3: थैंक
1: इस
3: यू।
1: कार्यक्रम का यही प्रयास है कि हम आपके सवालों के जवाब दें। जो जो श्रोता हमें कॉल करते हैं अपनी परेशानी लेकर आते हैं, जी बताइए।
3: मेरा 14 साल का एक बच्चा है और वो बहुत स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज और आफ्टर स्कूल करता है, पर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में यही झगड़ा चलता रहता, तो क्या मतलब यही अनबन रहती है, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ उसकी स्लीप टाइम को लेके, भले ही टेस्ट हो या कुछ भी प्लान हो या कुछ भी करना हो, आई मेक श्योर कि वो 8:30 तक सो जाए, ताकि उसकी स्लीप 10 आवर्स की मिनिमम या 9.5 आवर्स की मिनिमम तो हो। बट मेरे हस्बैंड कहते रहते हैं नहीं, अब एज बढ़ रही है, पढ़ाई बढ़ेगी तो स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इस एज में कितना अप्रोप्रिएट है स्लीप, और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ब्रेन डेवलपमेंट पे, स्पेशली एट दिस कॉग्निटिव लेवल?
2: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जो स्लीप है, निद्रा है, वो उम्र के साथ कम भी होती है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो शायद पूरे दिन सोता है और सिर्फ दूध पीने के लिए उठता है। आपका बच्चा 14 साल का है, तो उसको 8 घंटे की नींद उसके लिए काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो 9 घंटा सोता है, तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे। और कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट 7.5 घंटे भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि घड़ी देख के ही बच्चे को सुलाना है, लेकिन हाँ, कम नींद नहीं होनी चाहिए, उससे मानसिक स्वास्थ्य नहीं रहता, बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण मिलता है। और बच्चे क्योंकि पढ़ाई करते हैं, तो स्कूल में जो पढ़ते हैं जितनी भी याददाश्त है वो नींद के दौरान कंसोलिडेट होती है। तो अगर नींद नहीं अच्छी होगी, रात भर जगेंगे तो अगली सुबह पेपर में नहीं लिख पाएंगे। तो नींद की आवश्यकता है, लेकिन हम रिजिडली नहीं कह सकते कि 10 घंटे ही सोना है बच्चे को। आप बच्चे की रिक्वायरमेंट देखिए। और ये भी ज़रूरी है कि समय से सोए, सूर्य के साथ जगें और सूर्य के साथ सोएं। बहुत सारे बच्चे रात भर जगते हैं और कहते हैं हम दिन में सो लेते हैं, वो उतना अच्छा नहीं है।
3: जी जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द कॉल एंड मैसेज।
2: शुक्रिया, शुक्रिया आपका।
1: आज रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल पर। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: वर्ल्ड ब्रेन डे पे हम बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल पर। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर
1: बीपी
0: रहे हैं?
1: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
1: हाँ, मेरा पूछना है कि एक बीमारी है डिमेंशिया, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो मेरा पूछना है कि डिमेंशिया क्या कोई मस्तिष्क ब्रेन की कोई कमी की बीमारी है या याददाश्त कमजोर होना है? हमारे आयुर्वेद में कुछ दवाइयां हैं जैसे मेधावटी, मुक्तावटी, ब्रह्मीवटी, क्या हमारे एलोपैथ में भी कोई ऐसी दवाई है जो ब्रेन याददाश्त बढ़ाती है? और याददाश्त बढ़ाने के लिए 4-5 उपाय बताएं। ओम शांति।
2: धन्यवाद आपके सवाल के लिए गौतम साहब। जो जिस बीमारी को आप डिमेंशिया कहते हैं, हम लोग डिमेंशियाज कहते हैं क्योंकि बहुत तरीके के डिमेंशिया होते हैं। कुछ ऐसे डिमेंशिया होते हैं जिसमें जो दिमाग की नसें हैं उसे कुड़ती हैं, और न्यूरो डिजेनरेशन होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की इकाई है, वो टूटना और बिखरना शुरू हो जाती है, जैसे हमारे अल्जाइमस डिमेंशिया है। कुछ डिमेंशिया होते हैं जो बीपी अगर तेज़ हो और स्ट्रोक हो जाए, या डायबिटीज़ हो, या पोल्यूशन में रहें, तो इन सब के कारण भी वैस्कुलर डिमेंशिया हो जाते हैं कि दिमाग में खून का जो दौरा है वो उतने अच्छे से नहीं चलता, या तो ब्लॉक हो जाता है या जो धमनी है वो फूट जाती है। फिर कुछ डिमेंशियाज होते हैं जो हम न्यूट्रिशनल डिमेंशियाज कहते हैं। बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, उनकी डाइट में कई बार B12, फॉलेट ऐसे वाइटमिन कम हो जाते हैं, उसके कारण भी डिमेंशिया हो जाते हैं। थायराइड की परेशानी हो, हाइपोथायरायटिज्म हो, तो भी डिमेंशिया हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे रिवर्सिबल डिमेंशिया है ना, और कुछ हमारे ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं। डिमेंशिया किस कारण से है उसका इलाज उसके अनुसार ही है। जहाँ तक बात की सर ने कि एलोपैथी में क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो याददाश्त को सुधार सके, तो हमारे यहाँ भी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे याददाश्त सुधारने में या उसको मेंटेन स्टेबल रखने में मदद मिलती है, और वो डॉक्टर की संरक्षण में, उनकी एडवाइस पे, सलाह पे ही लेनी चाहिए। क्या तरीके हो सकते हैं अपने याददाश्त को सही रखने के लिए? एक उम्र के बाद अगर जितना आप अपने दिमाग से काम लेंगे उतना आपका दिमाग सुचारू चलेगा, है ना, मशीन की तरह दिमाग होता है, तो यूज़ इट और लूज़ इट। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम उम्र के साथ साथ छोड़ते जाते हैं, फिर वो काम छूट ही जाते हैं, तो अब ब्रेन को पता चल जाता है कि हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर विकार आता है तो डॉक्टर को भी नहीं पता चलता, मरीज़ को भी नहीं पता चलता। स्वस्थ जीवन शैली बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे वो तंबाकू ही क्यों ना हो और शराब हो या कोई भी नशीला पदार्थ हो, तो उसको छोड़ ही देना चाहिए, चाहे उम्र कितनी भी हो, क्योंकि इन सब का दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। डाइट अच्छी रखें, पौष्टिक आहार लें, और अगर विटामिन्स की कमी है तो वो विटामिन

0: सप्लीमेंट्स लें। एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है, इससे सिर्फ शरीर के वर्जिश ही नहीं होती, दिमाग में भी खून का दौरा ठीक चलता है तो दिमाग को भी इसका लाभ मिलता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करके अपनी अच्छी उम्र में अच्छी याददाश्त को पा सकते हैं, लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे तो इसके परिणाम उस समय कई बार नहीं नज़र आते, लेकिन कालांतर में 10 साल 20 साल बाद हम वो देखते हैं। तो अगर हमें 60-65 में कुछ बीमारियां पता चलती हैं कि डिमेंशिया हो रहा है, तो उसकी जेनेसिस है, उसकी शुरुआत 40-45-50 साल में हो जाती है। तो ये थोड़ा सा लंबा हिसाब है। तो शुरुआत से अपना ख्याल रखेंगे तो अच्छी उम्र में अच्छी ब्रेन हेल्थ पाएंगे।
1: तो अब हम डॉक्टर राहुल से जानते हैं कि ऐसी कौन सी और बीमारियां हैं जिनका असर हमारी माइंड पे, ब्रेन पे, इस पे पड़ता है।
2: अच्छा, मैं मैडम ने जो बोला बहुत ही अच्छा बोला। मैं इसमें दो बातें और जोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द जो ब्रेन होता है वो अराउंड 4-5 ईयर्स तक 90% डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो होता है हमारा सिर्फ ब्रेन का साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, डेवलपमेंट तो नहीं होता है आपका। तो जो भी आपका खान पान है, जो भी मैडम ने बोला पौष्टिक चीज़ आपको खानी है, ये सारी जैसे हमारे बच्चे होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो वह एक बहुत ही आइडियल, मतलब वह एक सही टाइम होता है जब बच्चे के खाने पीने के बारे में आप ध्यान रखें, उसको पौष्टिक खाना दें, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं हमारे अखरोट जिसको बोलते हैं अपन, अखरोट ही आपको देखेंगे आप दिमाग के शेप का ही होता है अगर आप उसको खोल के देखेंगे, एंड इट इज़ वेरी गुड आपके ब्रेन के लिए, बहुत अच्छा होता है अखरोट। अखरोट हो गया, जीरा हो गया, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को, हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। तो खाना पीना आप बचपन से बच्चों को अच्छा रखेंगे तो आगे उसकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ, दिल्ली से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
3: मेरा पूछना है, मेरे दो सवाल है। पहला मेरा सवाल ये है कि ये साइकोसिस क्या है और इसके लक्षण सिम्टम्स इसके बारे में बताएं, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर किसी के ब्रेन ट्यूमर हो और नॉन कैंसर ट्यूमर हो तो क्या उसकी भी सर्जरी करनी पड़ती है?
0: धन्यवाद कासिम साहब, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। आपके पहले सवाल का जवाब मैं दूंगी और डॉक्टर वार्ष्णेय सर आपके दूसरे सवाल का जवाब देंगे। आपने पहला सवाल पूछा था साइकोसिस के विषय में। साइकोसिस दिमाग की एक बहुत गंभीर बीमारी है और इसमें कई लक्षण होते हैं, जैसे भ्रम होना, किसी व्यक्ति को लगता है कि शायद उसके कोई खिलाफ है या उसका कोई बुरा चाहता है या ब्रेन के विकार हो रहे हैं या वो समझता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो दूसरे लोगों के साथ अनुभव नहीं होते, या उसके कुछ कानों में आवाज़ें आ सकती हैं जो दूसरों को नहीं सुनाई देती। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार अपना ख्याल नहीं रख पाता, वो खाने पीने का, नहाने धोने का ख्याल नहीं रख पाता, काम नहीं कर पाता। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती और ये एक सीवियर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि जानकारी कम है तो लोग समझते हैं ये ऊपरी पर आया है, किसी ने कुछ कर दिया है, और डॉक्टर के पास समय रहते नहीं पहुँचते। समय के साथ पहुँचें तो बहुत अच्छा इलाज संभव है और इसके लिए एक मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। अगर आपके घर के पास कोई मनोचिकित्सक नहीं है तो किसी भी डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर आपको सही राय देंगे, इलाज संभव है। दिल्ली के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कंसल्टेशन है, परामर्श निःशुल्क है, ज़्यादातर दवाइयाँ भी निःशुल्क मिलती हैं। तो समय रहते इलाज कराएं तो पूरी तरीके से मरीज ठीक हो सकता है। तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अगर पुराना केस भी हो गया है इलाज कराएं, नई दवाइयाँ हैं, नई टेक्नोलॉजी है तो सुधार संभव है। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उनके लिए परामर्श ज़रूर लें।
2: देखिए, जहाँ तक आपने ब्रेन ट्यूमर की बात करी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। मैं आज आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ अमूमन लोगों में धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया अब तो मैं बच नहीं सकता, ये पूर्णतः मैं गलत बोलूँगा इसको। आज की डेट में जो ट्यूमर्स होते हैं उनका ऑपरेशन संभव होता है और टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट आ गया है कि जैसे अभी हम लोग बोला कि ब्रेन हेल्थ, मतलब आपके डेट जब हम ट्यूमर को ऑपरेट करते हैं या जिस भी पद्धति से ट्यूमर का इलाज करेंगे वो सिर्फ आपका ट्यूमर को ही असर करेगी और

0: आपका आजू बाजू के ब्रेन में कुछ असर नहीं आता है। तो आप ऑपरेशन के बाद ट्यूमर जब आपका ठीक हो जाएगा, आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं जैसे कि आप पहले जिया करते थे। तो मेरा सभी से आग्रह है कि कुछ भी ब्रेन में ट्यूमर होता है तो प्लीज़ इसको भगवान का देन समझ के अपने ग्रहण ना करें, आप इसका इलाज कराएं, आप अपने नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि ट्यूमर की बात करी तो क्या इसके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं?
0: जी, ट्यूमर्स के मैं मतलब पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है ट्यूमर का वो होता है हेडेक। और इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कृपया ये ना समझें कि हर हेडेक में ट्यूमर होता है। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर्स का डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर्स कौन सी लोकेशन पे है, किस हिस्से में है। मतलब सिर्फ फॉर एग्जांपल जो हिस्सा दिमाग का आपके हाथ को कंट्रोल करता है, पैर को कंट्रोल करता है, वहाँ पे अगर कुछ ट्यूमर होगा तो छोटा सा भी होगा तो आपको उसका असर पता चलेगा, उसमें तो आपको कमजोरी आएगी तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बट कुछ हिस्से ऐसे होते हैं ब्रेन में कि जब तक ट्यूमर का साइज बड़ा नहीं हो जाता उसका असर आपको नहीं दिखता है, तो फिर आप जब बहुत ही लेट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो आपको अगर बराबर से सर दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ हाथ पैरों में कहीं कुछ कमजोरी आ रही है, कुछ भी सिम्टम आ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सही समय पे अगर आप कंसल्ट करेंगे, आपका अगर ट्यूमर निकल के आता है तो उसका इलाज संभव है।
1: इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी लक्षण लगता है तो डॉक्टर से परामर्श करें। अगर ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा तो कोई डॉक्टर ये नहीं कह देगा भाई ब्रेन ट्यूमर ही है, लेकिन अगर आप परामर्श नहीं करेंगे और देरी कर देंगे तो अगर ब्रेन ट्यूमर होगा तो वो फैल जाएगा। यही बात साइकोसिस पे भी लागू है। अगर आपको शंका भी है तो डॉक्टर से मिलिए, संपर्क कीजिए, परामर्श लीजिए। जो परामर्श आपको मिलता है उस पर अमल भी करना है। अगर नहीं करेंगे ये वाली बात तो हमारी बात सिर्फ ये आपके जीवन में फर्क नहीं लाएगी, बदलाव नहीं लाएगी। आपने सुन तो ली, लेकिन बदलाव तो तभी आएगा जब आप अमल करें।
2: जी नहीं तो वो बात ही रह
1: वो
2: जाएगी।
1: बात ही रह जाएगी।
2: एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन पहले दोपहर के बाद से लेफ्ट या राइट साइड की तरफ चक्कर आ रहे हैं, ये चक्कर क्यों आ रहे हैं, इसका इलाज बताएं। सतीश कुमार, उम्र 65 साल, रोहिणी, दिल्ली से।
0: देखिए, चक्कर आने के अगर ऐसे तो बताना मुश्किल होगा कि चक्कर आने के आपके शरीर में बहुत सारे कारण होते हैं। या तो आपका बीपी ज़्यादा हो, बीपी कम हो, या फिर एक बोलते हैं बेनाइन पोजिशनल वर्टिगो, आपके कान में छोटे छोटे पत्थर होते हैं कई बार वो हिल जाते हैं जिसके कारण चक्कर आते हैं। तो इलाज तो हर चक्कर का क्या कारण है पहले तो वो खोजना होगा, इलाज उसके हिसाब से होगा। मेरे आपको यही एक एडवाइस है कि आप डॉक्टर को दिखाएं और वो आपको सही तरीके से जांच करके आपको उसके बारे में ट्रीटमेंट बताएगा।
2: बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, हेल्दी ब्रेन कैसे रखें, उस पर हम और भी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार जी, आपका नाम है, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अमित त्यागी है, मैं ग्राम नंगोला हापुड़ यूपी से बात कर रहा हूँ।
0: नमस्कार जी, बताइए क्या
1: जी,
0: प्रश्न है
1: मेरा
0: आपका?
1: मेरा सवाल ये है कि जब कोई इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी याददाश्त कमजोर क्यों हो जाती है, और इसका उपाय भी हो तो आपके पास उपाय बताएं।
2: त्यागी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इससे मिलता जुलता सवाल पहले भी पूछा है। डिमेंशिया नाम की एक बीमारी होती है जिसके कारण याददाश्त में असर पड़ता है, याददाश्त कम हो जाती है। इसके विभिन्न कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें न्यूरॉन बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। कुछ कारण हैं कि बीपी, शुगर, इन बीमारियों के कारण भी दिमाग में खून का दौरा ठीक नहीं जाता। कुछ कारण हैं कि हम जो खान पान हमारा सही नहीं होता कभी, तो विटामिन डिफिशेंसीज हो जाती हैं। सिर में चोट लग जाए तो पोस्ट टीबीआई डिमेंशिया हो जाते हैं। तो विभिन्न विभिन्न कारण हैं और कारण के अनुसार ही इलाज होता है। किसी भी साइकियाट्रिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें अगर इस तरह की परेशानी हो, पूरा आकलन कराएं और उसके बाद ही इलाज संभव है।
0: जैसे कि अभी मैम ने कहा सिर पे चोट लग जाती है, तो डॉक्टर राहुल आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, अगर इमीडिएटली गिर जाए या सिर पे चोट लग जाए तो इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए, तुरंत क्या करे
3: देखिए,
0: वो?
3: कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको सर में चोट लगने के बाद, जैसे मान लीजिए बहुत मतलब हल्का फुल्का हेडेक, नहीं सीवियर हेडेक हो रहा है आपको, आपको वॉमिटिंग आ रही है बार बार, या आपको लग रहा है कि आपको कभी मिर्गी के झटके आ जाते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि मेरे हाथ पैरों में किसी साइड में थोड़ा कमज़ोरी आ रही है, मुझे देखने में दिक्कत आ रही है, ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, सारे नहीं। और मेरा यही मानना है कि अगर आपको हेड इंजरी होती है, कुछ इंजरी जिसको बोलते हैं कनकशन इंजरीज होती है, उसमें थोड़ी देर के लिए आपकी याददाश्त भी चली जाती है, तो एक बार आप डॉक्टर से एवेल्यूएट जरूर कराएं। एंड यस, ऑफ कोर्स, एक चीज़ मैं भूल गया कि अगर कान से, नाक से, कहीं से भी खून आता है तो भी एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। बट आप किसी भी सर की चोट को, कि मैं छोटी सी हाइट से गिरा था या मुझे हल्की सी चोट लगी है, उसको आप नज़रअंदाज ना करें, कभी भी वो सीरियस हो सकती है आपको। और डिमेंशिया पे एक बात और जोड़ना, अच्छा बताओ, एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं कि देखिए, डिमेंश आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ज़िंदगी भर चलेगी। आप गाड़ी भी खरीदते हैं तो वो धीरे धीरे चलते चलते चलते चलते उसमें भी विकार आने लगते हैं। यही चीज़ हमारे दिमाग के साथ भी होता है। आपके न्यूरॉन, जब आपकी उम्र बढ़ती है, आपके न्यूरॉनल लॉस होता है, जिसको हम सीनाइल डिमेंशियाज बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ यहाँ पे

0: स्ट्रेस हमेशा खराब नहीं होता, एक स्टेज तक हमारी परफॉर्मेंस सुधरती है। अगर एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तो हम पढ़ाई ज़्यादा करते हैं तो हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो स्ट्रेस का पहचानना ये प्रथम स्टेप है। उसके बाद क्या होता है कि हम समझें स्ट्रेस क्यों है और हम स्ट्रेस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसको हम डील करने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन हमेशा अच्छा होता है, हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, कुछ हॉबीज़ रखें, थोड़ी स्पिरिचुअल साइड भी डेवलप करके रखें। जिससे हम कहते हैं डिप्रेशन लेट्स टॉक, एक नारा दिया था WHO ने, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ स्ट्रेस लेट्स टॉक। कुछ भी आपको परेशानी है किसी से बात करके मन हल्का कर लीजिए तो मन हल्का हो जाता है। और बहुत ज़रूरी है कि आज स्ट्रेस है तो ज़रूरी नहीं कल भी रहेगा, एक नए दिन की शुरुआत होती है, तो पॉजिटिव माइंड से शुरुआत करें, अपने को हिम्मत रखें, अगर मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं वो भी निकल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, है ना, ये परिस्थिति समय के साथ सुधर भी जाएगी अगर हम अच्छे चुनाव करें, हम अपने आप को डिस्ट्रेस करने का प्रयास करें। और अगर स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं तो ज़रूर मदद लें, किसी भी मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं अगर लगता है कि हम स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस के साथ साथ और शारीरिक विकार भी आना शुरू जाते हैं। जैसे डॉक्टर राहुल सर ने पहले कहा, BP बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर डायबिटीज़ है तो उसका जो कंट्रोल है वो गड़बड़ा जाता है। तो अगर ड्राइव कर रहे हैं, स्ट्रेस में कर रहे हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। तो स्ट्रेस अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा तो मदद लीजिए, मदद संभव है। जैसे मैंने पहले कहा, दिल्ली के तो सभी सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सा के विभाग हैं, तो ज़्यादा बढ़ा के मदद लेने का क्या लाभ है ना, पहले ही मदद लें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स हैं, पॉडकास्ट हैं, नेट पे भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, इतनी विधाएं हैं। लेकिन क्या है, हमारे पास जानकारी या तो नहीं होती या होती है लेकिन हम अमल नहीं करते, अमल करते हैं तो हम रोज़ अमल नहीं करते। तो ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है, स्ट्रेस को हमें मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना सीखना ही पड़ेगा और तभी हम कामयाब होंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, सर नमस्कार, व्हाट्स एन इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड हाउ इट इज मेजर्ड एंड इंक्रीज्ड।
0: देखिए, जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमत्ता है, ऐसे तो नापी नहीं जा सकती, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो जिनमें बुद्धिमत्ता थोड़ी कम होती है, उनके लिए हम अलग विषयों का चुनाव करते हैं, उनके लिए हम अलग करियर गोल्स बनाते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट बच्चे की उम्र के हिसाब से हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, उन टेस्ट पे अगर स्कोर कम आता है तो हम उनकी इंटेलिजेंस को कम बताते हैं, स्कोर काफ़ी कम है तो उन्हें डिसेबिलिटी कार्ड या विकलांगता प्रमाण पत्र मिलता है, भारत सरकार की तरफ से UDID वेबसाइट पे अप्लाई करके वो मिल जाता है। इंटेलिजेंस ऐसे बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन इंटेलिजेंस जितनी है उसको हम अच्छी तरह अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर 100 110 की इंटेलिजेंस है और हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और 90 की इंटेलिजेंस है और अच्छे से इस्तेमाल किया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर 70 से कम है तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है। कृपया करके उन बच्चों को डांटे नहीं, मारे नहीं, फटकारे नहीं, उनकी उतनी ही बुद्धि है तो उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करें।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, स्ट्रेस कैन टेक ब्रेन टू व्हाट वर्स्ट लेंथ्स, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, एल्जाइमर, डिमेंटिया और स्कल विल ब्रेक, कैन ब्रेन ट्यूमर्स बी कॉज्ड बाय स्ट्रेस।
2: सी, स्ट्रेस एज अ कॉजिंग अ ब्रेन ट्यूमर तो नहीं होता है, बट यस, एक विशेष साइकिल होता है। आप स्ट्रेस लेंगे, आपका BP बढ़ेगा एंड डेफिनेटली आपके ब्रेन हेमरेज के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो स्कल ब्रेक तो सर मैडम ऐसे नहीं हो पाता है कि आप स्ट्रेस से आप लेंगे कि स्कल ब्रेक होगा, नहीं, बट यस, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इसके, जैसे मैडम ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, एंड अगर मैं आपको जाऊँगा कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, तो ब्रेन हेमरेज के रिस्क काफ़ी हाई रहता है। इनफैक्ट हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ वेरी कॉमन कॉज फॉर अ ब्रेन हेमरेज एंड स्पेशली इन ओल्डर पर्सन्स।
1: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, माई सेल्फ सौरभ सिंह चौहान।

0: लखनऊ यूपी से। माय क्वेश्चन इज, क्या बार बार या कभी कभी हेडेक होना भी कोई बीमारी है ब्रेन की? प्लीज रिप्लाई।
1: देखिए, हेडेक अमूमन आज की डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको नहीं होता होगा, और हेडेक, हर हेडेक, मैं फिर बोलना चाहूँगा, ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, ये अपने दिमाग में बिठाइए। हेडेक्स आर वेरी कॉमन, बहुत अलग अलग तरह के हेडेक्स होते हैं। माइग्रेन्स आर वेरी कॉमन, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, बहुत तरीके के हेडेक होते हैं। तो आपको अगर बार बार हेडेक होता है, कई बार चश्मा, हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं, हम चश्मा नहीं लगाते हैं, वो हेडेक के कारण होता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो हेडेक के कारण होता है। तो आप, हेडेक अगर बार बार होता है तो डॉक्टर से संपर्क करिए, अपना जांच करवाइए, और वो आपको सही इलाज देगा और वो ठीक हो जाएगा आपको।
0: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, खाना खाते समय भूख से ज़्यादा खा जाते हैं, बार बार दिमाग को समझाने पर भी नियंत्रण नहीं हो पाता, कृपया इस बारे में जानकारी दें। अनिल कालरा, गुरुग्राम।
2: देखिए, जैसे स्लीप सेंटर दिमाग में है, ऐसे एपेटाइट सेंटर भी दिमाग में है ना। इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल होता है उसके अनुसार भी हम लोग अपनी डाइट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतनी डाइट लेनी है या इससे ज़्यादा लेनी है, इससे कम लेनी है। कई बार फूड फैट्स भी होते हैं कि कुछ चलता है कि इतना ही खाना खाना चाहिए, तो चाहे व्यक्ति का 5 फुट 2 इंच का हो या 6 फुट का हो, तो सब सोचते हैं हमें उतना ही खाना चाहिए। तो डाइट तो आपके शरीर की संरचना के अनुसार है। अगर लगता है कि एपेटाइट से ज़्यादा खा रहे हैं या उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो जैसे मैंने पहले कहा, एक मनोचिकित्सक से संपर्क करें। मनोचिकित्सक नहीं है तो एक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। हो सकता है कोई और वजह हो, जैसे डायबिटीज़ है, शुरुआत में पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया होता है, पानी भी ज़्यादा पी रहे होते हैं और खाना भी ज़्यादा खा रहे होते हैं, और पता भी होता है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाते। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ दिमाग से ही रिलेटेड है, कई शरीर की बीमारियों में भी एपेटाइट में बदलाव नज़र आते हैं। अगर समझ रहे हैं बदलाव है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
0: एक और मैसेज हमारे पास, लिखते हैं, डॉक्टर साहब नमस्ते, मैम नमस्ते, मेरी वाइफ की एज 66 है, उसको ऐसा लगता है गंदा गंदा, वो बार बार हाथ धोती है, कोई सही इलाज बताएं, राजरानी रोहिणी दिल्ली।
2: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मरीज़ तो हमने नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके मरीज़ को शायद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी हो, क्योंकि उसमें ये लक्षण ज़्यादातर होते हैं। कुछ और बीमारियों में भी होते हैं, लेकिन OCD का ज़्यादा चांस लग रहा है। तो आप किसी मनोचिकित्सक से मिलें। रोहिणी में रहते हैं तो रोहिणी में सरकारी अस्पताल में भी मनोचिकित्सक के विभाग हैं, और किसी से भी मिलके जो डॉक्टर इलाज बताएं उस पर अमल ज़रूर करना है। कई बार मानसिक रोगों में इलाज लंबा होता है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, 1 हफ्ता खानी है, 5 दिन खानी है, तो महीनों में इलाज होता है। तो आप सब्र रखें, जितने दिन डॉक्टर साहब इलाज दें वो इलाज लेना है। इलाज के 2 चरण हैं, एक्यूट फेज जब तक बीमारी ठीक नहीं होती, और मेंटेनेंस फेज जिसमें हम प्रयास करते हैं कि बीमारी वापस पलट के ना आए। तो थोड़ा सब्र रख के रेगुलर इलाज कराएंगे तो इलाज संभव है।
0: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, एज इज 46 ईयर्स, ममता फ्रॉम दिल्ली, सिंस चाइल्डहुड आई हैव हैड अ हैबिट ऑफ पीलिंग द टॉप लेयर ऑफ स्किन अराउंड माई फिंगर्स, इज दिस नॉर्मल? आई हैव नोटिस दैट आई समटाइम्स डू इट वाइल आई एम ओवर थिंकिंग, कुड देयर बी अ कनेक्शन बिटवीन द टू?
2: हाँ, ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, आप भी मनोचिकित्सक से मिलें और इसका इलाज कराएं। इसका इलाज भी संभव है ना, लेकिन कई बार पता ही नहीं होता कि ये बीमारी है या आदत है, ये आदत है या टेंशन में हम अपने आप ऐसे ही कर लेते हैं या नॉर्मल है।
0: नेल बाइटिंग भी,
2: नेल बाइटिंग होती है, कई बार लोग अपने बाल भी खींच खींच के निकालना शुरू कर देते हैं, तो ये सब बीमारी में ही आता है, विभिन्न तरीके की मानसिक रोग हैं। तो मनोचिकित्सक से मिलें और इलाज कराएं।
0: तो लेकिन कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे लगे, मतलब जब ये हैबिट्स कर रहे हैं या लगे हम सोच रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, कई बार लोगों को खुद ही नहीं पता चलता,
2: बीमारी ही है, डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो बताया कि ये भ्रांति है, मिथ है, लोग सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है या हम टेंशन में कर रहे हैं, एक्चुअली बीमारी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बीमारी ही होती है।
0: एक और मैसेज हमारे पास, ये है इंदर सिंह फ्रॉम रोहिणी, सर व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हेडेक, प्लीज एक्सप्लेन।
1: हेडेक के, देखिए जैसे मैंने बोला, हेडेक के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे आपका माइग्रेन होता है, टेंशन होती है आपको, क्लस्टर हेडेक्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में आपको हेडेक होता है, ब्रेन ट्यूमर्स में हेडेक होता है। अगर मैं आपको लिस्ट गिनाने चाहूँगा तो शायद ये प्रोग्राम पूरा

0: ही समाप्त हो जाएगा। तो कॉजेज बताना तो बहुत अलग अलग है कि, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर हेडेक होता है, बार बार होता है, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए आप।
1: जैसे कि आजकल के टाइम में डिजिटल स्क्रीन, सोशल मीडिया और लगातार बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, बड़े भी लगे रहते हैं, तो उसका हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है?
2: उसका हमारे ब्रेन पे बहुत ख़राब असर पड़ता है। और कई विदेशों में तो उन्होंने स्क्रीन टाइम कम कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और सोशल मीडिया बच्चों के लिए तो प्रतिबंधित भी कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया का और स्क्रीन का बुरा असर पड़ रहा है ना। तो भारत में अभी तक ऐसे कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन स्कूलों में, कॉलेजेस में डॉक्टर भी सभी यही राय देते हैं कि आप इसका ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करें, है ना, इसका दुरुपयोग ना करें। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आंखें ख़राब होती हैं तो सभी समझ सकते हैं, लेकिन ब्रेन पे भी असर पड़ता है, याददाश्त पे असर पड़ता है, अटेंशन स्पैन पे असर पड़ता है, मेमोरी पे असर पड़ता है ना, कोपिंग स्किल्स कम है, डिस्ट्रेस टॉलरेंस कम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अभी विदेशों में हर पीढ़ी के साथ जो IQ है, हमने बात की थी ना इंटेलिजेंस टेस्ट,
1: जी
2: बुद्धिमत्ता के एक आकलन की, हर पीढ़ी के साथ IQ बढ़ी है। ये पहली बार है कि इस बार IQ के कुछ प्रतिशत घटी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये खुद एनालिसिस नहीं कर रहे, खुद सोच नहीं रहे, पकी पकाई खिचड़ी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, तो वो भी एक मतलब एक नेगेटिव दुष्प्रभाव है कि आप सोचने समझने की शक्ति भी कम किए जा रहे हैं। तो उसका असर ये नहीं कि अभी हो रहा है, उसका असर आगे तक होगा। तो ठीक है, एक नई चीज़ आई, लेकिन वही सेब और चाकू वाली बात है कि चाहे हाथ काट लें चाहे सेब काट लें, इसी तरह सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम है, उसके बहुत सारे लाभ हैं, इसीलिए लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए करते हैं, चाहे अपने मित्रों से संपर्क में रहने के लिए करते हैं, लेकिन दुष्प्रभाव भी हैं। तो अगर ज़्यादा यूज़ है और नहीं छोड़ पा रहे, मनोचिकित्सक से संपर्क करें, हम उसमें भी मदद करते हैं।
1: तो ऐसे में बच्चों में जो मोबाइल पे लगे रहते हैं, जैसे आपने कहा IQ लेवल वगैरह कम हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों की मेमोरी इंक्रीज करने के लिए उनको किस तरह की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए?
2: पहले हमें मोबाइल का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो छुड़वाना पड़ेगा। ऐसा नहीं IQ बड़े पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, एक व्यक्ति पे नहीं है, ये एक पीढ़ी पे बात कही थी कि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। बच्चे में जो विकार है उस विकार के अनुसार फिर हम गाइड करते हैं। और अभी हमने हमारे अस्पताल में ही देखा कि इंटरनेट और AI के प्रयोग से एक 13-14 साल का लड़का, उसको साइकोसिस तक हो गया, जो बहुत गंभीर बीमारी है। तो इतना सुरक्षित नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, लेकिन इसके गंभीर दुष्परिणाम हैं। तो लिमिट में अपनी सुपरविजन में बच्चों को देना चाहिए, और जो बड़े हैं उनको भी लिमिट में इस्तेमाल करेंगे तो सुखी रहेंगे।
1: डॉक्टर राहुल, जैसे कि आप न्यूरो सर्जन हैं, तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं कि जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है?
0: ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा। बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है आपका, बट यस, आपके सर में चोट होती है, आपको स्ट्रोक होता है, आपको ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, बहुत तरह के विकार होते हैं आपके उसमें, जिसमें ऐसा नहीं है कि हर एक में सर्जरी ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें दवाइयों से भी ठीक हो जाती है, बट उसके लिए फिर मैं कहूँगा डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, वही आपको बताएगा कि सर्जरी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। खुद से, जैसे मैडम ने बताया सोशल मीडिया, तो एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो भी आप देखते हैं, कृपया उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अगर 70% इन्फॉर्मेशन ठीक है तो 30% गलत भी है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है आगे चल के आपके शरीर में उसके दुष्प्रभाव आए, तो प्लीज़ पहले वेरीफाई करिए तभी फॉलो करिए।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, मैं ललित भाटिया, 67 ईयर्स, अहमदाबाद से। मैंने 2 बार कॉमा फेस किया है और पापा को भी ट्यूमर था। कोई सिम्टम्स नहीं है, ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ना डायबिटीज़ है ना BP है।
2: तो ललित जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप 2 बार कोमा से बाहर आए हैं। कोमा किस वजह से हुआ ये तो आपने नहीं बताया, लेकिन आप कोमा से बाहर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपके पिताजी को ट्यूमर था, तो इस जानकारी को समझते हुए आप अपना एनुअल चेकअप ज़रूर कराइए। अगर आपको ब्रेन से

0: संबंधित या कोई और भी विकार लगता है तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लीजिए। और जो हमने लाइफस्टाइल फैक्टर्स बताए हैं एक्टिविटी का, कि अपना एक्सरसाइज करें, योग करें, ध्यान करें, सही पौष्टिक बैलेंस डाइट खाएं, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर फिर भी कुछ आपको शंका होती है तो डॉक्टरी परामर्श से बचे ना, है ना। कई बार हम सोचते हैं हम डॉक्टर परामर्श करेंगे ना, डॉक्टर कुछ बता देंगे, लेकिन कुछ होता है तभी बताते हैं। अगर डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, वो तो सबसे सुखद संदेश है ना कि कुछ नहीं है, तो शंका को अपने मन में ना रखें। एनुअल चेकअप तो हर एक ने कराना चाहिए, नहीं कराते हैं तो लक्षण के अनुसार तो ज़रूर कराएं।
1: यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा आपको कि जैसे मैडम ने बोला, आप इस बात का स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा कि मेरे फादर को ट्यूमर था तो मुझे भी होगा। ऐसे अमूमन ट्यूमर्स बहुत ही कम होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मेरे फादर को ट्यूमर था। प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिएगा, इससे और दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे बीपी वगैरह बढ़ सकता है आपका। तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है कि फादर को ट्यूमर है तो मुझे भी हो सकता है।
0: और इस बात का भी स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे दो दो बार कोमा हुआ, बल्कि इस बात का आपको खुशी होनी चाहिए कि आप कोमा से दो बार बाहर आए। तो कई बार हमारा जो दृष्टिकोण है वही हमें स्ट्रेस देता है कि हमें ये हो गया, लेकिन हम उससे ठीक भी तो हुए ना। तो हम अगर पॉजिटिव देखेंगे तो सोच पॉजिटिव रहेगी तो स्ट्रेस कम रहेगा।
2: यानी नेगेटिव साइड को हम साइड में रख के पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें और अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखें।
0: हाँ, गिलास आधा भरा है ये सोचें, गिलास आधा खाली है वो ना
2: वो
0: सोचें।
2: जी एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम शाहीन है, मैं मेरठ से हूँ। मुझे ये पूछना है कि मेरा भांजा है, उसकी उम्र 15 साल है, वो स्कूल जाता है पर उसे कुछ याद नहीं रहता है, ना कुछ काम और ना ही वो स्कूल का कुछ याद कर पाता है, तो इसका कोई इलाज है या ये कोई बीमारी है, प्लीज़ बताएं।
0: इनको मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, और शायद अगर मनोचिकित्सक ज़रूरी समझेंगे तो बच्चे की इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कराएंगे, तो इनको ज़रूर मिलना चाहिए।
2: तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेल्दी ब्रेन के लिए, तो हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी हैबिट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं?
1: हेल्दी हैबिट्स तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि आपका ब्रेन 4 से 5 साल में डेवलप हो जाता है जब तक आप होते हैं, तो वह एक आपका आइडियल टाइम होता है जिसमें आपको बच्चे के खान पान इन सब पे ध्यान देना होता है। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स पे आ जाते हैं, हम वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चे भी आजकल की डेट में जैसे बड़े होते हैं उसको फास्ट फूड्स को लेते हैं। तो वही एक पीक टाइम है जिसमें आपको बच्चे के डाइट पे ध्यान देना है। और जैसे फिर मैं दूसरी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हेल्दी ब्रेन इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे मैंने पहले कहा था। तो कृपया जब भी आप गाड़ी चलाएं हेलमेट ज़रूर पहने आप, क्योंकि तो अगर आपने हेलमेट नहीं पहना और भगवान ने ना चाहा और आपका एक्सीडेंट हो गया तो फिर वो हेल्दी ब्रेन तो नहीं रहेगा आपका।
0: इसमें मैं एक बात जोड़ूं कि अमूमन जो बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, वो शायद पहन लेते हैं हेलमेट, लेकिन जो पिलियन पे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, और ज़्यादातर महिलाएं वो नहीं पहनती। और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह शायद लॉ ना हो लेकिन ब्रेन तो आपका अपना है
2: जी
0: ना। तो आप कानून का इंतज़ार ना करें, अपने ब्रेन की सुरक्षा रखें। एक और बात मैं यहाँ जोड़ती हूँ कि नशा किसी भी तरीके का दिमाग को हिट करता है, तो नशे से हम जितना दूर रहेंगे उतना सही है। और नशे का जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उस पर बहुत ज़्यादा असर है, हम देख रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, और लड़कों में नहीं लड़कियों में भी नशे के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये कोई स्मार्टनेस का द्योतक नहीं है कि भाई हम बहुत स्मार्ट हैं तो हम नशा करते हैं। ये तो क्या कहूँ, एडवर्टाइजिंग है कि लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं। ये नशीले पदार्थ ब्रेन को अंदर से खोखला कर देते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें।
2: और योग और मेडिटेशन वो हेल्दी ब्रेन के लिए कितना ज़रूरी है?
0: देखिए, इतने मैं क्या कहूँ कि इतने दशकों से नहीं, इतनी सेंचुरी से, हज़ारों साल से योग हमारी धरती पर, हमें सौभाग्य हमें मिला है, लेकिन हम लोग उस पे अमल कम करते हैं। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोज़ करें, तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि कुछ आप अवधि बांध लें और फिर कंसिस्टेंटली रोज़ करें। एक दिन 1 घंटा कर लिया और उसके बाद 6 महीने नहीं किया, उसका कोई लाभ नहीं। जो मेडिटेशन है ये उतना

0: आसान नहीं होता, क्योंकि मन चंचल होता है ना, तो मन भटकता है। तो मेडिटेशन किसी से सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा मन स्थिर रखना और बिना किसी लक्ष्य के स्थिर रखना, सिर्फ बैठे बैठे स्थिर रखना, इसके लिए अभ्यास लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा जा सकता, सभी सीख सकते हैं। थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए समय निकालें और प्रयास करें तो सब संभव है।
1: और किस तरह की डाइट या लाइफस्टाइल हेल्दी ब्रेन के लिए हमें फॉलो करनी चाहिए?
2: देखिए, डाइट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो भारतीय खान पान है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो अपने आप में संपूर्ण है, जो आपको हर चीज़ देता है। आपको ब्रेन के जो एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, जो आपको ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए, वो सब कुछ आपके डाइट में होते हैं। बट जैसे कि हमने देखा है, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड पे जा रहे हैं, तो वो फिर आपको ब्रेन के डेवलपमेंट में सही नहीं रहता है। आपको तो अखरोट, मैंने पहले भी बताया आपको, दिमाग की शेप का होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हरी सब्जियां जो होती हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं। तो उसको फॉलो करिए आप, अच्छा भारतीय खान पान पर ध्यान दीजिए।
1: तो जैसे कि जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप श्रोताओं को वर्ल्ड ब्रेन डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनका ब्रेन हेल्दी रहे।
0: देखिए, कहते हैं कि ब्रेन कैपिटल इज़ ह्यूमन कैपिटल। जो मस्तिष्क की पूंजी है वही जीवन की, इंसान की पूंजी है। तो मस्तिष्क का ख्याल रखें, आगे बढ़ें।
1: और डॉक्टर राहुल, आप क्या कहेंगे?
2: मैं तो यही कहूँगा कि जैसे आप अपने ब्रेन जो है आपके शरीर रूपी गाड़ी का एक इंजन है, जैसे आप अपने आप इंजन में बराबर से आप ऑयल डलवाते हैं, उसको आप ठीक रखने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी गाड़ी प्रॉपरली चले, ऐसे ही आप अपने ब्रेन पे भी ध्यान दीजिए, उसका डेवलपमेंट, उसमें कोई आघात ना लगे, उसमें कुछ विकार डेवलप ना हो, तो आप हमेशा अच्छा फील करेंगे एंड लास्टली स्ट्रेस भी कम होगा आपको।
1: तो दोस्तों, आज की चर्चा से यही संदेश निकल कर आता है कि स्वस्थ मस्तिष्क केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की ताकत है। समय पर पहचान, सही जानकारी, स्वस्थ जीवन शैली और सभी तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, यही है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल का वास्तविक उद्देश्य। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर मीना चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, और साथ में हैं डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव है। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित हुई। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश भर में 162 वंदे भारत रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार आईएनएस कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय संबंधों के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। ईरान पर अमरीका के हमले लगातार 11वें दिन भी जारी हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा ये हमले हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी और श्री अमरनाथ जी यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित रही। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने विश्व जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष।

0: अरे राहुल बेटा।
1: जी पापा जी।
0: इधर आओ जरा।
2: और हाँ साक्षी, तुम भी आओ, कुछ बात करनी है तुम दोनों से।
1: क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना?
2: हाँ सब ठीक है बेटा, बस एक बात समझानी थी तुम दोनों को जो स्कूल कॉलेज नहीं सिखाते।
0: देखो बेटे, दुनिया में लड़के बहुत मिलेंगे, पर अच्छा बेटा और अच्छा इंसान बनना तुम्हारे हाथ में है, और उसकी सबसे बड़ी पहचान है तुम एक लड़की से कैसे पेश आते हो।
2: और बेटा याद रखो, हर लड़की किसी की बेटी है, किसी की बहन है, जैसे तुम अपनी बहन की इज्जत करते हो ना, वैसे ही।
3: तीन बातें गांठ बांध लो बेटा। पहली बात इज्जत, लड़की से बात करो तो आंखों में आंखें डालकर साफ लहजे में करना, कमेंट पास करना, सीटी बजाना, पीछे से हंसना, ये मर्दानगी नहीं है बेटा, ये कमजोरी है। दूसरी बात हद, मतलब दोस्ती करो तो दोस्ती की तरह, प्यार करो तो इज्जत के साथ। ना का मतलब ना होता है बेटा, उसे बार बार मनाना, फोर्स करना, गुस्सा करना, ये प्यार नहीं है।
2: और तीसरी मदद, बस में, कॉलेज में, ऑफिस में अगर कोई लड़की दिक्कत में है तो मदद करो बेटा, वो मत बनो जो तमाशा देखे, बल्कि बेटा वो बनो जिस पर एक पिता अपनी बेटी को भरोसा करके उसके साथ भेज दे।
3: और सुनो, सोशल मीडिया पर भी वही इज्जत करना, किसी की फोटो पर गलत कमेंट, नंबर मांगना, पीछा करना, ये सब करके तुम सिर्फ लड़की को नहीं अपने घर की परवरिश को बदनाम करते हो।
2: बेटा एक दिन तुम भी किसी के दामाद बनोगे, किसी की बेटी के पिता बनोगे, तो आज जैसा व्यवहार करोगे कल वैसा ही तुम्हारे साथ होगा।
1: जी पापा जी।
3: शाबाश, मर्द वो नहीं जो डराए, मर्द वो है जो सुकून दे।
4: जी हाँ, मर्द वही है जो दूसरों को इज्जत दे, सम्मान दे, और साथ ही साथ सुरक्षा का भाव दे, और यही दस्तूर भी है। इसीलिए अगर बेटों का व्यवहार अच्छा होगा तो समाज अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, संस्कारी बेटे के साथ साथ परिवार का नाम भी रोशन होता है, और ऐसे बेटे सबकी नजर में बन जाते हैं एक हीरो।

जी हाँ, अपने व्यवहार से ही इंसान हीरो बनता है, लेकिन उसकी जरा सी लापरवाही और उसका असभ्य व्यवहार ही उसको हीरो से जीरो बनने में देर नहीं लगाते। इसीलिए हर माता पिता का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बेटों को सही सीख दे, सही तरीके से उनका लालन पालन करे, ताकि उनका व्यवहार लड़कियों और महिलाओं के प्रति सभ्य और शालीनता भरा हो। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से और जानते हैं कि कैसे माता पिता अपने बेटों का लालन पालन करें, ताकि वो गर्व से अपने बेटे के लिए कह सकें कि हाँ, यही है हमारा राज दुलारा।

0: विनीता जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसे देखिए इतना बिजी है कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं मिलता उसको, और इसीलिए वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी या तो मेड के हाथों में सौंप देते हैं या किसी क्रैच में बच्चा टाइम व्यतीत करता है। कहने का मतलब यही है कि माता पिता खुद बच्चे की परवरिश ना करके परायों पर थोप रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं?
1: परमेश्वर ने हमें बच्चा दिया है, उसके लालन पालन की जिम्मेवारी हमारी है
0: जी।
1: क्योंकि बच्चे ज्यादा अपने आप को व्यक्त नहीं करते, वो ज्यादा बोल नहीं पाते, तो उनके दिल के अंदर जो चोट लगती है, उनके जो छोटे नाजुक दिमागों में, दिल में चोट लगती है, वो चोट बहुत गहरा जख्म बन जाती है।
0: ओके, तो माता पिता ऐसा क्या तरीका अपनाएं जिससे वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छे माँ बाप साबित हो सके?

0: अच्छे माँ बाप बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारा विवाहित जीवन अच्छा हो
1: जी।
0: अगर हम विवाहित हैं और हम खुश हैं, सुखी हैं, चाहे थोड़ा हो, थोड़े में संतोष है हमारे पास, जरूरी है कि ऐसे वातावरण में ही बच्चे को लाया जाए
1: जी।
0: नहीं तो बच्चे को जन्म तो दे दिया लेकिन फिर या उसको सेवादार पर छोड़ दिया या खुद अलग हो गए, तो ये सही नहीं है। किसी भी बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करने का अधिकार माता पिता को नहीं है। जब ईश्वर हमें माता पिता बनने का अधिकार देता है तो ढेर सारी जिम्मेवारियां हमारी होती हैं, और वो जिम्मेवारियां तभी खत्म होती हैं जब हमारे जीवन का अंत होता है
1: जी जी।
0: तो इसलिए जब हम माता पिता बनते हैं तो सोच समझ के अपनी जिम्मेवारियों को होशो हवास में समझ कर ही ये कदम उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल, सोच समझ कर उठाए गए कदम न सिर्फ खुशियां लाते हैं बल्कि एक सुंदर परिवार भी बनाते हैं, जहां खुशियों की किलकारी के साथ साथ एक अपनापन और आपसी मधुर रिश्ता भी देखने को मिलता है। वनिता जी, आपसे करेंगे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले फिलहाल सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: विनीता जी, इस खूबसूरत गीत को सुनते सुनते मेरे जहन में कई परिवारों की तस्वीर सामने आ गई, जहां बच्चों के सामने रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, या फिर कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जहां बच्चों के सामने बैठकर शराब पी जाती है।
1: ऐसे वातावरण में जब हम बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं बिना किसी अनुशासन के, तो हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं बच्चे से? हम बच्चे को निर्देश तो देते हैं
0: जी,
1: बच्चे को दिशा तो दिखाते हैं, लेकिन बच्चा तो हमारे लवों को नहीं सुन रहा, हम क्या कह रहे हैं वो नहीं सुन रहा।
0: बिल्कुल,
1: वो करेगा जो वो देखता है या देखती है।
0: ओके,
1: जी हाँ, हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं। अगर हम तहजीब से बात करते हैं, अगर हम प्रेम पूर्वक अपने परिवार में रहते हैं, अगर हम अपने मन मुटाव प्यार और शांति से सुलझाते हैं, एक शांति का वातावरण अपने परिवार में रखते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम जैसे भी बात करते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है, वो बच्चा हमें बहुत गौर से देख रहा है
0: जी,
1: और वो वही करेगा या करेगी जो उसके माता पिता करते हैं। अगर माता पिता अच्छे हैं, माता पिता अनुशासन रखते हैं, माता पिता शांति प्रिय हैं, माता पिता शिक्षा पे विश्वास रखते हैं, माता पिता लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, सहायता करने में विश्वास रखते हैं, किसी को हेल्पिंग हैंड देने में विश्वास रखते हैं, अगर माता पिता घर में प्रार्थना का वातावरण रखते हैं, तो ठीक वैसे ही बच्चा भी करेगा, बच्ची भी करेगी, क्योंकि वो हमें देखते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम माता पिता की भूमिका में अपने आप को देखते हैं या हैं, तो हमको इस जिम्मेवारी का पूरा एहसास होना है।
0: बिल्कुल सही कहा विनीता जी आपने। जब तक इस बात का एहसास हमको नहीं होगा कि हमारे कांधों पर उन मासूम बच्चों का भविष्य टिका है, हम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे। सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जो हमसे बुजुर्ग हैं, उनकी गलतियों से हम सीख सकते हैं, जो हमसे बुजुर्ग हैं उनकी अच्छाइयों से हम सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो पहले पीढ़ी गई है उनसे हम सीख सकते हैं, हमारे माता पिता ने क्या गलतियां करी या क्या अच्छाइयां करी उनसे हम सीख सकते हैं, किताबों से, सलाह लेकर, काउंसलर्स से।
0: okay.
1: क्योंकि हर एक बच्चा फर्क होता है, तो किस तरीके से हम बच्चों का लालन पालन करते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। प्रिय मित्रों, प्रिय श्रोताओं, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे भविष्य का, चाहे वो देश का भविष्य

0: हो, समाज का भविष्य हो, माता पिता के हाथों में दिया है। हम सोचते हैं कि टीचर्स सुधारेंगे, लेकिन अध्यापकों के पास तो बच्चा केवल 6 घंटे होता है
1: जी।
0: बाकी 18 घंटे तो वो माता पिता के साथ घर में होता है। अब माता पिता घर में प्रेशर कुकर का वातावरण रखते हैं या प्रेम शांति का वातावरण रखते हैं, ये माता पिता के हाथ में है।
1: बिल्कुल।
0: कई बार तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि माता पिता बात ही नहीं करते बच्चों से, ना एक दूसरे से बात करते हैं, ना बच्चों से बात करते हैं, और करते भी हैं तो लड़ाई मार झगड़े का एक वातावरण होता है। तो प्रिय श्रोता, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझें, क्योंकि देश का भविष्य जो इस छोटे छोटे बच्चों की मुट्ठी में है, उसको सही दिशा दिखाना हम माता पिता का पहला कर्तव्य है।
1: जी हाँ, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से और सही दिशा में निभाने से न सिर्फ बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, बल्कि हमारा देश भी तरक्की की डगर पर आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं या मुश्किलों के तूफान में आप घिरे हुए हैं, तो आप हमारे काउंसलर से जरूर बात करें। हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा बात करने के लिए हमारा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। आप अपनी बात को फोन पर रिकॉर्ड करके भी हमको भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें इसी नंबर पर, यानी 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की शाम का वो खास प्रोग्राम जो कि डेडिकेटेड है हमारे यंग स्टूडेंट्स को और कैंपस लाइफ को। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। ये प्रोग्राम आपके लिए आता है हर बुधवार की शाम को 4 से 5 बजे के बीच में, और इसमें हर बार हम आपको ले चलते हैं नए कॉलेजेस में, हर बार आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक नए कोने से रूबरू कराते हैं। पिछले कुछ हफ्ते हमने सुना कि किस तरह से एडमिशन्स जो हैं, वेल मिशन एडमिशन को अगर आपने पार करना है तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपने इकट्ठा की, और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उस जानकारी को हमने आप तक पहुंचाया। हमारी सहयोगी जो है वो जाती हैं कॉलेजेस में, मिलते हैं वो लोग हमारे टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, प्रिंसिपल से, और आपके लिए ये तमाम जानकारी समेट कर लेकर आते हैं, और साथ ही लेकर आते हैं एक झलक उस कैंपस लाइफ की जिससे हम हमेशा जुड़े रहते हैं। एक बार फिर से हमारी सहयोगी जो है ऋचा वर्मा वो पहुंची हैं अदिति महाविद्यालय, और वहां पे की हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत। तो आइए जानते हैं उनसे कि आज उन्होंने आखिर उस कॉलेज के किस किस एंगल को कैप्चर किया है, वहां से क्या क्या जानकारी इकट्ठा की है, और साथ ही साथ उन्होंने वहां पे किन किन लोगों से की है बातचीत।
2: नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा, और आज अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में मैं

0: आई हूँ आदिति महाविद्यालय, यहाँ की एक टीचर मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं।
1: हेलो रिचा जी, मैं प्रोफेसर मंजू रानी और मैं अदिति महाविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर।
0: मैम, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर अपने पसंदीदा कोर्स को लेके बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, उन्हें उसी कोर्स में एडमिशन लेना होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उन्हें उस कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो आपकी सलाह उन्हें क्या रहती है?
1: मेरी सलाह यही है कि यदि उनको एडमिशन नहीं मिलता है अपने पसंदीदा कोर्स में, तो वो अपने साल को खराब ना करें और वो किसी ऐसे कोर्स को चूज करें जो आगे और उनके कैरियर को बेहतरीन बना सकते हैं। ईयर खराब ना करें वो अपना।
0: मैम, आज के समय में जब स्टूडेंट कोई कोर्स को चूज करता है तो वो अपनी रुचि को महत्व दे या फिर करियर में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस बात को लेकर अपना करियर चूज करे, अपना कोर्स चूज करे?
1: नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी यदि रुचि के साथ उसको अपना करियर भी बनाने को मिल जाए, या इन केस अगर रुचि का पसंदीदा उसको नहीं मिलता है अपना कोर्स, तो वो कोई ना कोई ऐसा डिसिप्लिन अपना चूज कर ले जिसमें वो आगे जाके अपने रुचि को भी ले सकता है और अपना करियर भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पर अपनी रुचि को लेकर डंप करके बैठ जाएगा। हो सकता है वो आगे, जैसे भाषा कहते हैं बेहतनीर होता है, तो आगे जाके उसमें इन्वॉल्व हो जाता है वो।
0: ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा बहुत बड़ी संख्या में। हम आपके अनुसार एक आदर्श जो स्टूडेंट है उसकी परिभाषा क्या होती है?
1: देखिए, बहुत बच्चे आए, बहुत बच्चे गए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे दिल दिमाग पर छाप छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं, वैसे तो सभी बच्चों को हम चाहते हैं कि वो धैर्यशील हों, परिश्रमी हों, लगनशील हों, और सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी टीचर के साथ, जो भी उनकी टीचर है, उनके साथ उनकी एक बॉन्डिंग हो, वो अपने आचार विचारों का उनके साथ आदान प्रदान करना सीखें ताकि वो एक दूसरे के सहायक हों। क्योंकि परिवार के बाद बच्चा जब बाहर निकलता है, बड़े कैंपस में जब वो एंटर करता है, तो वहाँ पर उनको प्रोफेसर्स मिलते हैं जो कि एक स्वच्छंद रूप में भी होते हैं और एक उनको स्किल के रूप में भी एक अच्छे टीचर के रूप में मिलते हैं, जो उनको ज्ञान वर्धन के साथ साथ चरित्र भी सिखाते हैं, संस्कार भी सिखाते हैं और धैर्य भी सिखाते हैं। तो बच्चों में ये धैर्य, लगन, श्रमशीलता होनी बहुत आवश्यक।
0: मैम, अगर आप स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हैं, तो जब आपने अपनी पढ़ाई की होगी उस वक्त एक अलग ही जमाना होगा, जो आजकल का जमाना है वो बिल्कुल ही अलग है। मैम, अगर ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक दिन के लिए आपको स्टूडेंट बनने का मौका मिले, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?
1: सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि काश हमारे टाइम में भी मोबाइल और इंटरनेट होता, क्योंकि उस समय हमने जो पढ़ाइयाँ की हैं वो किताबों के थ्रू की हैं। एक बुक नहीं मिली तो दूसरी बुक, एक लाइब्रेरी में नहीं मिली तो हम दूसरी लाइब्रेरी में गए, तो वो एक हमारा ऐसा परिश्रम था। के जमाने में जाना चाहूँ अपने टाइम में, तो मोबाइल या इंटरनेट एक बहुत अच्छा साधन है।
0: क्या बात कही है मैम आपने, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही बढ़ाती रहें और आपके स्टूडेंट्स बहुत ग्रो करें, हमारी यही शुभकामनाएं। हमें इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू रिचा जी।
0: बात करते हैं एक और टीचर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो के कार्यक्रम अल्फा जैन कैंपस कॉलिंग में।
2: थैंक यू। मैं डॉक्टर मनीष वत्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अदिति महाविद्यालय।
0: कॉलेज में कौन कौन से स्पोर्ट्स इस समय अवेलेबल हैं?
2: इस समय हम 12 गेम्स करवाते हैं अपने कॉलेज में, जिसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, योगा, टाइक्वांडो, वॉलीबॉल।
0: और सर, कॉलेज की अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं गेम्स में?
2: अचीवमेंट्स देखी जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेले हैं, कॉमनवेल्थ भी खेले हैं, एशियन गेम्स भी खेले हैं, और उसके साथ साथ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तो हर साल हमारा पार्टिसिपेशन रहता है, नेशनल में भी पार्टिसिपेशन रहता है, जो स्टेट्स होते हैं, इंटर कॉलेजिएट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिशन होते हैं, उनमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं।
0: सर, जब बच्चे खेलते हैं तो उनके लिए एक अच्छे कोच का होना बहुत जरूरी है, इस बात में कितनी सच्चाई है?
2: बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, वैसे ही कॉलेज में या स्कूल में आने के बाद अगर उसे सही ट्रेनिंग या कोचिंग मिल जाए तो वो और भी एक्सेल कर सकता है बच्चा।
0: तो आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि अदिति का नाम आप जैसे लोग जरूर चमकाएंगे।
2: थैंक यू।
3: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन जो है, इसमें आज हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची अदिति महाविद्यालय और वहां पे उन्होंने की किससे, अभी आपने सुनी उनकी बातचीत टीचर्स से जो उन्होंने वहां के टीचर्स से की। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जैसा कि टीचर मैम ने बोला कि बच्चे जो है छाप छोड़ जाते हैं, तो वेल सिर्फ बच्चे ही नहीं होते, टीचर्स भी जो है ना उनकी छाप हर छात्र के मन में जो है ना वो छूटती है। और कहते हैं ना, एक टीचर जो होता होता है उसका जो असर होता है वो पूरी ज़िंदगी रहता है, क्योंकि टीचर्स हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना सिखा जाते हैं, और अक्सर जो है ना एक कहना चाहिए कि दुनिया में बाहर जाके एक

दुनिया से डील करने से पहले जो सबसे आखिरी चीज़ें हम सीखते हैं वो हम अपने टीचर्स से ही सीखते हैं, और कॉलेज करता है ये वो काम जब आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ आपको तैयार करती है आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हमारा ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है उसी कैंपस लाइफ को, नाम है इसका अल्फाजिन कैंपस कॉलिंग। सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो।
2: म्यूजिकली योर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति आप सभी के साथ। आज हम पहुंचे कहां पे? अदिति महाविद्यालय। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची वहां पे। उन्होंने की वहां की टीचर्स से बातचीत और वहां के स्टूडेंट से की उन्होंने बातचीत। स्टूडेंट्स के पास बहुत देखा जाए तो एक कहना चाहिए एक खजाना होता है टैलेंट का, उसके साथ साथ उनके पास एक खजाना और होता है, वो होता है उनके सपनों का। और उसके लिए जो आत्मविश्वास उन्हें चाहिए होता है या फिर जो भी उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते उन्हें चाहिए होते हैं, वो देने का काम करते हैं हमारे कॉलेजेस, हमारे ये कैंपसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदिति महाविद्यालय पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा और आइए जानते हैं कि वहां पे स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने क्या बातचीत की।
3: मेरा नाम है ऋचा और अल्फा जिन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ अदिति महाविद्यालय और इस कॉलेज के स्टूडेंट्स से हम बातचीत कर रहे हैं और एक रैपिड फायर खेलते हैं। कौन है हमारे साथ पहले ये जान लेते हैं, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम गुंजन है, मैं अदिति महाविद्यालय थर्ड ईयर बी ऑनर्स सोशल वर्क की छात्रा हूँ।
3: गुंजन एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। ओके, टी और कॉफी?
4: टी।
3: बुक्स या मूवीज?
4: मूवीज।
3: क्रिकेट या फुटबॉल?
4: क्रिकेट।
3: सुबह जल्दी उठना या देर रात तक जगना?
4: सुबह जल्दी उठना।
3: ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग?
4: ऑफलाइन शॉपिंग।
3: अच्छा, मीठा या नमकीन?
4: नमकीन।
3: बीचेस और माउंटेन?
4: माउंटेन्स।
3: तो आपकी लाइफ पर अगर एक मूवी बने तो उसका नाम क्या होगा?
4: चिड़िया को उड़ने दो।
3: और इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा हमें?
4: इसमें एक स्ट्रगल देखने को मिलेगा कि अगर किसी को अभिनेता या अभिनेत्री बनना होता है तो उसको सोसाइटी के थ्रू क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और उस चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम करता है।
3: आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहते हैं?
4: मैं अभिनेत्री ही बनना चाहती हूँ।
3: क्या आपने अपनी लाइफ में इस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं?
4: हाँ, मैंने अक्सर चैलेंजेस फेस करे हैं कि अभिनेत्री क्यों बनना है, पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब में कुछ नहीं रखा है। बट मेरा मानना ये है जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो शायद वो हमारी सक्सेस की ओर एक पंख होता है।
3: अच्छा, कौन सी अभिनेत्री आपको बहुत इंस्पायर करती है?
4: आलिया भट्ट के अगर मैं मूवीज देखती हूँ तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं काफी सारी, जैसे हाईवे मूवी है, वो किस तरह से फ्रीडम चाहती है अपनी जिंदगी में, किस तरह से दुनिया का कोना कोना घूमना चाहती है। आलिया भट्ट की काफी सारी मूवीज इस तरह से इंस्पायर करती है। और अगर मैं आलिया भट्ट का कोई भी कैरेक्टर देखूँ, गंगूबाई हो गया या फिर हाईवे मूवीज में हो गया, तो वो उसको बखूबी तरीके से निभाती है।
3: से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू सो मच।
5: मेरा नाम कशिश है, मैं हिंदी जर्नलिज्म थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ आदित्य महाविद्यालय में।
3: आप जर्नलिज्म कर रही हैं तो आगे आपके क्या प्लान्स हैं?
5: जो हमारा कोर्स है इसमें बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें वर्क कर सकते हैं। पीआर है हमारा, एंकरिंग का है जो कि सबको लगता है अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हो तो आप एक एंकर ही बनोगे, बट मैं उन सबसे थोड़ा सा हटके करना चाहती हूँ, मैं एज अ आरजे वर्क करना चाहती हूँ।
3: क्या बात है, आप रेडियो जॉकी बनना चाहती हैं, तो देखिए एक मौका तो आपको मिल ही गया है कि अब आपकी आवाज जो है वो हर कोई सुनेगा। आज आप अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में हैं।
5: हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं अल्फा जन कैंपस कॉलिंग, मैं हूं आपकी होस्ट कशिश। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें फीडबैक दे सकते हैं 9868107070 पर। थैंक यू सो मच।
3: बहुत अच्छा बोला आपने कशिश, और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज में देखें। और आपको पता है आकाशवाणी में आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो हमारे लिसनर्स को भी सुनना चाहिए, कि जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, आपको रिटन टेस्ट देना होता है, ऑडिशन देना होता है, उसके बाद आप यहाँ आरजे बन सकते हैं। आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू सो मच मैम।
3: क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम मुस्कान है, मैं अदिति महाविद्यालय की बीए प्रोग्राम की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ।
3: अच्छा, सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है?
6: सक्सेस का हर किसी के लिए अलग अलग मीनिंग होता है, मेरे लिए भी इसका एक बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। लाइक इफ आई आस्क टू डिफरेंट पीपल, सो उन सबका अलग अलग मतलब होगा सक्सेस के लिए। किसी का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, किसी के लिए फ्रीडम मिलना, मेरे लिए ये दोनों भी है। बट इफ आई टेल यू, सो द मेन मीनिंग ऑफ सक्सेस इज टू मी इज कि मैं खुश रहूँ अपनी लाइफ में और जो मेरे आसपास है वो सब भी खुश हो और हेल्दी हो। लाइक दिस इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल टू मी।
3: क्या बात है, यानी कि सक्सेस का मतलब है कि सभी खुश हो और सभी अच्छे।

0: दिस इज़ गुड फॉर समवन. ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के प्रेशर में खुद को कुछ ना कुछ बदलें. सो अगर हम खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं किसी और से ऊपर, सो इट इज़ बेटर. अच्छी बात है कि हम अलग हैं उन लोगों से.
1: थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा.
0: थैंक यू मैम.
2: मेरा नाम दीपांशी है और मैं अदिति महाविद्यालय से BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता की थर्ड ईयर की छात्रा हूँ.
3: अपने आप को अगले 5 साल में आप कहाँ देखती हैं?
2: अगले 5 साल में मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह और एक IAS ऑफिसर की तरह देखती हूँ खुद को.
3: यानी आप UPSC का एग्जाम करना चाहती
2: हैं? हाँ जी बिल्कुल.
3: अच्छा, UPSC का एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है अभी तक आपकी, और आप जो हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं इस वक्त इस कार्यक्रम को, जो लिसनर्स, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए?
2: अभी तक जैसे मैंने तैयारी शुरू की है तो मतलब ये कि आपको पूरा उस पर फोकस्ड होके काम करना पड़ेगा. अगर आप अपना माइंड डाइवर्ट करते तो आप नहीं कर पाते. एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है. और सिर्फ ये नहीं कि आप लोग वीडियोस देख लें या फिर कुछ, आपको खुद से भी बुक रीडिंग करनी पड़ती है उसके बाद ही. और जैसे भी UPSC ने पैटर्न चेंज कर दिया है तो उससे भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है फिलहाल तो.
3: IAS बनके आप क्या चेंज करना चाहेंगे?
2: अभी जैसे जो मेरा रीजन है वो ये कि आज के टाइम पे जो लड़कियों को देखते हैं वो ऐसे देखते हैं कि कुछ नहीं करेगी, ज्यादा पढ़ाओगे हाथ से निकल जाएगी, भागेगी. तो मैं वो दिखाना चाहती हूँ कि अगर घर वाले सपोर्ट करते तो लड़की बहुत कुछ कर सकती है और पूरी सोसाइटी को चेंज करने की उसमें ताकत है.
3: कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, जैसे देखकर आपको लगता है अगर ये कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकती
2: हूँ? मूवी अभी मैंने रिसेंट में 12th फेल देखी थी, तो उसमें देखा कि वो इतनी मेहनत करके जब वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकता है तो उससे ज्यादा टाइम हमारे पास है, सोर्सेज हैं, तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और शायद कम टाइम में भी कर सकते हैं.
3: क्या बात है, आपको जीवन में बहुत सफलता मिले और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको एक IAS ऑफिसर के रूप में देखें. हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी.
4: कितनी हैरानी होती है ना देखकर कि आजकल ये जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, कितने ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितने ज़्यादा अवेयर हैं और कितना ज़्यादा जो है कहना चाहिए कि दुनिया से जुड़े हुए हैं और इतना कनेक्टेड जो है इश्यूज़ के साथ भी हैं ये, जितना कनेक्टेड आपस में रहते हैं ये. एनीवेज टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसके बावजूद जो सपने होते हैं ना उसका सॉफ्टवेयर किसी टेक्नोलॉजी से नहीं आ सकता. उसका सॉफ्टवेयर आता है तो केवल एक ही चीज़ से आता है और वो है इंसान की अपनी सोच से, उसके अपने ख्याल से. और ऑब्वियसली उसको पूरा करने के लिए जो चाहिए होता है ना वो मेहनत भी कहीं और से नहीं आती बल्कि खुद ही करनी पड़ती है. हमारे इन स्टूडेंट्स को इतने ढेर सारे सपने देखने के लिए और इतने बड़े बड़े लक्ष्य जो उन्होंने अपनी आंखों के आगे रखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो भी मेहनत करनी है उसके लिए, सब चीज़ों के लिए और आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ जो है मैं अपनी तरफ से, इस प्रोग्राम की तरफ से और रेनबो की तरफ से जो है वो देती हूँ. और आप सुन रहे हैं 102.6 आकाश रेनबो प्रोग्राम जो चल रहा है, नाम है उसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग. कैंपस लाइफ से जुड़ते हैं हम हर हफ्ते बुधवार के दिन सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पे 4 से 5 बजे के बीच में. और वेल इन्हीं सपनों के नाम हमारे प्रोग्राम का अगला सॉन्ग मैं प्ले करने जा रही हूँ. आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो.

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। अदिति महाविद्यालय पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा। और ये कॉलेज जो है 1994 में जो है दिल्ली के बवाना क्षेत्र में जो इस्टेब्लिश किया गया था, और इस कॉलेज का एक ही जो है सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि जो लड़कियां ग्रामीण परिवेश से आती हैं उनको हायर एजुकेशन का मौका जो है वो ज़रूर मिले। और ना केवल मौका मिला है बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ऊँचे ऊँचे सपनों की उड़ान भी भरी है। आइए जानते हैं कि हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा ने आगे स्टूडेंट्स से क्या बातचीत की।
1: नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और अल्फाजन कैंपस कॉलिंग के इस स्पेशल एपिसोड जहां हम एक कैंपस में विजिट करते हैं, आज मैं आई हूं अदिति कॉलेज और इस कॉलेज की बहुत ही खूबसूरत सी लड़कियों के बीच में हूं। क्या नाम है आपका?
2: थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अंजलि भारद्वाज है, मैं अदिति कॉलेज से हूं, अभी मैं थर्ड ईयर में हूं और मेरा कोर्स है बैचलर इन ऑनर्स ऑफ सोशल वर्क।
1: ओके, आप सोशल वर्क की स्टूडेंट हैं, तो ऐसा क्या होगा जो आप हमारे कंट्री के बारे में या आप समाज के बारे में बदलना चाहेंगी?
2: बिल्कुल, चेंजेस तो मैं बहुत सारे लाना चाहती हूँ और एक सोशल वर्क का काम ही होता है इनिशिएटिव लेना, तो मैं चाहती हूँ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सलूशन फ्री थेरेपीज के थ्रू सॉल्व कर सकूँ।
1: क्योंकि कहा कि आप मेंटल हेल्थ पर वर्क करना चाहती हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आपने भी देखी होंगी अपनी लाइफ में, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए होंगे, तो अगर आपकी लाइफ पर हम एक मूवी बनाएं जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे तो उसका नाम क्या रहेगा?
2: डोंट गिव अप।
1: अच्छा, आपने कहा कि आप मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहती हैं और कहते हैं कि जो चीजें हम खुद नहीं कर सकते वो दिमाग की शक्ति हमसे करवा देती है। अगर आपको एक जादुई शक्ति मिल जाए, आपके अंदर कोई मैजिकल पावर आ जाए, कोई सुपर पावर्स आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि आप फिर क्या करना चाहेंगी, क्या बदलना चाहेंगी?
2: मेरे हिसाब से सबकी लाइफ अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है और उसके सोल्यूशन उनके हिसाब से अलग है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग बिग मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि मैं लोगों को करें एम्पावर कर सकूं सो दैट वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके किसी की हेल्प के बिना।
1: कोई एक ऐसा गाना बताइए हमें जो आपको डिफाइन करता हो, जो आपको बताता हो।
2: मुझे क्या बेचेगा रुपया बाबा।

0: बहुत बहुत बढ़िया, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: एक और बहुत ही प्यारी सी लड़की हमारे साथ है, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सौम्या पांडे है, मैं बी ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता की चौथे वर्ष की अदिति महाविद्यालय की छात्रा हूँ।
0: तो इस कॉलेज में आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
1: वैसे सबका ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल का होता है, पर मैं पहला बैच मेरा ऐसा जो मैंने 4 साल का किया है, तो यहाँ पे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और जो एक स्टेज फेयर मुझे था वो आके यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, और यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, बहुत डेवलप किया है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक आपके साथ एक गेम खेलते हैं हम, ठीक है? दिस और दैट। ओके, तो आप उड़ना पसंद करेंगी या इनविजिबल होना?
1: उड़ना।
0: आप मोबाइल के बिना रह सकती हैं या इंटरनेट के बिना?
1: मैं मोबाइल के बिना रह सकती हूँ।
0: लेकिन इंटरनेट के बिना नहीं?
1: नहीं।
0: ओके, माउंटेन्स और बीचेस?
1: माउंटेन्स।
0: आप अपना भविष्य देखना चाहेंगी या अपने पास्ट को चेंज करना चाहेंगी?
1: भविष्य।
0: और कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें बस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं और उन्हें लगता है कि यही परम सत्य है। लेकिन चलिए जानते हैं इस प्यारी सी लड़की से कि ये सच है या एक केवल एक मिथ है। अच्छा, लोग कहते हैं कि वन नाइट फाइट करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ये मिथ है रियलिटी है?
1: ये मिथ है, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और कोई सालों से पढ़ रहा है और आप वन नाइट में कर लोगे, आप पास हो सकते हो, बट आप उसमें मतलब जीत नहीं सकते, आप उसको मतलब टॉपर नहीं बन सकते हो।
0: अच्छा, एक और मिथ है कि जब हम कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पर हमारी आके एक अलग तरीके की फ्रीडम होती है, और उस फ्रीडम में हम इतने खो जाते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं यहाँ पर, और दोस्त हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। तो एक मिथ ये भी कहता है कि जितने ज्यादा दोस्त होंगे ना उतने ज्यादा आप खुश रहेंगे।
1: पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज में मैंने भी बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाए हैं। मेरे जूनियर्स के साथ मेरा बॉन्ड ज्यादा अच्छा रहा है, बट बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं रहा है, पर फिर भी 4 साल मैंने बहुत अच्छे से बिताए हैं।
0: ओके, अच्छा, एक मिथ ये भी कहता है कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आपका पढ़ाई में कभी ध्यान लग ही नहीं सकता, इस बारे में आप क्या कहती है?
1: मैं यही कहूंगी, ये भी एक मिथ है। अगर मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं पढ़ रही हूँ तो शायद मैं उसमें पढ़ सकती हूँ बैठ के। ये मेरा मेरे फोकस पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी देर पढ़ रही हूँ।
0: एक ऐसा मिथ जो हम सभी को जरूर जानना चाहिए एक स्टूडेंट से, और वो ये है कि द फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस।
1: ये एक रियलिटी है, क्योंकि जब हम फेलियर आता है हमारी लाइफ में तो हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हम उससे बेटर करने का, और हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं अपने सक्सेस के लिए।
0: यानी फेलियर इज इम्पोर्टेंट?
1: या एब्सोल्युटली।
0: क्या बात है सौम्या, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, सीखने का मौका मिला, और जो हमारे साथ में जो स्टूडेंट सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो भी जरूर उनके दिमाग में अगर ये मिथ्स हैं तो वो जरूर इन पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
1: थैंक यू।
0: क्या नाम है आपका?
2: हेलो, मेरा नाम तनुश्री है, मैं अदिति महाविद्यालय के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ, बी ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार थर्ड ईयर।
0: तो आपने जर्नलिज्म किया है, तो आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके?
2: बहुत सारी चीजों में मतलब मेरे को इंटरेस्ट है, तो लाइक जैसे क्राइम रिपोर्टिंग में भी है, एंटरटेनमेंट में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लाइक मैं तो लाइक मेरा उस फील्ड में भी है, लाइक एक्टिंग एंड ऑल भी मैं कर सकती हूँ।
0: अभी आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर अक्सर तौर पर युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो होती है ट्रोलिंग की। आपको क्या लगता है कि जैसे ट्रोलिंग की समस्या है उसे कैसे डील करें वो लोग?
2: देखो, मैं ना ट्रोल पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, बिकॉज आई थिंक उसमें मेरा टाइम जा रहा है, मेरी इमेजिनेशन है, और जो मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ उसको मैं अपनी तरह ही प्रेजेंट करूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि मेरा व्यू दूसरों को दिखे। तो आई थिंक उस पर ध्यान ना देके मैं अपने कंटेंट को और बेटर करूंगी और अपने ट्रोलर को अपने फॉलोअर्स में चेंज करूंगी।
0: आपका बहुत ही अच्छा विचार है, ठीक है, केवल एक लाइन में हम कुछ सवालों के आपसे जवाब चाहेंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो, जैसे कि जब एक हीरोइन की एंट्री होती है तो पीछे बैकग्राउंड में एक गाना बजता है, तो वो गाना कौन सा होगा?

0: बहुत ही बढ़िया म्यूजिक और बहुत ही बढ़िया गाना। तो यानी आप भी बनी की तरह उड़ना चाहती हैं, गिरना चाहती हैं, उठना चाहती हैं, लेकिन रुकना नहीं चाहती।
1: यस
0: क्या बात है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे सपने पूरे हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूँ मैं स्वाति आप सभी के साथ। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची अतिथि महाविद्यालय। वैसे इस बहाने ना, इस प्रोग्राम के बहाने हमें एक वो काम करने का मौका मिलता है जो अक्सर हम में से बहुत से लोग करना चाहते हैं, और वो ये है कि जहाँ से हम स्टूडेंट बन के निकले हैं उन्हीं कॉलेज में हमें वापस जाने का मौका मिलता है, और उसके साथ साथ ये देखने का मौका मिलता है कि किस तरह से दुनिया आगे बढ़ गई है, किस तरह से दुनिया बदल गई है, और यही एक्सपीरियंस करते हैं हम इन्हीं कॉलेजेस में जाकर। और हर बार ले आते हैं आपके लिए एक नया कॉलेज, अतिथि महाविद्यालय एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। और ऋचा पहुंची वहां पे, और वहां पे की उन्होंने वहां की प्रिंसिपल से बातचीत, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आज मैं आई हूँ अतिथि महाविद्यालय। इस वक्त कॉलेज की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर नीलम राठी मैम मेरे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
2: धन्यवाद ऋचा
1: मैम। क्योंकि अभी एडमिशन्स होने वाले हैं और एडमिशन्स को लेकर कॉलेज की क्या तैयारी है?
2: एडमिशन्स को लेकर कॉलेज ने अपनी बिल्डिंग को नए सिरे से रेनोवेट करने की कोशिश की है, नए कोर्सेज पर हम लोगों ने बहुत तैयारी की है। इसके साथ साथ सभी टीचर्स का वर्कलोड, टाइम टेबल, और कैसे हम छात्रों को कॉलेज तक लेकर आए, उसके लिए जो दूर दूर से छात्राएं आएंगी उसके लिए हम लोगों ने डीटीसी के मैनेजर से भी बात की है, और यहाँ के जो डिपो मैनेजर हैं उनसे हमारी मीटिंग भी हुई है, जिसमें हमने कुछ नए रूट्स पर लेडीज स्पेशल बसेज चलाने की बात भी की है।
1: मैम जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारा क्योस होता है, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन आप क्या सलाह देना चाहेंगी एक प्रिंसिपल के रूप में कि बच्चे जब एडमिशन के लिए आए तो उन्हें किन इम्पोर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
2: मुझे लगता है तीन चीजें उन्हें मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए। प्रथम तो कि ये देखें कि वो जहाँ से आ रहे हैं वहां से कॉलेज की दूरी कितनी है, उनको आने जाने में कितना समय लगेगा। दूसरी बात कि जो कोर्स वो लेना चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में है या नहीं है, और तीसरे और सबसे जहाँ अच्छी फैकल्टी हो उस कॉलेज को उन्हें चूज करना चाहिए। तो इन तीन बातों पर वो ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके कैरियर के लिए बहुत बेहतर रहेगा।
1: मैम कॉलेज में अतिथि महाविद्यालय में इस वक्त कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, और क्या इस साल हम कुछ नए कोर्सेज की उम्मीद कर सकते हैं कॉलेज में?
2: अभी तक अतिथि महाविद्यालय में जो कोर्सेज हैं उसमें बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम है। इसके अतिरिक्त हमारे पास बीएलएड जो 4 वर्ष का कोर्स है जिसमें बीए प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग एक साथ दी जाती है, वह कोर्स है। पत्रकारिता ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, और इसके अतिरिक्त बीए प्रोग्राम में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, होम साइंस है जिसे अभी कम्युनिटी साइंस के नाम से एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस होगा वह है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास है।
1: मैम जब बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं तो उस वक्त वो सबसे कॉमन गलती क्या करते हैं आपके अनुसार?
2: मुझे लगता है कि जब एडमिशन ले रहे होते हैं स्टूडेंट वो एक तो फॉर्म भरने में गलती करते हैं। फॉर्म भरने में गलती ये करते हैं कि जब वो साइबर कैफे में जाते हैं एडमिशन के लिए तो साइबर कैफे वाला बहुत इजी वे चाहता है, जैसे वो कहते हैं कि कोर्स कौन सा ऑप्ट करना है तो वो ऑल कर देते हैं, उसमें पर्टिकुलर किस कोर्स में जाना है उसको चूज ना करके वो ऑल कर देते हैं। और उससे और दूसरे ऐसे ही जब कॉलेज की च्वाइस भरते हैं तब भी वो ऑल कर देते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान होता है। हर कॉलेज में उनका नाम चला जाता है लेकिन मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए जब भी वो फॉर्म भरें सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि वो अपने सेलेक्ट जो इस कोर्स में लेना चाहते हैं वही कोर्स भरें, और जिन कॉलेजों में उनके वो सचमुच में प्रेफरेंस चाहते हैं उन्हीं कॉलेजों की प्रेफरेंस भरें। ये तो एक कॉमन एडमिशन के लिए सभी छात्रों के लिए है। इसके अतिरिक्त जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं वो भी दो तरह से बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो जो दिल्ली के ओबीसी शेड्यूल में जो आते हैं उसमें कुछ कास्ट ऐसी आती हैं जो दिल्ली स्टेट के शेड्यूल में है, सूची में है, लेकिन वो केंद्र की सूची में नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए उन जाति के छात्रों को कि वो जब आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वो ये देखें कि अतिथि महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है और उसमें केवल केंद्रीय आरक्षण

0: सूची ही लागू होती है। तो ये बहुत ध्यान रखें। और दूसरे ये भी ध्यान रखें कि ओबीसी का सर्टिफिकेट केवल और केवल वही वैलिड है जो कि 31 मार्च 2026 के बाद का बना हुआ होगा, अर्थात अप्रैल ऑनवर्ड्स जो सर्टिफिकेट होगा वही एडमिशन में ओबीसी का लागू।
1: मैम जैसे कि बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन अगर उनके साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्या कॉलेज उन्हें कोई स्कॉलरशिप या कोई पैसे की मदद या कोई इस तरह की कोई सहायता उन्हें देता है?
0: देखिए जहां तक है हमारे पास सभी स्कॉलरशिप्स हैं जो केंद्र की सूची की हैं, जो केंद्र की स्कॉलरशिप्स हैं, जो स्टेट की स्कॉलरशिप्स हैं, ये इन दोनों स्कॉलरशिप का हमारी छात्राओं को फायदा मिलता है। इसके साथ साथ हमारी जो शिक्षक हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी ऐसे छात्रों को जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं लेकिन उनकी परसेंटेज अच्छी है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी गोद ले लेते हैं। मतलब हम कई ऐसे छात्रों की हमारे शिक्षक और कर्मचारी फीस भरते हैं, साथ ही पूरे साल भी कई बार उनकी फाइनेंशियली मदद करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है।
1: हम जो न्यू स्टूडेंट कॉलेज में आना चाहते हैं उनके लिए आदिति महाविद्यालय की प्राचार्य होते हुए प्रिंसिपल होते हुए आपका उनके लिए क्या मैसेज है?
0: मेरा उनके लिए मैसेज है कि वो आदिति महाविद्यालय में प्रवेश लें। यहाँ की शिक्षिकाएं और कर्मचारी बहुत ही सक्षम है, वो अनुशासन बनाए रखें और साथ ही आत्मनिर्भर और संस्कारवान बनने की दोनों की ही प्रेरणा आदिति महाविद्यालय में मिलती है। और केवल प्रेरणा नहीं, हम ऐसी अनेक कक्षाएं आयोजित करते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन के लिए भी छात्रों को गाइड किया जाता है, जैसे यूपीएससी की, बैंकिंग की, सीए की, इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए भी हमने अपने यहाँ पर सोसाइटीज बनाई हुई हैं और हमारे शिक्षक उनको समय समय पर गाइड करते हैं। तो इसीलिए आदिति में आए, आत्मनिर्भर बने, शिक्षित बने और संस्कारवान बने, ये मेरा संदेश है आने वाले छात्रों के लिए।
1: मैम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद ऋचा आदिति महाविद्यालय को चूज करने।
2: अभी आपने सुनी हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा की बातचीत और ये बातचीत उन्होंने की दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज आदिति महाविद्यालय की प्रिंसिपल से। इसी तरह से हर बार आपके लिए लेकर आते हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक नई बात, एक नया कॉलेज, एक नया कोना। एक बार फिर से आपके लिए अगले हफ्ते ये प्रोग्राम जो है वो हाजिर होगा और आपके लिए फिर नई जानकारी लेकर आएगा। फिलहाल आज का अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। समय था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

नमस्कार, नीचे पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देशभर में 162 वंदे भारत रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार आईएनएस कादम्बा नौसेना बेस पर माहिंग श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय संबंधों के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार 11वें दिन भी जारी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा ये हमले हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी और श्री अमरनाथ जी यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित रही। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश किया। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने विश्व जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी में ये जो वाणी आप सुन रहे हैं वो है मस्त पलंग आरजी श्वेता की वाणी। स्वागत है आप सभी का 102.6 एफएम रेनबो पर। इस फ्रिक्वेंसी को आप सुन रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, और अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप जुड़े हुए हैं अलग अलग स्टेट से। साथ ही जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ हमारी न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू भी। भाई प्रोग्राम तो शुरू हो चुका है सिटी लाइट्स। सिटी लाइट्स में होती है कुछ दिल्ली एनसीआर की चटपटी खबरें, कुछ ऐसी बातें जो होती हैं आपके लिए एकदम जानकारी से लबरेज। एंटरटेनमेंट का खजाना होता है सिटी लाइट्स का प्रोग्राम। तो चलिए क्यों ना हम तुम चले एक ऐसी रास्ते पर जहां पर आपको और मुझे बहुत सारी बातें तो सुनने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी, देखने के लिए भी मिलेंगी, और क्या पता आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने उनके साथ वहां घूमने भी जा पाए या फिर अकेले यूं ही चल पड़े।

बताइए आपका क्या ख्याल है, कहाँ घूमने जाना चाहते हैं या फिर क्या सुनना चाहते हैं आप मेरे यानी कि मस्त मलंग आरजे श्वेता के साथ। चलिए भाई, अगर दिल्ली में अगर आपको कोई भी पीसफुल और फैमिली फ्रेंड स्पॉट ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम एक ऐसी जगह जहाँ आप जाकर मुझे थैंक्स ज़रूर करेंगे। एक ऐसा पार्क जो बस आप जब जाएंगे ना वहाँ तो आपको दिखेगा, अरे वाह यहाँ पे भी लकड़ी का ये सामान बना हुआ है, यहाँ पर भी ये लकड़ी से बैम्बू से बना हुआ है, वाह क्या नक्काशी की हुई है, मज़ा ही आ गया देखने के लिए। हाँ जी, एक ऐसा पार्क जिसका पूरा का पूरा थीम बैम्बू से बना हुआ है और यहाँ एक सुंदर सी लेक के पास आप बैठकर ठंडी हवा तो महसूस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये लेक इतनी लंबी है कि आप इस व्यू को देखकर इतना एंजॉय करेंगे, वहाँ जब आप बैठ जाएंगे ना आपको कहीं गोवा या मुंबई जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर बैठ कर आराम से इस लेक का एकदम मस्त वाला व्यू देख सकते हैं। और यहाँ जितने भी झूले हैं ना, ओ हो, उन झूलों की क्या कहूँ मैं बात, वो सब लकड़ी से बने हुए हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है और आप जब यहाँ जाएंगे तो बस ऐसा लगेगा कि ओए होए कौन सी जगह आ गई हूँ मैं, कौन सी जगह आ गया हूँ मैं या कौन सी जगह आ गए हैं हम। हाँ, बता रही हूँ जगह का नाम, देखिए कैसे कैसे बेचैन हो रहे हैं ना, एकदम बच्चों के लिए कोई जगह मिल जाए तो पेरेंट्स की तो बल्ले बल्ले हो जाती है बिल्कुल। तो ये है बंसेरा पार्क, और बंसेरा पार्क जो है यहाँ पर आप ज़रूर जा सकते हैं, यहाँ पे जाइए। और यहाँ कैसे जाएंगे आप, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा सराय काले खान और निज़ामुद्दीन, ये है पिंक लाइन में आपको ये मेट्रो स्टेशन आप जा पाएंगे। अच्छा, बाहर से आप देखना चाहते हैं बड़े आराम से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंदर से व्यू देखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको बस 50 रुपीज़, हाँ जी एंट्री से 50 रुपीज़ है, इतना तो चलता है ना बॉस, इतना तो हम आराम से खर्च कर सकते हैं। हाँ, वहाँ जाइए, इंजॉय कीजिए, अपनों के साथ जाइए, पेरेंट्स हैं पेरेंट्स के साथ जाइए, अगर बुजुर्ग पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ जाइए, उनकी भी

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, मस्त मलंग आरजे श्वेता के साथ। और जो ये टाइम है ना, ये इवनिंग का टाइम, ओहो क्या मस्त टाइम होता है। अच्छा, मौसम भी अच्छा हो गया है तो आप बाहर आराम से निकल सकते हैं। अब बाहर जाना है तो आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी बहुत सारी जगह। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार होंगी और ढेर सारी बातें। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वैसे लाल पीली आंखियां क्यों करने के लिए मैं कह रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बच्चे जो है ना वो गुस्से में आ जाते हैं जब उन्हें कहीं बाहर घुमाने नहीं लेके जाते हैं। लेकिन आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहीं दो दो ऐसी जगहों के नाम जहां पर आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं और फिर वहां पर वो जाकर हो जाएंगे बहुत ज्यादा खुश। लेकिन वो बात बताने से पहले आप पेरेंट्स के लिए है एक खास खबर। हाँ जी, एक खास खबर ये है कि नगर निगम ने जो है मिशन विकसित भारत 2047 के तहत स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर एक और कदम बढ़ाया है। और वो कदम किस तरफ बढ़ाया है, शहर भर में नए पर्यावरण अनुकूल कूड़ेदान लगाकर। हाँ जी, बहुत ही अच्छे से कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं जहां पर वो लाल नीले पीले काले ये कूड़ेदान आपको जहां दिखते थे वो प्लास्टिक के दिखते थे, पर अब प्लास्टिक से हमें अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले उन्हीं से छुटकारा पाना होगा। तो ऐसे में कुछ इस तरह के कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं जो प्लास्टिक के नहीं है। शहर भर में नए पर्यावरण अनुकूल कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं ताकि बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके और एक बार इस्तेमाल होने के वाले जो प्लास्टिक के उपयोग वाले कूड़ेदान है या उन सब चीज़ों को कम किया जा सके। अब इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ सार्वजनिक स्थानों को बढ़ावा देना है, कचरे का जिम्मेदारी पूर्वक निपटान करना है और इसके साथ साथ प्लास्टिक के प्रति जागरूक राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को समर्थन करना है।

कहते हैं ना कि आज किए गए छोटे से बदलाव कल बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो क्या आपने भी कहीं दिल्ली में आसपास आजकल में देखे हैं ये नए कूड़ेदान? अगर देखे होंगे तो बताइएगा जरूर। फिलहाल आप सबके लिए एक बेहतरीन सा गाना जहां पर आप ठुमक सकते हैं। थोड़ा इवनिंग का टाइम है, कुछ ऐसा है, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा सा हाथ पैर हिला लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा अच्छा लगेगा।

बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले भाई, बल्ले बल्ले मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली वालों आपकी तो बल्ले बल्ले ही हुई भी है। और देखिए ना, अब आपके लिए अगली खबर लेकर आई हूँ जहाँ आप जा सकते हैं और एक नहीं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खरीद सकते हैं। एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा एक ऐसा बाजार जहाँ पर आप ले सकते हैं हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर, हैंडलूम, टेक्सटाइल्स, रक्षाबंधन गिफ्ट्स, हरियाली तीज का कलेक्शन और सावन स्पेशल शॉपिंग भी। कहाँ पर हो रही है ये सब चीजें तो बता देती हूँ। कारीगरी बाजार लग रहा है दिल्ली 2026, ये आ चुका है दिल्ली में, आ गया है कारीगरी बाजार आ गया है। और दिल्ली वालों, अपने शॉपिंग लवर्स के लिए तो भाई गुड न्यूज है ही। अपनी लिस्ट बना लीजिए जरा अच्छी सी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली, ये 15 तारीख से शुरू हो चुका था, मैं आपको बताया था आपको लास्ट वीक भी, और ये 25 तारीख तक चलेगा।

11 बजे से स्टार्ट होकर 8:30 बजे शाम तक आप इस बाजार में घूम सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। भाई अपने लोकल आर्टिस्ट को ना हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और घर ले जाओ एक अलग सा यूनिक सा हैंडमेड प्रोडक्ट। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स मस्त मरंग आरजे श्वेता के साथ। चलो चलो चलो चलो जल्दी जल्दी गाड़ियों में बैठो, फटाफट चलते हैं, कुछ खरीदारी कर लेते हैं।

0: दो बजे रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

पहुंच बढ़ाई है, जिसमें आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जो आज की पीढ़ी है उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने पैर पसारे हैं और आकाशवाणी के साथ हम सबका एक गहरा नाता है। और वो नाता इसलिए भी है क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं आकाशवाणी को, रेडियो को, किसी ना किसी रूप में हम जुड़े हुए हैं इस ब्रॉडकास्टिंग डे से। क्योंकि हमारे दादाजी की बात करें, नाना की बात करें, दादी की बात करें या नानी की बात करें, चाचा चाची, बुआ मौसी, जिस मर्जी की बात करें, चाहे पड़ोसी आंटी की बात करें, वो भी तो खबरें लेकर आती थी यही रेडियो सुन सुन के। अरे पता है उस शहर में बाढ़ आ गई है, पता है कहाँ से पता चला, कैसे कैसे मौसी कहाँ से पता चला, रेडियो में आकाशवाणी में बताया है न्यूज़ में अभी, तो देखो वहाँ जाने का अगर तुम्हारा प्रोग्राम बन रहा है तो मत जाना। और इसी तरह से आकाशवाणी घर घर तक पहुँचा, हर एक दिलों तक, हर किसी के दिलों तक पहुँचा है आकाशवाणी। इस आकाशवाणी ने जब एंट्री मारी ना हम सबकी लाइफ में, उसके बाद हम सबकी लाइफ में कुछ खास हुआ है। आई एम श्योर आप सबकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ खास हुआ होगा। आकाशवाणी में पहले फिल्मी सॉन्ग्स आते थे, फिर उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने लगी, रूबरू होने लगे हम आपसे, किसके ज़रिए, सिर्फ और सिर्फ इस वेव्स के ज़रिए। ये जो आकाशवाणी की वेव्स हैं, एयर वेव्स, हाँ जी, इन्हीं की एंट्री होती थी आपकी और हमारी लाइफ में। और इसके लिए ये एक गाना आप सबको डेडिकेट कर रही हूँ। आप सभी को ब्रॉडकास्टिंग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स मस्त मलंग आरजी श्वेता के साथ। और टाइम जो है ना वो भागता चला जा रहा है और कह रहा है कि जल्दी जल्दी से ना फटाफट बता दो कि क्या क्या आइटम्स रह गए हैं अभी सिटी लाइट्स में। हाँ जी, बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे अब अगली जो मैं खबर बताने वाली हूँ फिर से बच्चों के लिए है। तो दिल्ली नगर निगम ने कालका जी के नेहरू एन्क्लेव में एक बहुत ही बढ़िया सा बाल उद्यान खोला है, यानी कि चिल्ड्रंस पार्क खोला है। मैंने कहा था ना एक और जगह बताऊंगी बच्चों के लिए, खुश हो जाइए पेरेंट्स भी और बच्चे भी। अब खेल जो है ना उनको लेकर जितने भी चिल्ड्रंस पार्क होते हैं

यहाँ पर आप बड़े आराम से निश्चिंत होकर जा सकते हैं, अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, और ये बच्चों के हंसने खेलने और घूमने फिरने के लिए एकदम सही जगह है। जबकि परिवार नेहरू एंक्लेव, हाँ जी, नेहरू एंक्लेव कालका जी में एक साथ बहुत कुछ खूबसूरत पलों का आनंद ले सकते हैं जितने भी परिवार के लोग हैं। अब आप जाइए, फैमिली मेम्बर्स जाइए, बच्चों के साथ जाइए, उन्हें खेलते हुए मुस्कुराते हुए देखकर आप भी

संरक्षण में अधिनियम 2015 बच्चों की देखभाल और संरक्षण पर भी केंद्रित है। तो ये कानून पर ये सुनिश्चित करने की मदद करते हैं कि स्कूल बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से जरूर जरूर ले। और फिर देखिए उसके बाद स्कूल जब इतना ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, आपके बच्चे स्कूल जाने से बिल्कुल भी नहीं डरने वाले हैं और ऐसे में उनका मन वहाँ पर ज़रूर लगेगा और अच्छे से लगेगा।

और हम सब ने अपने अपने दिलों पे लिखा हुआ है एक ऐसा नाम, अपने तिरंगे का नाम। हाँ जी, मैं अपने तिरंगे की बात कर रही हूँ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश की आज़ादी, एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। जब भी तिरंगा लहराता है, करोड़ों भारतीयों के मन में गर्व, सम्मान और देशभक्ति की भावना जाग उठती है। हर साल

और अब वक्त है आज के मुख्य समाचारों का। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों, भारत की अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने विश्व जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

और अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है सिर्फ हमें मैसेज, जी हाँ, और आपको बता देना है कि किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, जी हाँ, हर तरीके से स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या एफर्ट करते हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब हमारे पास किस किस के मैसेज आ गए हैं। आओ, आ गए हैं हमारे पास अनिल शर्मा जी, कह रहे हैं सरिता विहार से कि मैं अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए इसे व्यस्त रखता हूँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि जब ये खाली होता है ना तो खुरापाती हो जाता है, दिल दिमाग को परेशान करता है। और कम से कम वरिष्ठ उम्र में अपने मस्तिष्क को व्यस्त रखने का काव्य लेखन, शेर शायरी, कविताएं, ये दिमाग को काफ़ी हद तक स्वस्थ रखते हैं। बहुत बढ़िया। और ये लिख रहे हैं कि तकरीबन 70 वर्ष में जब मस्तिष्क स्वस्थ है तब तक स्वस्थ मैं शरीर को खुद भी महसूस करता हूँ। बिल्कुल, जब हमारा दिमाग स्वस्थ होता है तो फिजिकली भी हम कितना अच्छा फ्रेश फील करते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और बहुत अच्छा कहा कि अपने आप को बिजी रखना अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और इसके अलावा नीचे से स्टार्ट करती हूँ, है ना, नीचे से स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो नीचे वाले नीचे चले जाते हैं, ऊपर वाले आते रहते हैं और नीचे वाले नीचे चले जाते हैं, इसलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं मैसेज लेना। यहाँ पर हम ले लेते हैं रवि जोशी जी का मैसेज, और ये लिख रहे हैं कि कैसी हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ रवि जी, और मेरे से ये मैसेज है, और आपको मुझे बताना कि आप कैसे हैं और आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने ब्रेन की हेल्थ के बारे में आप क्या करते हैं, किस तरह से अपने आप को, बाद में मैं तो बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप क्या क्या करते हैं ये आप मुझे ज़रूर बताइए। इसके अलावा हमारे पास मैसेज आ गया है राजकुमार के संतानी का, महाराष्ट्र से, और ये लिख रहे हैं कि मैं कैसी हूँ, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बातचीत सब कुछ बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज आ गया है मन को शांत रखने के लिए FM रेनबो रेडियो सुनना चाहिए और FM के गाने बहुत ही बहुत सही बज रहे हैं, और मतलब कि कितना अच्छा लगता है ना कि ये मैसेज आया है कुमार गौरव इंदौर से। और क्या बताएं, जब हम आप लोग इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हो ना तो बोलना ही भूल जाते हैं कि मुझे बोलना है क्या था। चलिए अगला ले लेते हैं, नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाले से लिख रहे हैं गुड इवनिंग शुभ संध्या मैडम जी, आज सुनने में लेट हो गया हूँ, टॉपिक नहीं पता चल रहा है, हाजिरी लगा दी है गीत एकदम सुपर चल रहे हैं, अभी आपको बताते हैं टॉपिक क्या चल रहा है, बिल्कुल अभी बताते हैं नरेंद्र। और हम पहले मैसेज ले लेते हैं यहाँ पे दीपा बिजनौर से, हमेशा आप ये लिख रहे हैं कि हमेशा आपने आपको सुशिक्षित रखने के एक ही तरीका है, ज़्यादा ना सोचें और मन में अच्छे विचार ही रखें, कोई आसपास आपके क्या कर रहा है सिर्फ उस पर ध्यान ना दें, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा अच्छा सोचें, पॉजिटिव थॉट्स, है ना, इनफैक्ट आप कहना चाह रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स, तो बिल्कुल वो तो पॉजिटिव थॉट्स हमें रखनी है, पॉजिटिव अपने आप को रखना है, हमें हमेशा अच्छा सोचना है, ये भगवान ने हमें इतना ब्लेस किया है ना, भगवान ने हमें आज का दिन दिखाया है, इतनी अच्छी सांसें दी हैं, इतना सुंदर शरीर दिया है, और आज आपसे बात करने का मौका दिया है, यहाँ स्टूडियो में बैठने का मौका दिया है, आपको बोलने का लिखने का मौका दिया है, मुझे सुनने का, यहाँ पे देखने का, आपके पसंदीदा गीत चलाने का मौका दिया, तो हम तो ब्लेस्ड हैं ही, और इसी तरीके की पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें ज़िंदगी जीनी है, और इस तरीके से जितना पॉजिटिव माइंड रहेगा उतनी ही पॉजिटिविटी हमारी बॉडी में रहेगी। चलिए और भी बातें करने वाली हूँ मैं आपके साथ, लेकिन मैसेज मसाला मेक्स अप में आप बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने ब्रेन हेल्थ के लिए काम करते हैं, क्या करते हैं आप, किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, कोई तो आइडिया आपके पास ज़रूर होगा, जो हमारे सभी सुनने वाले भी उस आइडिया को ले लें तो क्या पता वो भी पॉजिटिव फील करें। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत डिप्रेस होते हैं, कई बार होता है बहुत तनाव में होते हैं, कई बार तो किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होता है, तो कोई एक ऐसा मुझे रास्ता बताओ कि जल्दी से मूड ठीक हो जाए और बहुत बहुत बढ़िया हो जाए, मैं भी ये वाला गीत

वैसे ये बताने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है कि दिल की बात भला कैसे कहूँ। सारे ट्रिक आपको पता होते हैं किस तरह से दिल की बात दिल तक पहुँचाई जाती है और दिल की बात दिमाग तक कैसे पहुँचाई जाती है। आज तो कुछ बात हो रही है ऐसी, है ना, कि किस तरह से आप दिल की बात दिल तक पहुँचा रहे हो, किस तरह से अपने दिमाग की बात को दिल तक ला रहे हो, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को पकड़े हुए हो, यानी कि सारी कमांड आपके हाथ पे है। ये सब आपको मुझे बताना है और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि श्याम सुंदर जी कह रहे हैं रोहिला सर एंड रीना मैम, ये कौन सी, ये सारे लोग हैं मेरे ख्याल से और ये गाने सुन रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है इनको ये प्रोग्राम। हमको तो कुछ नहीं करना, हमें तो बस बुरी आदतों से दूर रहना है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा संभल कर रिश्ते बनाने हैं और बुरे लोगों के साथ आपको परेशानी हो इससे आपको बच कर रहना है। सोनू बिजनौर से ये लिखना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगला चंद्रेश का मैसेज है, आपकी मधुर आवाज़ डेली सुननी चाहिए ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। और अगला मैसेज हमारे पास आ गया है अंशी का। अंशी लिख रहे हैं कि मैम कैसी हैं, बहुत दिनों बताइए अंशी। और मैं तो आज के टॉपिक पर ये कहना चाहूँगी कि हम हमेशा अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर नींद, योगा, मेडिटेशन और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नींद, और इसी के साथ हमें ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए और हेल्दी फूड्स अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। बिल्कुल सही कहा अंशी, बिल्कुल कह देना कि पॉइंट पे पहुँची हो। और इसके अलावा अलय शर्मा जी भी हमारे साथ आ गए हैं और ये लिख रहे हैं, इन्होंने पता है वापस इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और इन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है, वो मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा है। तो अनिल शर्मा जी आपके जो भी दोनों मैसेज आए हमने ले लिए हैं। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज आ गया है हीरामणि वर्मा भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से और ये लिख रहे हैं, हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, खुश रखने के लिए अपने कार्य ड्यूटी से छुट्टी होने के बाद अपने पसंदीदा काम करते हैं जिससे हमारे दिमाग को तनाव महसूस ना हो। मैं तो अपनी पसंदीदा गीत बच्चों के साथ दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूँ और हाँ हमारे गांव के पास ना नदी किनारे ज़रूर जाता हूँ, उसमें एक द्वीप भी है जिसमें जिसे मकदू द्वीप भी कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल भी अच्छा लगता है, मन दिल दिमाग सब सुकून से भर जाता है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी जो फेवरेट जगह होती है ना अगर वहाँ जाओ भी ना तो भी बहुत अच्छा हो जाता है, मन आपका बहुत अच्छा होता है, ब्रेन आपका वहाँ पे जाके शांत हो जाता है। मेडिटेशन करनी चाहिए इसके अलावा हमें, और सार्वभौमिक मंत्र हमें दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, नाम नहीं दे रहे हैं अपना, बस मंत्र दे रहे हैं हमको। मनीष इदरिसी ये लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश से बिलासपुर से, 7 से 8 घंटे की नींद, पैदल चलो, मस्त रहो, रेनबो सुनो और सब सही रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और कितना अच्छा लगता है ना कि पैदल चलते चलते अगर हम अपने अपने रेनबो भी लगा लें साथ साथ कानों पे और कितना मज़ा आएगा, और साथ ही साथ आपका जो भी सारा थकाव तनाव सब दूर कर देंगे हम। इसके अलावा मैसेज आ गया हमारे पास कंचन सोनी विहार दिल्ली, गुड इवनिंग मैम कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आपने आज अपने आप को खुश रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए अच्छे अच्छे चिंतन करने चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों में व्यस्त रहना चाहिए और सब कुछ अच्छा लगेगा। सोनिया विहार से कंचन का ये मैसेज है। इसके अलावा एक और मैसेज मैं ले लेती हूँ, मैं अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अपने पसंदीदा गीत

सुन लेता हूँ। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से ये मैसेज है। बाप रे, सब बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, और अब मेरे ख्याल से बहुत अवेयर भी हो चुके हैं सब लोग। और अगर इतना अच्छा हमारे पास आइडियाज़ हैं, और अगर इसी में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कई बार होता है ना कि हम खुश भी होते हैं, वो भी तो हमारा ब्रेन ही होता है ना जो हमें खुश रखता है। और जब हम खुश होते हैं हमें नाचने का मन करता है, गाने का मन करता है, कुछ खाने का मन करता है, सबसे हंस बोलने का मन करता है। और ऐसे में ये वाला गाना अगर चल जाए तो नाचने का मन करता है? नहीं करता? करता है करता है करता है मुझे मालूम है। चलिए, मैं तो लगा रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए, प्रोग्राम भी सुनिए और बहुत सारे मैसेजेस कीजिए और प्रोग्राम सुनते रहिए। आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सीमा।

भला ऐसा मैं सोच भी सकती हूँ कि आपसे दूर जाने की? बिल्कुल नहीं सोच सकती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि कब कब करीब आने का मौका मिले, कब आपके पास आ जाए, कब आपसे बातें करें और कब अपना सारा स्ट्रेस एकदम से झूमंतर कर दें आपके साथ बातें करके। पता क्या होते, जिसे हम पसंद करते हैं, जिसके साथ हमें बातें करके अच्छा लगता है, फिर चाहे कितनी बातें कहते ना, बातें करते करते बात का पता ही नहीं चलता है। सालों बाद भी मुलाकात हो तो फिर ऐसा लगता है कि दूर तो हुए ही नहीं थे। भैया यूं कहो कि हर बात बताने का मन कर।

तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, रोक लो, उस बहस को वहीं पे रोक लो, और बस चाहे कितना ही गुस्सा आ रहा है ना, और थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मुस्कुरा नहीं सकते तो बस चुप हो जाओ। और ये पता है, ये सारी जो ट्रिक है ना, मुझे अमन बता रहे हैं। मैं हूँ अमन बागपत उत्तर प्रदेश से, और ये लिख रहे हैं, जब भी टेंशन आती है तो मैं चुप हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ, और फिर एक कप चाय बनाता हूँ, और मेरी चाय भी बड़ी समझदार है। पहली चुस्की में कहती है घबराओ मत, और दूसरी चुस्की में अब हंस भी लो। मैंने देखा है टेंशन बिल्कुल उस मच्छर जैसी होती है जिसका उसके पीछे भागो उतना कान के पास गुनगुनाती है, और जैसे ही ध्यान कहीं और लगाया खुद ही गायब। और मुस्कान, अरे मुस्कान तो घर की वाईफाई जैसी है, चालू रहे तो पूरा परिवार कनेक्टेड रहता है। इसलिए मेरा फॉर्मूला है, चाय गरम, दिल नरम, हंसी हरदम, और FM रेनबो ऑन। यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, और बहुत बढ़िया वाली ट्रिक है अमन तुम्हारी, और मुझे लगता है ये वाली ट्रिक तो मुझे लेके जानी पड़ेगी। चलिए, अब मेरे को लेके जाने की पड़ेगी, तो मैं एक बता दूँ जल्दी से कि 6:38 हो गए हैं और मैसेज बहुत हैं, तो तेज़ी से थोड़ा सा मेरे को लेना पड़ेगा मैसेज, क्योंकि फिर वरना फिर आपको दिमाग पे प्रेशर डालोगे, लिया क्यों नहीं था मैसेज मेरा सीमा। मैंने 4 मैसेज किए थे, 5 मैसेज किए थे, आपने एक भी नहीं लिया मेरा। चलिए हम ले लेते हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से, अरे इतना नहीं लिखो, आदरणीय सीमा जी। सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए मूल मंत्र दिया है, स्ट्रेस फ्री रहो और प्रभु का सिमरन करते रहो, अच्छी बुक्स रीडिंग करें, और इससे हमारे दिमाग बिजी रहता है, बिजी रहो, इजी रहो। वाओ, कितने अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हैं आपके पास। और शैलजा भी लिख रही है मुझे नीम राना से, फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, रेडियो इज़ ऑलवेज देयर टू रिलैक्स, वॉचिंग बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, और इन सभी से मेरा मन खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, ये सारे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त। और इसके अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं कपिल यादव गाजियाबाद पूजा कॉलोनी से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है मेरा जी, बोले ना आप 6 बजे वाले प्रोग्राम में रोज़ आया करो।

गाजियाबाद पूजा कॉलोनी से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है मेरा जी, बोले ना आप 6 बजे वाले प्रोग्राम में रोज़ आया करो। हाय ये तो रिक्वेस्ट बिल्कुल मानने का मन कर रहा है मेरा। इसके अलावा इकबाल सिंह चाबड़ा छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मैं रोज़ जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ तो रास्ते में 4-5 लोगों की तारीफ़ ज़रूर कर देता हूँ। सुनने वाले को कोई बहुत अच्छा लगता है तो

0: पहले मुझे लग रहा था कि पहले ऊपर से नीचे से ऊपर को स्क्रॉलिंग करती हूँ, मैसेजेस नीचे से ऊपर लेती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ऊपर से नीचे ले लेती हूँ, क्योंकि नीचे वाले नीचे चले गए, ऊपर वाले ऊपर ही रह गए और बीच वाले आई जा रहे हैं मेरे पास। अब मैं क्या करूँ? चलिए अब मैं मैसेजेस ले लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ले लेती हूँ जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद अभी हाजिर होती हूँ। जल्दी से कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है? सुनते रहना है आपका अपना प्रोग्राम।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मैसेज मसाला मिट्स, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त सीमा। और यहाँ पर हम ले लेते हैं मैसेजेस, क्योंकि टाइम भी हो गया है। जी हाँ, 6:46 हो गए हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक के अनुसार। और यहाँ पे मैसेज है तिलक राज अरोड़ा का, और ये लिख रहे हैं कि तनाव तो तनाव होता है, इतनी आसानी से थोड़ी ना जाता है। फिर भी जो हमारे प्रोग्राम्स जो यहाँ से आते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं, वो काफ़ी हद तक हमें इस टेंशन से फ्री कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मोता अल्लाह महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतनमारा सुरलकर और आरती कुमारी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आई एम वेरी सॉरी। और माइंड दिल फ्रेश रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा गीत सुने और अपनी पसंद का कोई शौक अपनाएं, और पॉजिटिव सोचें, बेवजह की चिंता को बिल्कुल छोड़ दें, हर दिन किसी न किसी से बात करें और अपना ग्रैटिट्यूड दें उसे। और इसके अलावा हमारा जो मैसेज है आपने शामिल किया, उसके लिए आप थैंक यू कर रहे हैं, हमने आपका थैंक यू ले लिया है, बिल्कुल ले लिया है। और इसके अलावा भीरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से कार्यक्रम सुन रहे हैं। टेंशन तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। इसके अलावा हमारे पास अमन बागपत से जुड़े हुए हैं, और अगला मैसेज हमारे पास आ गया है शुक्ल बाला फ्रॉम फलकाटा वेस्ट बंगाल से। वैसे तो मैं सेफ हूँ, और सेफ हूँ, सभी सेफ होते हैं भाई। और दिन भर बिजी रहता हूँ, लेकिन जब फ्री टाइम होता है ना तो FM रेनबो के गाने सुनता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात करते हैं आप लोग। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब ये हम टेंशन में होते हैं, है ना, कई बार परेशान होते हैं, और आज हम अपने आप को खुश रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप क्या क्या करते हैं। और यहाँ पर मैं देख लेती हूँ ये क्या करते हैं। मैं तो ऑफिस से निकलते ही FM रेनबो लगा लेता हूँ, अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स प्ले करते हैं, वे जाता हूँ, सारी ऑफिस की टेंशन सुबह से शाम तक की दूर हो जाती है, मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और बहुत ही आनंद आता है। घर पहुँचते पहुँचते हंसते हुए, बिल्कुल फ्रेश होते हुए कैलाश शर्मा जी गुरुग्राम अपने घर पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से आपके पास भी ज़रूर कोई होगा, है ना, जिसके साथ

को बात करके, जिसके साथ आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करके अच्छी फीलिंग्स आती हैं, अपना स्ट्रेस आप कम करते हो, तो ज़रूर अगर अभी तक आपके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो ज़रूर बना लीजिए। ज़रूर आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको समझे, ज़रूर कोई ऐसा होना चाहिए जिसे आप हमेशा महसूस कर सकते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तो मेरे साथ है, उसे बात करके मैं अपनी सारी टेंशन उसको दे सकता हूँ। और आपको इतना रिलायबल होता है वो कि आपको पता होता है कि वो बात जो उसको आपने बताई है वो कहीं नहीं जाने वाली है। तो ऐसा दोस्त आपके पास ज़रूर होता है, मेरे पास भी है, आप हो ना मेरे पास। तो चलिए, मेरे पास आप हो और आपके पास मैं भी हूँ, तभी तो आप मुझे इतने सारे मैसेजेस करके बता रहे हो कि कितना अच्छा लगता है। तो जब मेरे अभी तो कुछ बनता है ना आपके लिए कि मैं भी तो कुछ करूँ ना अपने दोस्तों के लिए, तो आपको अच्छा अच्छा फील कराऊँ, जैसे कि आप कह रहे हो कि यहाँ के गाने सुन के आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, तो इतने प्यार से अगर आपकी तरफ कोई देखेगा तो कुछ कुछ तो होगा, पक्का होगा।

चलिए, तीर दिल के आर पार हो जाए उससे पहले हम भी यहाँ पे मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि इतने सारे हैं और फिर टाइम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोहम्मद सरफराज आलम भी यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत सुंदर आपने सरफराज लिखा हुआ है, पूरा पढ़ नहीं पाऊंगी लेकिन हाँ मैंने पढ़ लिया और अगली बार जरूर आपका पूरा मैसेज पढ़ूंगी। पंकज अमरावती से भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं।

और यहाँ पे मैसेज ले लेते हैं हम यहाँ पे मोहम्मद इम्तियाज़ का जवाहर कैंप कीर्तिनगर से। और वैसे मुझे अच्छा लग रहे हैं सॉन्ग, और आपने मनपसंद ये कह रहे हैं कि जब भी ये परेशान होते हैं तो अपना मनपसंद खाना बहुत अच्छा लगता है इन्हें, और जिससे दिल और दिमाग को सुकून मिल जाता है। वैसे खाना भला किसको पसंद नहीं होता है, और ख़ास तौर पर मनपसंद खाना मिल जाए तो बस क्या बात है। इसके अलावा भुवनेश भी हमारे पास आ चुके हैं अशोक विहार से, और ये भी अपनी अपनी हॉबीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रेन स्ट्रेस को फ्री करने के लिए। बिज़ी हो जाते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं और हैप्पी रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ये कौन है, गुड इवनिंग, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नवलू वरक फ्रॉम गांव मलपड़ जिल्हा से, और मुझे तो सिर्फ रेडियो सुनते हुए शांति मिल जाती है। तो बस बढ़िया है ना, और कोई टेंशन लेनी है? प्लेलिस्ट बहुत अच्छी होती है, और इस टाइम बारिश हो रही है, और गोवा की इस वक्त बारिश हो रही है। दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में गोवा जितनी बारिश तो नहीं हो रही होगी, लेकिन हाँ बारिश सुबह से थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी हो ही रही है। और बारिश का नाम ले लिया तो बारिश वाला गाना तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ मैसेज लूँगी जल्दी से नियाज अहमद का भी, आतिफ बाबू रामपुरा से, गाने बहुत मस्त लग रहे हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मोहम्मद इम्तियाज जी का हमने मैसेज ले लिया है, और सरफराज जी का भी हम

मैसेज ले लिया है, यादों की बारिश में भीगा है आज फिर ये शहर, हर एक मोड़ पर बिखरा है तेरी यादों का मंजर। जी हाँ, और यादों के मंजर के साथ, बारिश के साथ, भीगती यादों के साथ मैं लूंगी इजाजत, फिर मुलाकात करूंगी 8 बजे आपके साथ, जी हाँ, म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में। तब तक मैं लेती हूँ सीमा इजाजत, और खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए, और अब आपको पूरा ध्यान रखना है, अपना भी, अपने दिल का भी, अपने दिमाग का भी, और हमारा भी। हमारा कैसे ध्यान रखोगे? जी हाँ, हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और हमारे ढेर सारे मैसेजेस करते रहेंगे, तो बस रहेंगे आप भी खुश और मैं भी खुश, और ढेर सारे गीतों के साथ छोड़े चली जा रही हूँ आपके अपने आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। तब तक टेक केयर, बाय बाय, और जो मैसेजेस नहीं ले पाई हूँ उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम जरूर ले लूंगी। बाय।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। दिल की तरह

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सार आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार 11वें दिन भी जारी हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
2: नमस्कार। लंबी अनिश्चितता और आयोजन पर मंडराते बादल के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया है जब खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में अदद एक पदक के लिए अपने शरीर के खून का कतरा कतरा झोंक देंगे और फिर टप टप टपकते पसीने से सींच कर एक मेडल पैदा करेंगे। इस पदक की चमक विजेताओं को जीवन में कभी नहीं भुलाने वाली खुशी देगी। बर्मिंघम से 4 साल बाद खेलों का कारवां स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचा है। हालांकि इस बार 4 साल का ये अंतराल कुछ ज्यादा ही मुश्किलों से भरा रहा है। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को करनी थी, लेकिन 2 साल पहले विक्टोरिया ने लागत बढ़ने और फंड की कमी का तर्क देकर आयोजन से अपना हाथ खींच लिया। इससे कॉमनवेल्थ फेडरेशन मुश्किल में पड़ गया। आयोजन से 2 साल पहले नए मेजबान की तलाश का काम आसान नहीं था। काफी प्रयास के बाद आखिरकार ग्लासगो को मेजबानी सौंपी गई, लेकिन यहां भी एक अड़चन आ गई। ग्लासगो ने भी कम बजट की बात कहकर ये शर्त रख दी कि वह सिर्फ उन खेलों का ही आयोजन कर सकता है जिनके लिए वेन्यू उनके पास पहले से ही मौजूद है। ऐसे में खेलों की संख्या में कटौती की गई। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 19 खेलों के मुकाबले ग्लासगो में यह संख्या सिर्फ 10 रह गई है। जो खेल स्पर्धाएं ग्लासगो में होने जा रही हैं, उनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, 3x3 बास्केटबॉल, लॉन बॉल्स, नेटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जूडो और बॉक्सिंग शामिल हैं। दूसरी तरफ जिन 9 खेलों को हटाया गया है उनमें रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वाश, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और रग्बी 7 शामिल हैं। इस फैसले का बड़ा असर भारत की पदक की संभावनाओं पर भी पड़ा है। हम आपको बता दें कि बर्मिंघम में भारत ने बीच वॉलीबॉल और रग्बी 7 को छोड़कर बाकी सभी खेलों में हिस्सा लिया और 61 मेडल्स भी जीते थे। भारतीय दल को बैडमिंटन में 2, क्रिकेट में 1, स्क्वाश में 2, टेबल टेनिस में 7 और रेसलिंग में 12 मेडल मिले थे। ऐसे हालात में पदकों की संख्या का कम होना तय है। अब उन खेलों की बात करें जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा हैं और जहां भारत के लिए पदक की बेहतर संभावना है। भारत को बर्मिंघम में बॉक्सिंग में 7, जूडो में 3, वेटलिफ्टिंग में 10, एथलेटिक्स में 8, लॉन बॉल में 2 और पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल मिला था और कुल 31 मेडल भारत ने जीते थे। इस बार भी पदकों की संख्या इसी के आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, 3x3 बास्केटबॉल, नेटबॉल और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में हमारी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इस बार के 125 खिलाड़ियों का भारतीय दल मेडल के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देगा। इस दल में 77 पुरुष

0: और 48 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे बड़ा 32 सदस्यों का दल इस बार एथलेटिक्स में पदक की दावेदारी के साथ उतरेगा। इसके बाद मुक्केबाजी और जूडो में 14-14 और वेटलिफ्टिंग में 12 खिलाड़ियों का दल हिस्सा लेगा। हम आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन और भारत की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की प्रतिनिधि और वरिष्ठ खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, आपका स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हिमिका, आखिर तमाम हाना के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने जा रहा है, लेकिन पिछले आयोजन के मुकाबले इस बार 19 की जगह सिर्फ 10 खेल होंगे, इसका क्या असर इन खेलों के आयोजन पर पड़ सकता है?
1: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स 33 मेडल्स हम लेके आए। जैसा कि सबको पता है अब, और आपने भी इसका जिक्र किया, कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स हैं, जैसे बैडमिंटन है, जैसे बॉक्सिंग है, जिसमें हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है, तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ, ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा मेडल टैली में।
0: जी, और भारत के खिलाड़ियों के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये गेम्स न सिर्फ पदक जीतकर मनोबल बढ़ाने के लिए, बल्कि उसी साल होने वाले एशियन गेम्स और एक साल बाद होने वाले ओलंपिक की तैयारियों के लिए भी अच्छा मंच प्रदान करता रहा है। इस बार कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, बैडमिंटन, आर्चरी का न होना क्या एशियाई खेलों और ओलंपिक्स में भी भारत की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है?
1: आपने बिल्कुल सही कहा। तो उस हिसाब से तो जो एथलीट जाते हैं, और ये हम सबको पता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना ही इनफ नहीं होता, एक एथलीट के लिए सबसे जरूरी होता है कंपटीशन। एक क्लासिक एग्जांपल है नीरज चोपड़ा का, कि वो जिस एंगल में भाला पहले फेंकते थे, फिर उनको पता चला कि उस एंगल में वो अचीव नहीं कर पा रहे, उनका वो जो 90 जो द ड्रीम मार्क है, तो उन्होंने उस चीज को चेंज किया। तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन हम कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं CWG पर, एशियन गेम्स में जाएंगे और आगे ओलंपिक में जाएंगे LA में, उनके लिए इट्स डेफिनेटली अ लॉस्ट चांस। और ये जैसा आपने कहा, खिलाड़ी का मनोबल और साथ में खिलाड़ी का एक एक्सपीरियंस रहता है, वो उनको इस बार नहीं मिलेगा। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि अभी इंडिया में हम लोग इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर। आप अगर देखें तो सिर्फ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हम जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, जितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आज की तारीख में हम इंडिया में होस्ट कर रहे हैं, कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2025-26 में हमने 36 हमने कॉम्पिटिशन्स जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हमने इंडिया में होस्ट किया। अभी 26 पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, हम और 11 जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स इंडिया में हम होस्ट करेंगे। अगले साल 19 ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ये सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं, अच्छे स्तर के कॉम्पिटिशन्स हैं, तो खिलाड़ियों को कॉम्पिटिशन्स मिलते रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। पर वो जो CWG से एशियन गेम्स जाने का एक जो वो आप कह सकते हैं चार्म होता है, वो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, और कुछ कुछ खेलों में ये लॉस जरूर रहेगा।
0: हिमिका, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है, जिसमें हम ढेर सारे पदक भी जीतते रहे हैं, लेकिन जो खेल इस बार शामिल किए गए हैं उसके लिए हमारे खिलाड़ियों ने तैयारियां कैसी की हैं, पदक की कितनी बेहतर संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं?
1: देखिए, हमेशा कोशिश यही होता है, वो चाहे खिलाड़ियों का हो, वो चाहे सरकार का हो, जो एक सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम स्पोर्ट्स का तैयार किया है, ग्रास रूट से लेके एलीट एथलीट तक सपोर्ट देने का, हमेशा एफर्ट यही रहता है कि कंपटीशन जिस स्तर का भी हो, जैसे कि इस बार ट्रंकेटेड है, पर एफर्ट में कोई कमी नहीं है, ना एथलीट के तरफ से ना सपोर्ट के तरफ से। तो मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली पिछले बार के मुकाबले वो हर डिसिप्लिन जिसमें हम इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं कम मेडल तो नहीं लाएंगे, क्योंकि पिछले पूरे CWG साइकिल में, और व्हेन आई से CWG साइकिल, 4 साल का साइकिल होता है, उन 4 सालों में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जब हमारे एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, मुझे कहते हुए खुशी है कि एटलीस्ट हर एक इन डिसिप्लिन्स में, एथलेटिक्स खास करके, क्योंकि उसमें हम लोगों की संभावनाएं काफी ज्यादा है, हम सब जानते हैं कि सारी नजरें टिकी हुई है नीरज चोपड़ा पे, तो नीरज चोपड़ा तो चलिए मैंने वो एक्सपेक्टेड है, वो होने ही वाला है, पर बाकी भी जैसे आप मुरली श्रीशंकर ले लीजिए, तेजस्विन ले लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो पिछले कई महीनों में ये सब इंटरनेशनल

0: ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया में तो ट्रेनिंग लेते ही है, साई बेंगलुरु में भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, एनएसएनआईएस पटियाला में भी ट्रेनिंग करते हैं, बट ये नजर में रखते हुए कि वो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनके स्तर पे उनके जैसा उनको ट्रेनिंग का मौका मिले, फॉरेन कोचेस का सपोर्ट मिले। तो ऑलरेडी जैसे एथलेटिक्स वाले पोलैंड में है, स्पाला में, साइकिलिंग के बच्चे हैं फ्रांस में, ऑलरेडी वो लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, जिम्नास्टिक्स के बच्चे हैं वो ऑलरेडी यूके पहुंच चुके हैं और वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसे और बाकी डिसिप्लिन्स का भी वही है, 20 से ज्यादा फॉरेन कोचेस इंडियन कोचेस के साथ लगे हुए हैं। इंटरनेशनल जो कोचेस है उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ओलंपिक चैंपियन तैयार कर चुके हैं, बहुत सारे कोचेस खुद ऑलरेडी ओलंपियंस रह चुके हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो जिस तरह के टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं उससे हमारे एथलीट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और सब कुछ मिला के, मतलब वेदर इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, फॉरेन कोचेस हो, या हमारे देश में जो साई सेंटर्स और अकेडमीज में वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब मिला के तैयारी एकदम 100% से ज्यादा है। और इसीलिए उम्मीद ये है कि पिछली बार जितना मेडल इन सब डिसिप्लिन में हमने जीता था, एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा ही मेडल इस बार हम लेके आएंगे।
1: जैसा कि हमने बताया कि इस बार एथलेटिक्स में भारत का सबसे बड़ा दल भाग लेने जा रहा है। ट्रैक इवेंट में पुरुष वर्ग में पदक की एक बड़ी उम्मीद राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर में हिस्सा लेंगे। हम आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर के बीच 100 मीटर स्प्रिंट में हाल के दिनों में कमाल की प्रतिस्पर्धा रही है। हालांकि गुरिंदर वीर सिंह वर्तमान में 10.09 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ देश के सबसे तेज धावक हैं। उधर अनिमेश कुजूर ने जर्मनी में 10.14 सेकंड का समय निकालकर विदेशी धरती पर सबसे तेज भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि ग्लासगो में भारत की तरफ से 100 मीटर दौड़ में भाग लेने का मौका गुरिंदर वीर सिंह को मिलने वाला है। उधर 200 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व सबसे तेज 20.32 सेकंड का समय रखने वाले अनिमेश कुजूर करेंगे। विशाल टीके की दावेदारी 400 मीटर दौड़ मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले और रमेश का दावा 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में होगी। गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर, तेजस शिर से 110 मीटर हर्डल, यशस पलाक्ष 400 मीटर हर्डल और संतोष कुमार तमिल रासन 400 मीटर हर्डल में भाग लेंगे। ट्रैक विमेन्स कैटेगरी में रशदीप कौर 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, नीरू पाठक 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, अंसा बाबू 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज 5000 मीटर, प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर वॉक, रवीना गायकवाड़ 10000 मीटर वॉक में शामिल हैं। उधर फील्ड मेंस कैटेगरी की बात करें तो देव मीणा और कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट में सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। सर्वेश अनिल कुशारे और आदर्श राम जे हाई जंप, तेजस्वी शंकर हाई जंप, डेकाथलान, मुरली शिशंकर और लोकेश सत्यनाथन लॉन्ग जंप, प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, समरदीप सिंह गिल और तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह जैवलिन थ्रो में भारत की बड़ी उम्मीद होंगे। फील्ड वीमेन्स कैटेगरी में पूजा सिंह हाई जंप, मनप्रीत कौर शॉटपुट, सीमा कालीरमन और निधि रानी डिस्कस थ्रो में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी। वैसे अगर दोहा डायमंड लीग में चौथे नंबर पर रहे नीरज की बात करें तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी संभावनाओं को लेकर काफी उम्मीद रखते हैं।
2: नहीं, मैं काफी खुश हूँ अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
1: भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में ग्लासगो जा रहा है, ऐसे में भारत के लिए पदकों की वास्तविक तौर पर कितनी बेहतर संभावना है?
0: देखिए, एक्सपेक्टेशन पिछली बार से कुछ कम नहीं है। एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा इस बार एथलेटिक्स से ही है, और जैसा कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में कंटिंजेंट जा रही है, पर हम ये भी याद रखें कि एथलेटिक्स में भी सारी डिसिप्लिन्स नहीं है, पर जो डिसिप्लिन्स में भारत स्ट्रांग है, जैसे जैवलिन हो गया, ट्रैक एंड फील्ड, ये सारे हमारे जो जंप्स है, क्योंकि वो सब है इस बार के CWG में, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि पिछली बार का जो नंबर था उसको शायद हम कुछ एक या दो मेडल से क्रॉस कर जाए इस बार। एथलेटिक्स के लिए पिछले सीजन में ही, और कुछ लास्ट एक डेढ़ महीने की बात होगी, टोटल 26 नेशनल रिकॉर्ड टूटा है सिर्फ एथलेटिक्स में। तो अभी एथलेटिक्स में हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत ही, ये हम कह सकते हैं कि परहैप्स द बेस्ट इन द लास्ट फ्यू कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। अभी इस टाइम पे हमारा जिस तरह का बेंच स्ट्रेंथ है, हमारा जिस तरह का प्रेपरेशन है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ

0: बहुत क्रिटिकल होता है, ये हम सबको पता है। तो इस बार क्योंकि ये यंग एथलीट्स है जो बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत ड्रिवन है, एक भूख है उनमें, एक हंगर है, क्योंकि उनको भी प्रूव करना है बहुत कुछ।
1: एथलेटिक्स के बाद जिस खेल से भारत को सबसे अधिक उम्मीद है उसमें बॉक्सिंग सबसे ऊपर है। इसमें पुरुष वर्ग में 55 किलोग्राम में जादूमणि सिंह, 60 किलोग्राम में सचिन सिवाच, 65 किलोग्राम में आदित्य प्रताप सिंह, 70 किलोग्राम में सुमित कुंडू, 80 किलोग्राम में अंकुश, 90 किलोग्राम में कपिल पोखरिया और 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेरवाल की चुनौती होगी। महिला वर्ग के 51 किलोग्राम में साक्षी चौधरी, 54 किलोग्राम में प्रीति पवार, 57 किलोग्राम में जैस्मिन लांबोरिया, 60 किलोग्राम में प्रिया घंगास, 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा, 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी और 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन की दमदार चुनौती होगी। साक्षी चौधरी इन खेलों में अपनी संभावनाओं के बारे में क्या कह रही हैं? वो सुनते हैं।
2: जी, हम अभी कॉमनवेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हम 9 जुलाई को आयरलैंड जाएंगे जहां हमारा मल्टीनेशनल ट्रेनिंग कैंप होगा, वहां से हम डायरेक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाएंगे। तो अभी हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है।
1: पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम में भारत की पदक की बड़ी उम्मीद है सचिन सिवाच।
3: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारे उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। सभी के गोल्ड आने हैं।
1: बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह को भी बॉक्सर्स से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।
4: देखिए, 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
1: बॉक्सिंग की बात करें तो सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों में ही नहीं, एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी हम इस खेल में पदक जीतते रहे हैं। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और जादूमणि सिंह जैसे उभरते हुए नाम हैं, वहीं महिला वर्ग में टोक्यो 2020 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन के साथ साथ प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया घंगास जैसे बॉक्सर्स की भी अपने अपने वर्ग में तगड़ी चुनौती होगी। पदक की कितनी उम्मीद कर सकते हैं ऐसे बॉक्सर्स के रहते हुए?
0: देखिए, बॉक्सिंग हमेशा से हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, बॉक्सिंग में हम अच्छा करते आ रहे हैं। इस बार बेन स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और ये जो प्रेपरेटरी जो फेज था इसमें, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमारी टीम ने पार्ट लिया, जैसे कि इंडिया एशियन चैंपियनशिप्स में 3rd नंबर पे उन्होंने फिनिश किया और इंटायर वुमेन स्क्वाड ने मेडल्स लेके आए। तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट्स है वो इस टाइम पे बहुत अच्छा है और आई वुड गो एज फार एज टू से कि महिलाओं का अभी इस बार CWG में मुझे लगता है चांसेस पुरुषों से भी ज्यादा है। तो हम अपने जो नजरें हैं वो महिला बॉक्सर्स पे टिकाए रखें, उनको उनके गेम्स को देखें और मुझे लगता है कि वाकई में मजा आने वाला है और आगे जाके इनमें से बहुत सारी लड़कियां LA तक तो जरूर खेलेंगी। मुझे ये लगता है कि ये सब लंबे टाइम, हालांकि बॉक्सिंग रेसलिंग ये थोड़े इंजरी प्रोन भी होते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब लंबे टाइम के लिए है और खेलेंगे और CWG में अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे।
1: वेट लिफ्टिंग भी ऐसा खेल है जिसमें भारत कुछ पदकों की उम्मीद कर सकता है। इसकी टीम की बात करें तो पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह, 65 किलोग्राम में एम राजा, 79 किलोग्राम में अजय बाबू, 94 किलोग्राम में दिलबाग सिंह और 110 किलो से अधिक भार वर्ग में लवप्रीत सिंह अपनी ताकत दिखाएंगे। महिला वर्ग में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू 48 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव 53 किलोग्राम, बिंदिया रानी देवी 58 किलोग्राम, हरजिंदर कौर 69 किलोग्राम, संजना 77 किलोग्राम, सेराम निरुपमा देवी 86 किलोग्राम और मार्टिना देवी 86+ किलोग्राम भार वर्ग में भारत की उम्मीदों का केंद्र होंगी। फिट होने के बाद वापस लौट रही मीराबाई चानू पदक को लेकर कितनी आशावान है, ये सुनते हैं।
5: बहुत लकी हूँ कि हम पहले ही बर्मिंघम में आके हम ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। हम सबका होप कर रहे हैं कि हम सब मेडल लाए इंडिया के लिए, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही है।
1: हिमिका, कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भी हमारे अच्छे खासे पदक आते रहे हैं। पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू फिट होकर वापसी कर रही हैं। इस बार दोनों वर्गों को मिलाकर हम क्या उम्मीद कर सकते?
0: देखिए, मीरा का तो ये है कि उसको मैजिक मीरा कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक्चुअली एक मैजिशियन है। जब

0: मीराबाई को देखते हैं और जैसा उनका कद है और छोटी सी लड़की है मणिपुर से, जैसा कि आपने कहा इंजर्ड थी, पर वो उसने काफी दिनों तक यूएसए में रह के ट्रेनिंग भी किया, रिहैबिलिटेशन भी किया, तो मीरा का तो डेफिनेटली एक मेडल चांस हम कह ही सकते हैं। जैसा आपने कहा कि एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा है, तो वेटलिफ्टिंग में मीरा का चांस हम इक्वली उसी तरह से सोच सकते हैं। भारत को गोल्ड मिलने वाले हैं, उसमें से एक तो मीराबाई चानू के नाम होना ही चाहिए और होगा भी शायद।
1: तो दोस्तों, ये थी भारतीय खेल प्राधिकरण साई की वरिष्ठ खेल पत्रकार और प्रतिनिधि हिमिका चौधरी। आकाशवाणी के स्टूडियो आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और जैसा मैंने कहा, लेट्स चीयर फॉर भारत।
1: जूडो में पिछली बार भारतीय दल ने 3 पदक जीते थे। इस बार न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ने बल्कि पहले गोल्ड मेडल की भी उम्मीद की जा रही है। चुस्ते स्फूर्ति और ताकत के इस खेल में भारत की तरफ से मेंस कैटेगरी में हर्ष सिंह की चुनौती 60 किलोग्राम, रोहित बसीर माजगुल की 66 किलोग्राम, अरुण कुमार की 73 किलोग्राम, हर्ष टोकस की 81 किलोग्राम, करणजीत सिंह मान की 90 किलोग्राम, अवतार सिंह की 100 किलोग्राम और यश घंगास की 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में चुनौती है। महिला वर्ग में अस्मिता डे 48 किलोग्राम, श्रद्धा कदाबुल चोपड़े 52 किलोग्राम, यामिनी मौर्य 57 किलोग्राम, उन्नति शर्मा 63 किलोग्राम, इनुन गनबी ताखिल्लाम्बम 70 किलोग्राम, इशरूप नारंग 78 किलोग्राम और तुलिका मान 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अपना अपना दावा पेश करेंगी। पिछली बार सिल्वर मेडल जीतने वाली तुलिका मान ने इस बार गोल्ड के लिए ढेर सारी तैयारी की है। सुनते हैं क्या है उनकी तैयारी।
2: बीइंग एन एथलीट, एलीट एथलीट और ऑलरेडी आई प्लेड द कॉमनवेल्थ 22nd, तो मेरा अभी एम अलग है। मैं उन चीजों को, प्रेशर को नहीं लेके चल रही हूं। मेरा मेन ये है कि मतलब 22 में जो मेरा सिल्वर आया था उसे मुझे अभी कन्वर्ट करना है गोल्ड।
1: तैराकी में भारत का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। इतिहास की भी बात करें तो सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल आया है और वो भी पैरा स्विमिंग के जरिए। फिर भी ग्लासगो में स्विमर्स की अच्छी खासी भागीदारी होगी। भारत ने स्विमिंग में भले ही कोई पदक अब तक न जीता हो, लेकिन तैराक अनीश घोड़ा को इस बार खूब सारी उम्मीदें हैं।
3: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़ा इवेंट है, हमारी बहुत हार्डवर्क हो रही है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ जाके हमारे देश को प्राउड करें और एक मेडल जीत के वापस आए।
1: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भी भारत की दावेदारी है। मेंस कैटेगरी में तपन मोहंती, तपेश्वर नाथ दास, स्वातिश केपी, सत्यजीत मंडल, जबकि विमेंस कैटेगरी में प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले, प्रतिष्ठा सामंता पदक के लिए जोर लगाएंगी। तपन मोहंती जिम्नास्टिक्स में भारत के नेशनल चैंपियन हैं। ट्रैक साइकिलिंग में भी भारत का दावा होगा। रोनाल्डो सिंह लेटोंजाम 1000 मीटर टाइम ट्रायल, डेविड बेकहम एलकाटो चुंगो और जेम्स सिंह किथेल्ला क्रम एलिट किरिन, दिनेश कुमार और रोजित सिंह यांगलेम पुरुष एंड्योरेंस और परस्यूट स्पर्धाएं, जबकि सेंखो हर्षवीर सिंह 4000 मीटर टीम परस्यूट में साइकिलिंग ट्रैक पर होंगे। 3x3 बास्केटबॉल के विमेंस व्हीलचेयर कैटेगरी में भारत की चुनौती होगी, जिसमें रीना, रमेश चंद्र गुप्ता, इरेंगबंग रितु चानू, जाधव मीनाक्षी हरिश्चंद्र, रायन्नावर लक्ष्मी रायप्पा शामिल होंगी। लॉन बॉल्स में भी भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। पिछली बार भी इस खेल में हमें 2 मेडल मिले थे। इस बार मेंस कैटेगरी में सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल, डबल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार शामिल हैं। विमेंस कैटेगरी में नयन मोनी सैकिया सिंगल्स में, जबकि रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की डबल्स में सहभागिता होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा खिलाड़ियों से भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। क्या कुछ हो सकता है पैरा एथलीटों द्वारा, पैरा खिलाड़ियों द्वारा? संपूर्ण रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी शाहिद आजमी।
4: जब इरादे बुलंद हो तो कोई भी बाधा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। भारत के पैरा खिलाड़ी इसी जज्बे के साथ अब ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि खिलाड़ियों में इस बार अलग ही जोश है।
5: ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, आज पैरा खिलाड़ियों की सेंड ऑफ सेरेमनी, और मैं हर एथलीट को जानता हूं, अब की बार खिलाड़ियों में एक अलग ही जुनून है। कहीं नहीं कि हम पहले खेलने जाते थे, अब खिलाड़ी मेडल जीतने जा रहे हैं। अब की बार जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी। आप देखिए कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी विशेष तौर पे उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी और कम से कम हम 5 से 6 मेडल जीतेंगे।
4: ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 28 सदस्यीय पैरा दल 5 खेलों में चुनौती पेश करेगा।

0: दल में 11 पैरा एथलीट, 7 पैरा पावर लिफ्टर, 5 पैरा तैराक, 1 पैरा ट्रैक साइक्लिस्ट और 4 महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी 3x3 टीम में शामिल हैं। बात पैरा एथलेटिक्स टीम की करें तो इनमें देवेंद्र कुमार, दिलीप महादू, राकेश भाई भट्ट, रमेश सनमुगम, शुभमन जुयाल, मोहम्मद बासिल, सोमन राणा, सागर थायत, श्रेयांश द्विवेदी, शर्मिला और शिल्पा भारती चुनौती की अगुवाई करेंगे। हमने भारतीय पैरा दल में से कुछ खिलाड़ियों से उनकी तैयारियों और संभावनाओं के बारे में बात की। ये है डिस्कस थ्रोअर देवेंद्र कुमार।
1: अभी ये मेरा सेकंड कॉमनवेल्थ गेम है, फुल तैयारी के साथ अभी जा रहे हैं और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करेंगे।
0: पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला का कहना है कि पहले से बेहतर होगा इस बार।
2: 2022 में भी कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किया था और अब भी कर रही हूँ। पीछे से अब बेटर है, अब से आगे बेटर होगा, आगे आगे बेटर होता ही जा रहा है। अच्छी सपोर्ट मिल रही है, बीसीआई और साई की और हमारी सरकार खिलाड़ियों को बहुत ध्यान दे रही है और अच्छी मेहनत करके हम भी पीछे नहीं हटने वाले, देश के लिए मेडल लेके देंगे।
0: तैयारियां आपकी कैसी हैं?
2: हमारी बेस्ट तैयारियां हैं, हम डेली 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सपना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं कॉमनवेल्थ में।
0: यह 100 मीटर T47 में दौड़ लगाने वाले मोहम्मद बासिल।
3: इट इज माई फर्स्ट मेजर कॉम्पिटिशन, लास्ट ईयर आई स्टार्टेड द पैरा स्पोर्ट्स, दिस ईयर आई विल फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू द बिग गेम्स, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट।
0: देश के पैरा खिलाड़ी कितने मेडल जीतेंगे, यही सवाल हमने पैरा एथलेटिक कोच सत्यनारायण से किया।
4: पैरा ओलंपिक डेफिनेटली हम लोग 7 मेडल जीतने का उम्मीद कर रहा है। 5 मेडल तो कंफर्म है, 100% है। 2 मेडल नीचे ऊपर हो सकता है। मैं एथलीट होके बोल रहा हूँ, एथलेटिक्स पैरा का बहुत अच्छा करेगा।
0: जो एथलेटिक्स टीम जो आपको दी गई है, जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए उनको देखते हुए क्या लग रहा, कितनी मजबूत है, क्या वहाँ पर संभावना उनसे देखते
4: हैं? आप लोग को मालूम है अभी ग्लासगो में बहुत ठंड है, फिर भी मेरा एथलीट पूरा प्रिपेयर है, 100% हम अच्छा मेडल लेके आएगा।
0: अब बात करते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों की, जिनमें परमजीत कुमार, अशोक, झंडू कुमार, सुधीर, जसप्रीत कौर, कस्तूरी राजमणि और सुमन देवी से पदक की उम्मीदें रहेंगी। संभावनाओं पर पैरा पावर लिफ्टिंग कोच राजेंद्र सिंह रहेलू कहते हैं,
5: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
0: पैरा तैराकी में रवि वीरा वेंकट, बुडगिना, अली इमाम, सुयश जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णी और स्वातिक पाटिल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी तरह पैरा ट्रैक साइकिलिंग में लिशा दास अकेली भारतीय खिलाड़ी होंगी, जबकि महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल 3x3 टीम में रितु चानू इरेगबम, रीना रमेश चंद्र गुप्ता, मीनाक्षी हरिचंद जाधव और लक्ष्मी रायप्पा चुनौती पेश करेंगी। इस अवसर पर रियो पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट दीपा मलिक से हमने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों से संभावनाओं पर बात की।
6: संभावनाएं बहुत अच्छी हैं इस टीम में, हमारे कॉमनवेल्थ रैंकिंग 1, वर्ल्ड रैंकिंग 1 ऐसे खिलाड़ी भी जा रहे हैं। तैयारियों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़े हैं, अब 5 विविध स्पोर्ट्स में हमारे पैरा एथलीट जा रहे हैं और लगभग 28 एथलीट जा रहे हैं, इसमें 40% महिलाएं जा रही हैं, मुझे बहुत खुशी है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा स्पर्धाओं में अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। इस बार उम्मीद है कि भारतीय पैरा खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।
7: भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से विशेष बात की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने।
8: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड।
9: एशियन गेम्स का सेमीफाइनल मानती है इसे, इसको कैसे देखते हैं? गेम्स कम है, होप्स ज्यादा, लेकिन
8: एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है। एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एनीवे 2 मंथ्स इज देयर, दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस भाई, बिकॉज द गवर्नमेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल association is in one line and they are providing all the facilities which players wants. So exposure is the must. They are getting foreign exposure and all those things, and association is working on it, and lot of sponsors also. For IOA is also giving full support to players. So that I hope that players अच्छा करेंगे.
9: Last question. 2023 में हम host कर रहे हैं Commonwealth Game. तो यहाँ और कुछ सीखने के लिए होगा, देखने के लिए होगा. IOA इसके बारे में क्या कहेगा? कैसे plan कर रहा है?
8: Our team is there. Our IOA team and government team, all team is there to see what are all the things they are doing. हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा competition तो इधर organize किया है, but फिर भी what are all the changes we have to do, all team will be there.

0: भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया को भी दल से ढेर सारे पदक की उम्मीदें हैं।
1: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। दोस्तों, मोदी जी ने हमारे एथलीट को अपने परम मित्र कहे। जब हमारे एथलीट कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे हैं, तब दोस्तों मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है। देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है।
0: ग्लासगो में भारत के लिए खेलों से इतर भी बहुत कुछ होने वाला है, बता रहे हैं भारत के मिशन प्रमुख, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और भारत की डेविस कप टीम के कप्तान रोहित नागपाल।
2: के सिंबॉलिकली अगर आप देखा जाए तो हम लोग नेक्स्ट होस्ट है, तो खेल के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान हो चुकी है वहाँ पे। हम लोगों को बैटन लेना है, हम लोगों को वहाँ से फ्लैग लेना है कॉमनवेल्थ का, हम लोगों को कल्चरल डांस सिखाना है इंडिया का, फिर एक ट्रेड कट ग्रुप भी बन रहा है हम लोगों का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है एक्सचेंजेस जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं सारा वहाँ खेल के अलावा भी। तो सिम्बॉलिकली अगर देखा जाए ऑलराउंडेडली तो एक बहुत जरूरी ये एक ट्रिप है जिसके अंदर हम लोग जाके ये सब चीजें लेके आएंगे इंडिया के लिए, और सारा फिर फोकस शिफ्ट करेगा इंडिया पे कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो ये काफी सालों बाद एक नया गेम इंडिया को आएगा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक होलिस्टिक पिक्चर है।
0: कुछ ही घंटे में पदकों की दौड़ शुरू होने वाली है और एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलने की होड़ मचने वाली है। पदकों की इस आपाधापी में किसी का सितारा चमकेगा तो किसी को जीत के लिए नई सीख और जज्बा हासिल होगा। तो कल से रोमांच शुरू होने वाला है, हम भी आपसे जुड़े रहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की हर हलचल, धड़कन और रोमांच के साथ। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान और सहयोगी शाहिद आजमी के साथ धर्मेंद्र को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: The Commonwealth Games.
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
5: जी आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, और शुरुआत करते हैं म्यूजिक मस्ती का कार्यक्रम, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त सीमा।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
6: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
7: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
8: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
9: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
8: म्यूजिक मस्ती।
10: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
11: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
8: म्यूजिक मस्ती।
12: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष ID मिलती है। यह ID आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही ID दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
13: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
14: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार, लीजिए पेश हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देशभर में 162 वंदे भारत रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। श्री वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने गुजरात के अंकलेश्वर में एक आवासीय परिसर से संचालित मेफेड्रॉन के गुप्त संयंत्र का भंडाफोड़ किया। अवैध मादक पदार्थ के निर्माण और तस्करी नेटवर्क में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार INS कादम्बा नौसेना बेस पर माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल किया। कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी बलिदान हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाश

विनाश अभियान जारी है। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार 11वें दिन भी जारी हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा, ये हमले हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में, चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आती रही।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आपकी याद आती रही में मैं आपका स्नेहल स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। सुनते आए हैं कि यादें कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। दोस्तों, यादें कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वो तो किसी खामोश दोपहर में, किसी भीगी भीगी शाम में, किसी परिचित खुशबू में, या फिर किसी पुराने गीत की पहली धुन के साथ चुपचाप हमारे साथ आकर बैठ जाती हैं। प्रेम का भी शायद यही स्वभाव है ना? वो चला जाए तब भी पूरी तरह जाता नहीं है, वो स्मृतियों का उजाला बनकर हमारे भीतर कहीं जलता रहता है दिए की तरह। शायद यही प्रेम है और शायद यही यादों की वो खूबसूरत सी पहचान है। आपकी याद आती रही है विनीता बेदी के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, साथ हमेशा हाथों का ही नहीं होता, कभी कभी किसी की दुआएं भी उम्र भर हमारा हाथ थामे रहती हैं। और तब लगता है कि ये प्यार है या सिर्फ मोह, और अगर मोह है तो ऐसा कैसा धागों से बंधा कि वो कच्चे धागे भी कभी खुलते ही नहीं। प्रेम यादों की पहली सीढ़ी होता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी रेनबो पर आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, कुछ नाम ना कभी भी पुकारने नहीं पड़ते, वो हर धड़कन के साथ अपने आप ही सुनाई देते हैं और आसपास कोई ना भी हो, लेकिन दिल में बसी यादों का भी अपना ही एक संगीत होता है, जिसे देखा जाए तो सिर्फ वही सुन पाता है जिसने कभी किसी को सच्चे मन से चाहा था। और यही चाहत जब रूप लेती है शब्दों का, गीतों का, संगीत का, अरमानों का, तो शायद वो संवाद जो है ना, वो कुछ ऐसा ही लगता है।

की याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों समय बीत जाता है लेकिन कुछ रिश्ते कभी नहीं बीतते। कभी कभी ना कुछ पल घड़ी की सुइयों में नहीं, दिल में आकर हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। फिर जब जी चाहे यादें बनकर आंखों से बरसते भी हैं। आखिर आप ही बताइए, क्या नाम देंगे आप इन रिश्तों को?

सबसे सुंदर रिश्ते पता है कौन से होते हैं? सबसे सुंदर रिश्ते होते हैं जिनमें अधिकार कम और अपनापन ज्यादा होता है। ऐसा तब दिखता है जब प्रेम में शब्द कम पड़ जाएं। इसलिए आंखें अक्सर वो कह देती हैं जो होंठ अभी कह नहीं पाते, क्योंकि दिल का खालीपन जो होता है ना, वो किसी भी जगह से, किसी चीज से या किसी के भी आने से भरता नहीं है। ये केवल कोई बहुत अपना होना, उसी की आहट सुनकर सुकून पाता है। कौन है वो जिसके ना रहने से आंखें कभी बरसना भूलती नहीं है? कौन है वो जिसके बिना भरे नैना राह देखते रहते हैं धुंधली सी? आपकी याद आती रही विनीता भाई।

0: पर जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल
3: और ज्ञान का विस्तार सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

की याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, दिल की सबसे बड़ी गुस्ताखी यही है कि वो हर बार उम्मीद करना नहीं छोड़ता। चाहे कुछ लोग बिछड़कर भी बिछड़ते नहीं, वो हमारी प्रार्थनाओं, हमारी मुस्कानों और हमारे गीतों में ना हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। हम तड़पते हैं, पुकारते हैं, उनके लौट आने की दुआएं मांगते हैं। बस सच बताइए, जाने वाले क्या कभी पीछे लौट कर देखते हैं?

दोस्तों मोहब्बत शय ही ऐसी है जो एक बार लग जाए दिल को तो फिर जख्म तो छोड़ती ही है, और जख्म भरे ही भर जाए निशान कहीं नहीं जाते। हमारे साथ आपकी याद आती रही में हमारे ढेर सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, मेरठ से वीरू बख्शी, गन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से किशन वंजानी, नीलम स्वाति और केशु, जौकीहाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से तरुण कुमार, जैतरा धामपुर बिजनौर से प्रेमचंद प्रेमी जी, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए और ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है। लेकिन कुछ भी कहें, इतना ज़रूर याद रखें कि यादों का मौसम जब भी घिरता है ना, दिल पे कोई ना कोई चोट का निशान जरूर हर

बिछड़ कर भी तू मुझसे जुदा ना हो सका, तू मेरी यादों की पनाहों में आज भी है। भले ही मंजिलें अलग हो गई हमारी, मगर तेरा नाम मेरी दुआओं में आज भी है। यादों की बारिश में भीगा है आज फिर ये शहर, हर एक मोड़ पर बिखरा है तेरी यादों का मंजर। रिमझिम फुहारें पूछती हैं कहाँ गया वो हम सफर, सरफराज अब भी तेरी याद में भीगता है ये शहर। ये स्वरचित रचना भेजी है मोहम्मद सरफराज आलम साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कुछ लिखकर भेजा है,

लेकिन दिल पे जब चोट लगती है ना तो एक आंसू आंख से जरूर निकलता है, और वो आंसू ना यादों का मोहताज होता है ना बार बार याद करने का। हमारे एक दोस्त हैं तरुण कुमार, जिन्होंने लिखकर भेजा है कि गम की खामोशी में भी सुकून की एक दास्तां छिपी होती है, ये दर्द भरे नगमे जब भी सुने तो दिल के जख्मों पर ऐसे मरहम रखते हैं कि हर टीस भी धीरे धीरे राहत लगने लगती है। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और अब तकाजा वक्त का, विदा लेने का, बहुत कुछ है हमारे पास जो आया है, पढ़ूंगी अभी एक घंटे बाद। फिर मिल रही हूँ ना आपसे रंगे महफिल में, आपकी सारी बयान की तब पढ़ूंगी। फिलहाल तो ये कि कुछ गीत सुने नहीं जाते दोस्तों, महसूस किए जाते हैं। फैज अहमद फैज साहब का एक शेर भी तो है ना, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के सब देख लिया। दोस्तों यादों की दुनिया में

फिर कभी मिलेंगे कुछ नए गीतों और कुछ अनकहे एहसासों के साथ। मुस्कुराते रहिए, अपनों को याद करते रहिए, क्योंकि उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत। जब भी याद करेंगे मिलने आ जाऊंगी। आपकी विनीता बेदी।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंपी है। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर स्वागत है आपका कार्यक्रम रंग महफिल में, और आज आपके साथ हूं मैं विनीता बेदी। गजल दरअसल अल्फाज का नहीं, एहसास का फन है। वो उन खामोशियों की जबा है जिन्हें होंठ कभी बयां ही नहीं कर पाते। इसमें कोई शिकवा भी है तो कोई सब्र भी, कोई तड़प भी है, और कोई ऐसी मुस्कुराहट भी जो आंखों की नमी छिपा लेती है। तो आइए आज इसी एहसास की महफिल सजाते हैं, जहां हर शेर दिल की दहलीज पर दस्तक देगा और हर खामोशी अपनी कहानी कहेगी।

दोस्तों, मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं होती। उसका हर पड़ाव एक नई कहानी कहता है। कभी वो मुस्कुराहट बनकर आती है, तो कभी इंतजार बनकर ठहर जाती है, और कभी कभी किसी गजल के मिसरे में उम्र भर के लिए बस जाती है। वही गजल फिर जब रंगे महफिल में आपकी नजर होती है, तो उसमें न जाने कितने खामोश अफसाने बयां होते हैं। रंगे महफिल में आप हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रेडियो पर आप हैं प्रोग्राम रंगे महफिल में, और आज आपकी महफिल में मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। जिंदगी का सफर दोस्तों मंजिलों से कम, लोगों से ज्यादा बनता है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं और राह आसान कर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चले तो जाते हैं मगर उम्र भर हर मोड़ पर उनका इंतजार हमारा हम सफर बना रहता है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत सा मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। सुना है ना आपने भी, लेकिन दिल दिल कहाँ किसी मोड़ पर रुकना जानता है। दिल तो सिर्फ है, और है तो याद भी करेगा।

सुरंग महफिल की महफिल में आज आप हैं विनीता बेदी के साथ, और आप और हम ढेर सारे लोग यहाँ इस वक्त रंग महफिल में गजलों की महफिल सजाए बैठे हैं। हमारे साथ गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली मुजफ्फर अली, खतौली से दानिश, शांतिनगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, जैतरा धामपुर बिजनौर से प्रेमचंद प्रेमी,

अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से तरुण कुमार, मेरठ से बीरू बख्शी, जौकीहाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खां, देव न जाने कहां से और त्रिची तमिलनाडु से एम राजकुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं फारूक अली खां साहब। और आपका भी संदेश हमें मिला है, किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। आप सब हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था दोस्तों कि बहुत सारी बातें हैं जो नहीं हो पाई पिछली बार, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन बातों का अर्थ ही छूट गया। आपने बहुत कुछ लिख कर भेजा, जैसे प्रेमचंद जी ने लिख कर भेजा कि अपना कोई जब छलता है आँख में आंसू तब पलता है, तन की कैसे बात करूँ मैं, तन की कैसे बात करूं मैं, धीरे धीरे मन जलता है, पाँव में छाले फिर भी चलना, ना अपनी कोई राह बदलना, जरा ठहर कर जब भी देखूं दर्द भरा मंजर मिलता है, अपना जब कोई छलता है आंखों में आंसू तब पलता है। बहुत खूब। तो प्रेमचंद जी, आपकी इस खूबसूरत शायरी के बाद मुझे लगता है सबसे खूबसूरत आवाज़ रहेगी जगजीत सिंह की।

बेटी के साथ। दोस्तों, टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी टूट कर ही इंसान अपने भीतर की सच्चाई से रूबरू होता है। शीशे टूटे तो किरचे बनती हैं, लेकिन दिल अगर टूटे तो अल्फाज जन्म लेते हैं। शायद इसीलिए सबसे खूबसूरत गजलें उन्हीं दिलों से निकली हैं जिन्होंने दर्द को सिर्फ सहा नहीं है बल्कि उसे महसूस भी किया है। दर्द जब भी तहजीब सीख ले ना दोस्तों, तो वो दर्द गजल बन जाता है।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंगे महफिल में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी कि इश्क में दीवानगी कोई इल्जाम नहीं है। इश्क में दीवानगी कोई इल्जाम नहीं है, ये तो वो दौलत है जो हर किसी के नसीब में होती ही नहीं। जिसे मोहब्बत ने छुआ हो वो दुनिया को पहले जैसा कभी देख ही नहीं सकता। उसके लिए तो हर मौसम का रंग ही बदल जाता है, हर शाम का रंग बदल जाता है और हर खामोशी एक मुकम्मल गुफ्तगू बन जाती है। कहा भी है ना गालिब ने कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। अब ऐसे में मोहब्बत में फर्क हो या ना हो, लेकिन एक आवाज़ तो दिल से ज़रूर निकलती है कि हुआ क्या है तुझे जो इतना बेसब्रा हो उठे।

दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते, बस वक्त आगे बढ़ जाता है, लोग बदल जाते हैं, मौसम वापस लौट आते हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल बरसों तक वैसे ही ठहरा रहता है। शायद मोहब्बत का सबसे बड़ा सच ही यही है कि इसमें जवाब से ज्यादा इंतजार लिखा होता है।

और दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आज की रंगे महफिल आपकी रूह को छू चुकी होगी, विनीता बेदी आपसे इजाजत चाहती है। फिर किसी शाम कुछ नए एहसासों, कुछ अनकहे जज्बातों और कुछ दिल नशीं गजलों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। ये गजल खास तौर पे हमारे दोस्तों के लिए जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट भेजी थी।

मध्य रात्रि 12 बज चुके हैं और अब सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित रही। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम बांगचुक ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने का आश्वासन मिलने पर वे अनशन समाप्त कर देंगे। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंपी। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री दी गई। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी

अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ से हुई मौतों पर दुख जताया। चीन के चांगझोऊ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 12:02 और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। शो का नाम है जीरो आर शो। तो ऐसे ही अब गानों की दुनिया में खो जाइए और नॉनस्टॉप गानों का मजा लीजिए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

शुक्रिया पंकज। आज है 23 जुलाई और इस तारीख के साथ अब वक्त भी बदल चुका है और एक बज चुके हैं ठीक घड़ी के, और ये सब में है जो इंगित कर रहा है कि अब आपको अवगत कराया जाए अब तक की मुख्य खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित रही। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने का आश्वासन मिलने पर ही वे अनशन समाप्त कर देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स, मनीला में आसियान महासचिव डॉक्टर काओ किम होन से बातचीत की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंपी। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या को दी गई है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर

असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ से हुई मौतों पर दुख जताया है। चीन के चांगजू में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी संधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। हांगकांग में जारी सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। तनिक्षा खत्री और प्राचीन लोहा ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में पहुंचकर रचा इतिहास। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। थोड़ी देर में आपका स्वागत करेंगे कार्यक्रम सुहानी रात में। मैं हूं आपके साथ रजत। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: कोयल सी तेरी बोली।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात्रि के 2 बज चुके हैं और अब सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित रही। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम बांगचुक ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने का आश्वासन मिलने पर वे अनशन समाप्त कर देंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स, मनीला में आसियान महासचिव डॉ काओ किम हॉर्न से बातचीत की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंपी, 4.5 टन चिकित्सा सामग्री दी गई। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ से हुई मौतों पर दुख जताया। चीन के चांगझोऊ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हांगकांग में जारी सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत की शानदार शुरुआत हुई। तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में पहुंचकर रचा इतिहास। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। रात के 2:03 हुए हैं और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक शो भुलाई ना बने में। तो बस सॉफ्ट मेलोडियस सॉन्ग्स का मजा लीजिए और गानों की दुनिया में खो जाइए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय

को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 2:55। भुलाई ना बने शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का आप मजा ले रहे हैं और अब इस शो का ये आखिरी गाना ऐश किंग की आवाज में फ्रॉम द मूवी दिल्ली 6।

एक बेहद खूबसूरत शो के बाद अब एक बार फिर से घड़ी ने करवट ली है और अब बज चुके हैं मध्यरात्रि के 3, और ये समय है अब तक के मुख्य समाचारों का। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित रही। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना होने का आश्वासन मिलने पर वे अनशन समाप्त कर देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स, मनीला में आसियान महासचिव डॉक्टर काओ किम होन से बातचीत की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंपी। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री इसमें दी गई। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया। चीन के चांगजू में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी संधू, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कल से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हो रहे हैं। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हांगकांग में जारी सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत की शानदार शुरुआत। तनिषा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में पहुंचकर रचा इतिहास। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य प्रदेश में और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर जारी है हमारे मध्यरात्रिकालीन प्रसारण। 3:02 हो चुके हैं और अब समय हो चला है हमारे नियमित कार्यक्रम मिडनाइट मेलेडीज का। इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप मेरे यानी रजत के साथ। आप सभी का हार्दिक तहे दिल स्वागत।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के

0: प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

सुबह के 4 बज चुके हैं। अब सुनिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने का आश्वासन मिलने पर वे अनशन समाप्त कर देंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स, मनीला में आसियान महासचिव डॉ काओ किम होर्न से बातचीत की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या के चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंपी। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री दी गई। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 पर शुरू होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4:03 हुए हैं और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक सारे गामा शो में। तो अभी शुरुआत करते हैं मनन भारद्वाज और स्टीवन बीन की आवाज में फिल्म आर्यभट्ट का जीरो फिल्म से गाने के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक के सारे गामा शो में सुबह के 5 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में आप सुनेंगे मुख्य समाचार, लेकिन अभी इस शो का ये छोटा सा लास्ट गाना।

सारेगामा भी आपने सुना पंकज से, और इन खूबसूरत गानों को अब विराम देते हुए हमारे सामने आ चुकी है घड़ी, जो बता रही है कि सुबह के 5 बज चुके हैं और कुछ सेकंड्स भी इधर उधर हो गए हैं। और स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत बेला में, और मैं हूँ रजत। कार्यक्रमों में हम आगे बढ़ें, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इससे पहले सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। उधर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्जानोवस का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है, ये गर्व की बात है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स, मनीला में आसियान महासचिव डॉक्टर काओ किम होन से बातचीत की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप सौंप दी है। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री इसमें कुल मिलाकर दी गई है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। चीन के चांगजोऊ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष सेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का आज पहला मुकाबला हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 पर शुरू होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 5:03 हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं कार्यक्रमों में, और प्रस्तुत है कुछ ही देर में भक्ति संगीत पर आधारित हमारा नियमित कार्यक्रम, हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना, मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800

0800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।